103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, आश्विन मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर 2026। इस समय सुबह के 8:55 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद सुबह 9:10 पर सुनिए दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। 9:20 का समय रहेगा कार्यक्रम वंदना का और 9:30 पर सुनिए रूपक प्रेम और भक्ति का अनूठा संगम मीराबाई। इसमें वाचक और प्रस्तुति

सहयोग रहेगा मोहम्मद शरीफ छिपा का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अशोक कुमार गोयल। सुबह 10 बजे का समय रहेगा गाने पुराने जमाने के और उसके तुरंत बाद 10:30 पर आप सुनिए गाने नए तराने नए।

शाम 5 बजे सुनिए कार्यक्रम युवाणी, 5:30 का समय है पणिहारी कार्यक्रम का। 6:05 पर सुनिए फिल्म संगीत और 6:20 का समय रहेगा कार्यक्रम माटी के स्वर का। शाम 7 बजे कार्यक्रम खेती बाड़ी का प्रसारण किया जाएगा।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा शाम 7:30 पर और लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद का प्रसारण होगा रात 8:00। रात 9:00 सुनिए सुगम संगीत जिसमें गैर फिल्मी गजल और भजन सुनवाए जाएंगे। रात 9:25 पर विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा का प्रसारण किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये तो था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:00 वाले हैं अब हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों में कैंसर की दवाओं पर लिए जा रहे अधिक मुनाफे पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर और जोधपुर दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में 30 कृषि उपज मंडी समितियों में 57 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे और राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में नया पर्यटन सत्र कल से। वन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों में कैंसर की दवाओं पर लिए जा रहे अधिक मुनाफे पर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सभी दवाओं पर एक समान 16% मुनाफा तय करने की जरूरत बताई है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से उन शिकायतों की जांच करने को कहा है जिनमें कॉरपोरेट अस्पतालों पर मरीजों को अपनी या तय फार्मेसी से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करने के आरोप हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इससे मरीजों और करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। पीठ दवाओं की कीमत और जेनरिक दवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर और जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। वे पहले बाड़मेर जाएंगे जहां वे बाछड़ाऊ गांव में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाड़मेर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने कल अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और कार्यक्रम स्थल तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाड़मेर के बाद मुख्यमंत्री पाली जाएंगे जहां वे सुमेरपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे जोधपुर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री कल जयपुर में सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे। भवानी निकेतन महाविद्यालय परिसर में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस दौरान युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाएंगे।

0: जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि कार्यक्रम में करीब 10,000 युवाओं की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम की अवधि अगले 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि योजना के विस्तार से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयासों को लगातार सहयोग मिलेगा। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि योजना के तहत स्वीकृत गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशों और उपलब्ध बजट के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से काम जारी रहेगा। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से अस्पतालों और स्कूलों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अस्पतालों की कैंटीन, आसपास के भोजनालयों और खाद्य सामग्री की दुकानों की जांच की जा रही है। स्कूलों में कैंटीन और बच्चों को दी जाने वाली खाने की चीजों पर भी निगरानी रखी जा रही है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है।
1: अस्पतालों के चाहे निजी हो चाहे सरकारी अस्पताल, उनके अंदर यदि कोई कैंटीन चल रही है या फिर उनके आसपास जो इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहां पे खाने पीने की वस्तुएं बेची जाती हैं या बनाई जाती हैं, उनको लेके एक विशेष अभियान हमने शुरू किया है। इसके अंतर्गत उनकी सघन जांच और निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विशेषकर अस्पताल के आसपास इस तरह की जो खाद्य सामग्री मिलती है वो मानकों के अनुसार है, उसमें किसी प्रकार की कोई अनसेफ वस्तुएं नहीं बेची जा रही हैं। यदि कोई किसी तरह की उसमें क्वालिटी की कमी है या फिर हाइजीन की कमी है, इन सब चीजों की जांच की जा रही है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में 30 कृषि उपज मंडी समितियों में 57,41,00,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इन कामों के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें बीकानेर, सीकर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, दौसा, बारां, टोंक, चूरू, ब्यावर और श्रीगंगानगर सहित विभिन्न कृषि मंडी समितियां शामिल हैं। स्वीकृत राशि से मंडी यार्ड, विद्युत कार्य, संपर्क सड़कों का निर्माण और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के काम कराए जाएंगे। इससे किसानों और व्यापारियों के लिए मंडियों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। संपर्क सड़कों के निर्माण और मरम्मत से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कल से नया पर्यटन सत्र शुरू होगा। इसे लेकर वन विभाग की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में बारिश से क्षतिग्रस्त हुए रास्तों की मरम्मत का काम प्रगति पर है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्य वन संरक्षक शारदा प्रताप सिंह ने बताया कि नए पर्यटन सत्र के लिए पर्यटक वाहनों के पंजीयन, फिटनेस जांच के साथ ही नेचर गाइड के साक्षात्कार पूरे कर उन्हें ग्रेडिंग दी जा रही है। जंगल में रास्तों के दुरुस्त करने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं छोटे बड़े सभी होटल रेस्टोरेंट में रिनोवेशन, रंग रोगन के बाद साज सज्जा का कार्य पूर्ण कर पर्यटकों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों में नए पर्यटन सत्र को लेकर खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय रोजगार और कौशल मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में रोजगार सृजन, निवेश और उद्योगों के विस्तार पर आयोजित कार्यशाला में कही। श्री देवनानी ने कहा कि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल को रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सेवाओं से रोजगार के स्वरूप में बदलाव आएगा। उन्होंने कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया है। उन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को संस्कृत में उपलब्ध

0: ताम्र पत्रों का कैटलॉग तैयार करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उनका डिजिटल रूपांतरण करने को कहा है। इससे संस्कृत की लोगों तक पहुंच आसान होगी। मुख्य सचिव ने संस्कृत को लेकर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा को रोजगार तथा करियर के अवसरों से जोड़ने पर बल दिया। जैसलमेर में आज एयर रेड वार्निंग सिस्टम का ऑपरेशनल ट्रायल किया जाएगा। गृह मंत्रालय की टीम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शहर में लगे इलेक्ट्रिक सायरनों का परीक्षण करेगी। इस दौरान सायरनों की कार्यक्षमता, संचालन और तकनीकी व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। संबंधित विभागों के कर्मचारियों को जैसलमेर नागरिक सुरक्षा केंद्र और गृह मंत्रालय के दल के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने आज जापान के ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क में फाइनल में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनेपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ शीर्ष 9वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों में कैंसर की दवाओं पर लिए जा रहे अधिक मुनाफे पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर और जोधपुर दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में 30 कृषि उपज मंडी समितियों में 57,41,00,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे और राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में नया पर्यटन सत्र कल से। वन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

चित्रकूट जाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी, जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे जो कालक्रम में लोप हो गया था। इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का ये पहला भजन शर्मा बंधुओं की आवाज़ में।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रूपक प्रेम और भक्ति का अनूठा संगम मीराबाई, जिसमें वाचन और प्रस्तुति सहयोग है मोहम्मद शरीफ छीपा का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अशोक कुमार गोयल।

राजस्थान की वीरभूमि ने जहां एक ओर महाराणा प्रताप जैसे वीरों को जन्म दिया, वहीं इस धरती ने भक्ति की ऐसी अमर ज्योति भी प्रज्वलित की जिसकी रोशनी आज सदियों बाद भी पूरी दुनिया में दिखाई देती है। वो ज्योति थी भक्तिमती मीराबाई। वो मीरा जिसके लिए कृष्ण केवल मंदिर की प्रतिमा नहीं थे, कृष्ण उनके जीवन की सांस थे। कृष्ण मीरा के रोम रोम में बसे थे, कृष्ण उनके आराध्य भी थे और उनके आत्मिक प्रिय भी। मीरा ने कहा, मन मंदिर में दीप जला, नाम लिया घनश्याम, तन मन अर्पित कर दिया, मीरा का बस श्याम। और यही तो मीरा की भक्ति थी, न कोई दिखावा न कोई स्वार्थ, बस प्रेम, समर्पण और कृष्ण के चरणों में अटूट विश्वास। जहां प्रेम में स्वार्थ नहीं, वहां भक्ति में मीरा है। आज के इस विशेष रूपक में हम चलेंगे राजस्थान के उस पावन धरती की ओर, जहां एक राजकुमारी ने राजमहलों की सुख सुविधाओं से अधिक महत्व कृष्ण की भक्ति को दिया। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी के आसपास राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र के कुड़की गांव में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ थे। उनका बचपन उनके दादा राव दूदा के संरक्षण में बीता और वातावरण वैष्णव भक्ति से प्रभावित था।

बचपन से ही मीरा का मन सांसारिक आकर्षणों की बजाय भगवान कृष्ण की ओर अधिक था। कहा जाता है कि बचपन में एक बार उन्होंने किसी विवाह समारोह को देखा और अपनी माता से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन होगा। माता ने बालिका मीरा को समझाने के लिए सामने रखी कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, बेटी यही तुम्हारे दूल्हे हैं गिरधर गोपाल। बालमन ने उस बात को केवल सुना नहीं बल्कि उसे जीवन का सत्य मान लिया। वही बालिका आगे चलकर कृष्ण को अपना सर्वस्व मान बैठी। बालमन में प्रेम था अधरों पर हरिनाम, बचपन से ही मीरा के बसते थे घनश्याम। कभी कभी जीवन में कोई छोटी सी बात मन की गहराइयों में ऐसी उतर जाती है कि वही जीवन की दिशा बन जाती है। मीरा के लिए कृष्ण का नाम ऐसी ही दिशा बन गया। बचपन में मिले संस्कार जीवन भर बनते हैं आधार। समय बीता, मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। राजमहल मिला, वैभव मिला, सम्मान मिला, लेकिन मीरा का हृदय वो तो पहले ही कृष्ण को समर्पित हो चुका था। राजमहल की दीवारों के भीतर रहते हुए भी मीरा का मन मंदिरों की घंटियों में, संतों की संगति में और कृष्ण के नाम में रमा रहता। उनके लिए धन दौलत से अधिक मूल्यवान था भक्ति का धन। राजमहल क्या दे सके जो दे प्रभु का नाम, सोना चांदी फीका लगे जब मन में घनश्याम। मीरा ने अपने जीवन में संदेश दिया कि मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके पास मौजूद संपत्ति में नहीं बल्कि उसके भीतर मौजूद विश्वास और प्रेम में होता है। नाम कृष्ण का ओढ़कर, नाम कृष्ण का ज्ञान, मीरा ने संसार को दिया प्रेम का ज्ञान।

मीरा की कृष्ण भक्ति जितनी गहरी होती गई उनके जीवन में विरोध भी उतना ही बढ़ता गया, लेकिन मीरा अपने मार्ग से नहीं हटी। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और विरोध के सामने अपने आध्यात्मिक विश्वास को बनाए रखा। यहाँ मीरा का चरित्र हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, अपने सच्चे विश्वास और नैतिक मूल्यों के लिए धैर्यपूर्वक खड़े रहना भी जीवन की बड़ी शक्ति है। मीरा के लिए कृष्ण प्रेम किसी के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, वो उनके भीतर की आवाज थी। आंधी आए तूफान उठे, डिगे ने मन का धाम, जिसके हृदय में प्रेम हो उसके संग घनश्याम। सच्ची भक्ति डरना नहीं सिखाती, धैर्य से जीना सिखाती है। मीरा संतों की संगति को बहुत महत्व देती थी। संत रविदास से उनके संबंध का उल्लेख भक्तिकालीन परंपरा और मीरा से जुड़ी लोक कथाओं में मिलता है। संग संगति जो मिले मिटे मन का मान, प्रेम सुधा बरसे वहाँ निर्मल हो इंसान।

मीरा ने भक्ति को किसी एक वर्ग या सीमा तक सीमित नहीं रखा। उनकी वाणी में प्रेम था, उनके संदेश में समानता थी। उनका जीवन ये बताता है कि ईश्वर के सामने मनुष्य की पहचान उसके पद, धन या वैभव से नहीं, बल्कि उसके भाव से होती है। ऊंच नीच सब भूलकर प्रेम करो भगवान, भक्ति वही सच्ची कहे जिसमें हो सम्मान। भक्ति का रास्ता प्रेम से जाता है, भेदभाव से नहीं। मीरा के जीवन का बड़ा हिस्सा राजस्थान की धरती से जुड़ा रहा, लेकिन उनकी कृष्ण भक्ति उन्हें अंततः कृष्ण की लीला भूमि माने जाने वाले वृंदावन और फिर द्वारका तक ले गई। वृंदावन में कृष्ण की स्मृति उनके लिए और भी जीवंत हो उठी। हर कुंज में कृष्ण, हर धुन में कृष्ण, हर नाम में कृष्ण।

और मीरा का मन कह उठता, मेरा मन तो गिरधर के रंग में रंग चुका है। वृंदावन की रज मिली, मन में उठी तरंग, मीरा का तन साधारण कृष्ण प्रेम में रंग।

मीरा की रचनाएं आज भी भारतीय भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उनके पदों में सरल भाषा है, लेकिन भावों की गहराई अथाह है। विरह की पीड़ा हो, कृष्ण के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो, या समाज के बंधनों से ऊपर उठकर आत्मिक स्वतंत्रता की अनुभूति, मीरा की वाणी सीधे हृदय तक पहुंचती है। लबों पर नाम शाम का, आंखों में विश्वास, मीरा के हर सांस में कृष्ण प्रेम की प्यास।

यही कारण है कि सदियां गुजर गई लेकिन मीरा आज भी जीवित हैं। उनकी वाणी में, उनकी भक्ति में, उनके संदेश में और उन करोड़ों हृदय में जो आज भी कृष्ण का नाम प्रेम से लेते हैं। मीरा का जीवन केवल धार्मिक कथा नहीं है, ये जीवन मूल्यों की पाठशाला भी है। मीरा हमें सिखाती है कि विश्वास रखिए, प्रेम रखिए, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखिए, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानिए और सबसे बढ़कर दूसरों के प्रति सम्मान रखिए। मन में श्रद्धा, कर्म में सच्चाई का साथ, मीरा जैसा प्रेम हो, रोशन हो हर बात। आज भी जब कोई भक्त प्रेम से कृष्ण का नाम लेता है तो मीरा की भक्ति की स्मृति जाग उठती है। आज भी जब कोई भजन में डूब जाता है तो कहीं न कहीं मीरा की आत्मा मुस्कुराती हुई महसूस होती है। युग बदले, संसार बदले, बदले देश जहान, मीरा का कृष्ण प्रेम रहे सदियों तक महान। मीरा केवल इतिहास नहीं, भारत की भक्ति परंपरा की जीवंत आवाज है। आज भी मेड़ता मीरा की स्मृतियों को अपने भीतर संजोए हुए है। मीराबाई पैनोरमा में उनके जीवन और भक्ति से जुड़े प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है और मेड़ता में मीरा महोत्सव भी आयोजित होता है जिसमें उनकी भक्ति और जीवन से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। मेड़ता की माटी कहे मीरा मेरी शान, कण कण में है कृष्ण रस, कण कण में भगवान।

मीरा की भक्ति जितनी सरल थी उनका जीवन उतना ही संघर्षपूर्ण रहा। राज परिवार की मर्यादाएं थीं, समाज की अपेक्षाएं थीं, लेकिन मीरा ने अपनी आत्मा की आवाज को

दबाया नहीं। उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर भक्ति का मार्ग अपनाया। उनकी राह में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उनका विश्वास नहीं डिगा। लोक परंपराओं में मीरा को विष का प्याला दिए जाने और अनेक कष्ट सहने की कथाएं मिलती हैं। इन कथाओं के अलग अलग रूप मिलते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ही संदेश है, मीरा की कृष्ण भक्ति के सामने कठिनाइयां भी छोटी पड़ गईं। आंधी आई, राह में दीपक फिर भी जलता रहा। मीरा का विश्वास था हर संकट से बलता।

मीरा ने अपनी भावनाओं को सरल, सहज और लोक भाषा के माध्यम से व्यक्त किया। उनके पदों में राजस्थानी, ब्रज और हिंदी की लोक भाषाई छटा दिखाई देती है। यही कारण है कि उनके भजन राजमहलों से निकलकर जन जन तक पहुंचे। मेड़ता को मीरा की स्मृतियों की भूमि माना जाता है। यहाँ मीरा स्मारक और चार भुजानाथ मंदिर जैसे स्थल उनकी परंपरा से जुड़े हैं। मेड़ता की सांस्कृतिक पहचान में मीरा का विशेष स्थान है। इसलिए जब हम मेड़ता की मीरा कहते हैं तो ये केवल एक स्थान और एक व्यक्ति का संबंध नहीं, बल्कि राजस्थान की भक्ति परंपरा की एक पूरी विरासत का परिचय है। जहाँ प्रेम में कृष्ण हो वहाँ मीरा का नाम है, जहाँ भक्ति में समर्पण हो वहाँ मीरा का धाम है।

जिस उम्र में बालिका मीरा गुड़ियों से खेलती थी उस उम्र में उनके हाथों में गुड़िया नहीं गिरधर गोपाल थे। दूसरे बच्चों के लिए खेल खिलौना था लेकिन मीरा के लिए कृष्ण ही संसार थे। मेड़ता की धरती ने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने राजमहल से अधिक मंदिर को अपना माना, आभूषणों से अधिक भक्ति को सजाया और संसार से अधिक अपने गिरधर को चाहा। वो मीरा थी जिनकी आवाज सदियों बाद भी भक्ति के आकाश में सुनाई देती है। मीरा की भक्ति ने बताया संसार को यही जिसके मन में शाम बसे उसका अकेला कौन नहीं। मीरा ने संसार से ये नहीं कहा कि मेरे रास्ते पे चलो, उन्होंने अपने जीवन से केवल इतना कहा कि जिसे हृदय सच्चा मान ले उसकी भक्ति में छल नहीं होना चाहिए। मेड़ता की धरती ने एक बालिका को जन्म दिया था, चित्तौड़ ने उसे राजमहल दिया लेकिन कृष्ण भक्ति ने उसे अमर कर दिया। मीरा ने राजपाट नहीं मांगा, उन्होंने गिरधर का साथ मांगा, उन्होंने संसार की संपदा नहीं मांगी, उन्होंने भक्ति का धन मांगा।

मीराबाई केवल एक नाम नहीं, भक्ति की वो अमर ज्योति है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास की लौ को बुझने नहीं दिया। उनके लिए कृष्ण केवल आराध्य नहीं थे, बल्कि जीवन का आधार, प्रेम का स्वर और आत्मा की पुकार थे।

मीरा ने संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति किसी बंधन की मोहताज नहीं होती। जब मन में विश्वास हो, हृदय में प्रेम हो और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। मन में बस जाए सांवरा, मिट जाए हर पीर, मीरा जैसी भक्ति हो तो मिलते गिरधारी धीर। मीरा की वाणी के तार आज भी हमें पुकारते हैं, प्रेम कीजिए, अहंकार छोड़िए, सत्य के मार्ग पर चलिए और अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचानिए।

मेरा की भक्ति अमर रहे, कृष्ण प्रेम का दीप जलता रहे। भक्ति हो तो मीरा जैसी, विश्वास हो अटूट, कृष्ण प्रेम में जो रंग जाए उसका जीवन जाए न छूट। आइए हम सब अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सत्य और समर्पण के दीप जलाएं और मीरा बाई की अमर भक्ति को नमन करें। इसी भाव के साथ आज के इस विशेष रूपक को यही विराम देते हैं। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने। शोध आलेख वाचक और प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद शरीफ छीपा, प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोयल। अब इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक नमस्कार। विष का प्याला सामने, मन में नहीं विकार, कृष्ण भरोसा साथ था, मिट गया सब भार।

FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 10 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लव इन टोक्यो से।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यह है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले फिल्म अब क्या होगा में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के, FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिदनी चैनल है। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का ये पहला गीत जैस्मीन और गैरी सिंधु की आवाज़ में

0: हालो हालो हालो साहिबा कदरदान
1: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
2: नौटंकी बंद करो। ये है ममता शर्मा और मीट प्रॉस फिल्म जंजीर में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नहीं तराने नहीं। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हो चुका कताए ताल्लुक तो जफाएं क्यों हो, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं। कार्यक्रम का आगाज बेगम अख्तर की आवाज में सुनकर ये गजल। कलाम है उस्ताद शायर दाग दहलवी का, तर्ज है खयाम की।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। गायक और संगीतकार हरिहरन की आवाज में समाप्त कीजिए खुमार बारा बनकवी का ये कलाम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समात फरमाए तलत अजीज की आवाज में, मौसकी है फिदा हुसैन की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: धनक घटा कलियां और तारी हैं तेरे रूप, गजलें हो या गीत मेरे सब में तेरा रूप। कार्यक्रम की अगली गजल आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज में, शायर हैं कतील शिफाई।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक,
3: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
2: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
2: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

साथियों, कार्यक्रम की अगली गैर फिल्मी रचना सुनिए गायक और संगीतकार लक्की अली की आवाज में। गीत को लिखा है असलम ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए अनामिका की आवाज में गैर फिल्मी गीत। इस गीत को लिखा है राजीव आनंद ने, संगीत है एडविन फर्नांडिस का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: कार्यक्रम में अगली आवाज है अदनान समी की, गीतकार है समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला एल्बम सॉन्ग है अलीशा चुनौई की आवाज में। गीत है शाम अनुरागी का, संगीत है बिद्दू का, एल्बम का नाम है मेड इन इंडिया।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं ललित सेन।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है शोभा मोदगल की आवाज में। गीतकार है अनिल पांडे, संगीत है संदेश शांडिल्य का, एल्बम का नाम है प्यार के गीत।

0: श्रोताओं, आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में दो और निशानेबाजी में एक स्वर्ण सहित कुल तीन स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचौंग एशियाई खेलों में भी महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास ने आज कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमरीका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने कक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब $50 करोड़ से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार। साथियों, आज यादों की ये महफिल सजी है मशहूर पार्श्व गायक शांतनु मुखर्जी यानी के शान के शानदार गीतों से। आज उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार और आप सभी की तरफ से हम उन्हें देते हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। गीतकार हैं समीर अंजान, संगीत है मोंटी शर्मा का और फिल्म का नाम है सांवरिया।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आइए सुनिए अगला गीत शान और कैलाश खेर की आवाजों में। गीतकार हैं प्रसून जोशी, संगीतकार हैं जतिन ललित और फिल्म का नाम है फना।

गायक शांतनु मुखर्जी, 30 सितंबर 1972 को खंडवा एमपी में उनका जन्म हुआ था। उनके दादाजी एक जाने माने गीतकार थे और पिता मानस मुखर्जी एक मशहूर संगीत निर्देशक थे और उनकी बहन सागरिका भी एक बेहतरीन गायिका है। साथियों, संगीत के माहौल में पले बड़े शान ने मात्र 4 साल की उम्र से विज्ञापन गीत यानी जिंगल्स गाना शुरू कर दिया था और उनके एल्बम तन्हा दिल और भूल जा बहुत हिट हुए थे। हिंदी के अलावा शान ने मराठी, बंगाली, उर्दू, तेलुगू और कन्नड़ भाषा में भी गीत गाए हैं। उन्होंने कई सिंगिंग रियलिटी शोज को भी होस्ट किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में अगला गीत। साथ में है सुनिधि चौहान भी, नगमा निगार है जावेद अख्तर, धुन है विशाल शेखर की, फिल्म का नाम है तारा रंपम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, गायक शान को अपने शानदार गायन के लिए 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 3 बार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार और कई अन्य सम्मान मिल चुके हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए शान और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है निखिल विनय का और फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

0: वो बताएंगे।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला गीत सुनिए शान और श्रिया घोषाल की आवाजों में। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, तर्ज है नदीम श्रावण की, फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अगला गीत है शान और श्वेता पंडित की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लोए और फिल्म का नाम है नई पड़ोसन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
5: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
4: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम का अगला शानदार गीत है शान और श्रेया घोषाल की मिली जुली आवाजों में। गीत रचना सुआनंद किरकिरे की, संगीत है शांतनु मोइत्रा का और फिल्म का नाम है पीके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अगला गीत सुनिए शान की आवाज में। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है झनकार बीट्स।

0: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में। गीतकार हैं अरुण भैरव, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है वांटेड।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान।

0: और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: साथियों, आज यादों की महफिल सजी थी मशहूर गायक शान के शानदार गीतों से। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम यादों की।
5: एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरवी चैनल है। दिन का एक बजने वाला है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनेपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक

0: हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचाऊ एशियाई खेलों में भी महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगस ने कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर जिले के दौरे पर हैं। वे ग्राम पंचायत बाछड़ाऊ में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इसके बाद श्री शर्मा पाली जिले के सुमेरपुर और जोधपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री कल जयपुर में सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत करेंगे। भवानी निकेतन महाविद्यालय परिसर में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस दौरान युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाएंगे। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि कार्यक्रम में करीब 10,000 युवाओं की भागीदारी होगी। प्रदेश में विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत कृषि विभाग की ओर से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कृषि योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विभाग के अनुसार अभियान के दौरान 59,712 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए और 4,64,000 से अधिक किसानों को विभागीय योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी गई। सवाईमाधोपुर, करौली, नागौर, डीडवाना, कुचामन और झुंझुनू में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण में अच्छी प्रगति हुई है। कृषि विभाग के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी के प्रमुख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी दी जाती है। प्रदेश में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विभिन्न प्रतिष्ठानों, मिठाइयों की दुकानों और फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर खाद्य सामग्री के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं और इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। साथ ही एक्सपायरी डेट वाले अमानक और नकली खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग की ओर से अस्पतालों और स्कूलों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि 24 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत अस्पतालों की कैंटीन, आसपास के भोजनालयों और खाद्य सामग्री की दुकानों की जांच की जा रही है। स्कूलों में कैंटीन और बच्चों को दी जाने वाली खाने की चीजों पर भी निगरानी की जा रही है। वहीं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दौसा में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया पढ़ाई विद AIR नवाचार अब देश के 50 ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। नीति आयोग ने इस पहल की सराहना की है। जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा के नेतृत्व में शुरू हुए इस पहल का उद्देश्य गणित में कमजोर विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार अभ्यास उपलब्ध कराना है। डॉ. सौम्या झा के अनुसार AI आधारित ये व्यवस्था विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुरूप अभ्यास और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर सीखने में मदद करती है। दौसा में अब तक 488 सरकारी स्कूलों के 13,551 विद्यार्थी पोर्टल से जुड़ चुके हैं। 11 मास्टर ट्रेनर विद्यार्थियों और शिक्षकों को सहयोग दे रहे हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर सेवानिवृत्त IAS श्रुति भारद्वाज की नियुक्ति की गई है। पशुपालन, गोपालन और डेयरी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति पे माइनस पेंशन के आधार पर 6 महीने के लिए की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की विधिक सेवा समितियों में चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह को जयपुर और न्यायाधीश अरुण मोंगा को जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन का 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: गीत किसका है वो भी बता दें, और साथ में ये भी बताएं कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आइए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसको लिखा है मशहूर शायर कैफी आजमी ने। बाकी चीजें तो आप हमें बताने वाले हैं।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक

0: विशाल चतुर्वेदी
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
4: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
3: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
5: अगर तुम मिल जाओ।
3: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं जो इस तरह से हैं: धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, तरुण बोस, शशिकला, देवन वर्मा और सुरेखा पंडित। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था और इस गीत को लिखा था मशहूर शायर कैफी आजमी ने, संगीत था हेमंत कुमार का और आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था अनुपमा। और अब पढ़ लेते हैं हमारे साथियों के कुछ संदेश। संदेशी हमारे एक साथी ने इबारत पढ़ के लिखा है कि दामन के दाग मिटाए जा सकते हैं मगर दिल के जख्मी दागों को नहीं मिटाया जा सकता। दिलरुबा के दीदार के लिए दिलबर की हालत का अंदाजा एक दिल वाला ही लगा सकता है। दर्द भरे नगमों के जरिए के दरिया में बहने के लिए हमारा दिल भी बेकरार है। और एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में जिंदगी बहुत अपनी सी लगती है, कहीं रिश्तों की मिठास, कहीं दोस्ती, कहीं हंसी और कहीं आंखों की नमी, कहीं आंखों को नम कर देने वाली संवेदनाएं। उनकी सादगी भरी कहानियां हमें हंसाते हुए भी जीवन का थोड़ा और करीब जीवन को थोड़ा और करीब से समझा देती हैं। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में और उनके गीत आज भी दिल में बसे हुए हैं। एक और संदेश है कि ऋषिदा की फिल्में पारिवारिक बातों पर, मध्यम वर्गीय लोगों की आम समस्याओं पर बनी थी। उनमें प्रेम की भावना समान था। एक साफ सुथरी फिल्म रहती थी जो परिवार से सब लोग बैठ के देखें तो भी संकोच नहीं होता था। और ये अगला संदेशा है कि रात कली जब ख्वाब में आने लगे तो समझिए धीरे धीरे दिल मचलता जरूर है, जो प्रेम की शुरुआती दस्तक और सपनों के एहसास नजर आ रहे हैं। जिंदगी में प्यार के रास्ते में उतार चढ़ाव आते ही हैं। कभी कभी कोई पल ऐसे भी हो सकते हैं जहां लम्हे खो जाते हैं, जब जिस वक्त यार जुदा हो तो तब दिल कहता है कि तेरा मेरा प्यार अमर है, इसलिए हम अब के सावन में जरूर मिलेंगे। और एक मित्र ने लिखा है कि तेरे प्यार के दामन में ही लिपटे हैं हम, छोड़कर तुम्हें अब कहां जाएं हम, तेरी चाहत में इस तरह डूबे हैं हम, डर है कि खुशी से कहीं मर ना जाए हम। क्या बात है। और ये एक अलग मैसेज है कि मन तो भागता ही है सपनों के आगे, लेकिन हमें प्रेम से दो दिलों के बीच की दीवारों को हटाना होगा। और ऋषिदा को सादर नमन। साथियों, मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की 1971 में बनी क्लासिक फिल्म आनंद एक ऐसे जिंदा दिल इंसान की कहानी है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद अपनी मौत से नहीं डरता और बाकी बचे दिनों को पूरी खुशी के साथ गुजारता है। तो बताएं कि आनंद सहगल और डॉक्टर भास्कर बैनर्जी की भूमिकाओं में कौन से अभिनेता नजर आए थे। और इस फिल्म के कुछ डायलॉग बेहद मशहूर हुए थे, वो भी लिखकर भेज दीजिए हमारे FB पेज पर। और तब तक सुनिए ये गीत मन्नाडे की आवाज में। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी। फिल्म का नाम है आनंद।

0: अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए हैं, जो इस तरह से हैं। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रमेश देव, सीमा देव, ललिता पवार और सुमिता सनपाल। और मशहूर डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशाए। हमारे साथियों ने लिखा है कि 1940 के दशक में ऋषि

0: और अब पढ़ते हैं आपके कुछ संदेश। फिल्म चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशन और पटकथा इतनी सहज है कि फिल्म बिना किसी फूहड़ता के पारिवारिक मूल्यों और साफ सुथरे हास्य का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर की यही खूबसूरती है कि एक एक शब्द अपने भीतर किसी गीत की पूरी कहानी को छुपाए रहता है। और ये अगला मैसेज है कि आज ऋषिकेश मुखर्जी की याद का दिन है। उनकी फिल्में सादगी, संवेदनाओं और मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियां आम आदमी, उनके संघर्षों, परिवार और मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं। उन्होंने व्यावसायिक चकाचौंध और कला फिल्मों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाया। अगला मैसेज है कि आखिर ये दिल का कौन सा राज है जो हर धड़कन में उसी का नाम और उसी के आने का इंतजार जगाता है। अगला मैसेज है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का मानवीय स्पर्श इन नगमों को सिर्फ गीत नहीं रहने देते बल्कि उन्हें हमारी अपनी जिंदगी और भावनाओं का हिस्सा बना देते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने कला फिल्मों की गंभीरता और व्यावसायिक फिल्मों की चमक दमक के बीच एक संतुलित और सहज रास्ता अपनाया। उनकी कॉमेडी फिल्में जैसे कि गोलमाल या चुपके चुपके में फूहड़ता नहीं बल्कि सौम्यता और हास्य था। आनंद या बावर्ची जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने जीवन का दर्शन, रिश्तों की गहराई का संदेश दिया है। दोस्तों, आज का सुरीला सफर हम तय कर रहे हैं ऋषिदा की फिल्मों की बातें और उनके गानों को सुनते हुए। और अब बात पति पत्नी के रिश्ते, सफलता, पुरुष का अहंकार, भावनाओं के उतार चढ़ाव पर बनी एक बेहतरीन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म अभिमान की। तो बताएं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी बच्चन ने कौन सी भूमिकाएं निभाई थी और उनके साथी कलाकारों के नाम भी हमें लिखकर भेज दें।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

हमारे साथियों ने कुछ और बातें लिखी हैं और जवाब भी लिख दिए हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आप हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं और एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफ़र, तो हम अपने साथियों के संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। इस सफ़र में लोकप्रिय गायक सुबीर कुमार की भूमिका निभाई थी अमिताभ बच्चन ने और शास्त्रीय संगीत में माहिर गायिका के किरदार में नजर आई थी जया भादुरी बच्चन और उनके साथी कलाकार थे बिंदु असरानी, दुर्गा खोटे, एके हंगल, डेविड अब्राहम और ललिता कुमारी। हमारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं कि 1957 में बतौर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मुसाफिर और उनकी मशहूर फिल्मों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, बावर्ची, खूबसूरत, गुड्डी, आशीर्वाद, सत्यकाम, अभिमान, अनाड़ी और अनुपमा। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मनोरंजन करने के लिए फूहड़ता का सहारा लेना जरूरी नहीं है। उनकी फिल्में शुद्ध, सात्विक और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने योग्य होती हैं। आज के युग में ऋषिदा की फिल्में एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। और एक साथी ने लिखा है कि आज के गीत ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत फिल्मों से होंगे। इन गीतों में जिंदगी की सच्चाई, हंसी, खुशी, रिश्तों की मिठास, दोस्ती, आंखों को नम कर देने वाला एहसास होगा। ऋषिदा को हम नमन करते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि प्रेम भी कितना अनोखा एहसास है, दो दिलों के बीच चाहे कितनी ही दीवारें हों, उसकी पुकार फिर भी सुनाई दे जाती है। चाहत का असर ऐसा होता है कि इंसान जमीन पर चलते हुए भी खुद को तारों के बीच महसूस करने लगता है, और तब दिल बार बार यही पूछता है, आखिर प्यार का ये राज है क्या। अच्छा जी, आज ऋषिकेश मुखर्जी की को याद करेंगे उनके फिल्मों के गानों से। उन्होंने कई पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों को बनाया जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी बनाई जिसे देखकर हंसते हुए हम लोटपोट हो गए। उनकी फिल्में परिवार में सब लोग साथ बैठकर देख सकते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे निर्देशक थे जिन्हें वक्त की पहचान खूब थी। उस जमाने में उन्होंने वक्त की नब्ज पकड़ी और ऐसी फिल्में बनाई जो आम दर्शकों से लेकर एक खास वर्ग के लिए थी, जहां सब कुछ सीधा सादा था और दर्शकों ने भी उन फिल्मों को खूब प्यार दिया। आज भी उनकी बनाई फिल्में जब टीवी पर आती हैं तो हम उन्हें देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। वे फिल्में कल भी कालजयी थी और आज के दौर के लिए भी बहुत अहम हैं। दोस्तों, आपको ऋषिकेश मुखर्जी की और कौन सी फिल्में याद हैं, कौन से गीत आपको पसंद है, वो हमें लिखकर भेजते जाइए। उनकी फिल्मों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी हमें बताएं। और अब हम बात करेंगे चुपके चुपके, एक बेहद मशहूर क्लासिक कॉमेडी फिल्म जिसकी कहानी हास्य और मजेदार उलझनों पर आधारित है। आपने ये फिल्म तो जरूर देखी होगी, तो बताएं कि प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी किस विषय के प्रोफेसर थे और उनके दोस्त प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा किस विषय के प्रोफेसर थे। और इस फिल्म के सभी कलाकारों के नाम लिखकर हमें भेज दे। आइए सुनते हैं ये गीत। वैसे तो सावन लगभग गुजर चुका है। आवाज है इस गीत में लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। धर्मेंद्र यानी प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी बॉटनी साइंस के प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे और सुकुमार सिन्हा बने अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया था अंग्रेजी के प्रोफेसर का। और साथी कलाकार थे शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, उषा किरण, केष्टु मुखर्जी और ललिता चक्रवर्ती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कलाकारों ने स्टार बनकर नहीं बल्कि किरदार बनकर काम किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमोल पालेकर जैसे बड़े अभिनेताओं से उन्होंने बेहद सादगी भरे रोल करवाए। उनकी फिल्मों की अभिनेत्रियां जैसे कि जया बच्चन, शर्मिला टैगोर, दीप्ति नवल कोई ग्लैमर डॉल नहीं बल्कि घरेलू पढ़ी लिखी और मजबूत विचारों वाली महिलाएं होती थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषि दास सिर्फ हंसाना ही नहीं जानते थे बल्कि आंसुओं के जरिए जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझाना भी उनकी कला थी। आनंद बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, इस संवाद के जरिए कैंसर से जूझ रहे एक इंसान की जिंदा दिली को जिस तरह उन्होंने पर्दे पर उतारा वो मील का पत्थर है। अभिमान, पति पत्नी के बीच अहंकार, ईर्ष्या और संगीत के प्रति प्रेम के टकराव को बेहद संजीदगी और बिना किसी मेलोड्रामा के दिखाया गया है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिदा ने अपने 4 दशकों के करियर में 42 फिल्में डायरेक्ट की और उन्हें भारत के मिडिल सिनेमा का पायनियर माना जाता है। उनकी फिल्में मिडिल क्लास के माहौल को दिखाती थीं। एक मैसेज है कि ऋषिदा एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को एक नई राह दिखाई। उनकी फिल्में ना तो तड़क भड़क भरी होती थी, ना बहुत ज्यादा संजीदा होती थी, बल्कि उनमें सादगी और संजीदगी का एक बेहतरीन मिश्रण हुआ करता था। उनकी फिल्मों में आम इंसान की रोजमर्रा जिंदगी, उसकी खुशी, उसके गम और उसके मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था। ऋषिदा की फिल्में जमीनी जनजीवन की जीवंत जगाती तस्वीर होती थी। दर्शक उनकी फिल्मों में खुद को महसूस करता था और बावर्ची फिल्म मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। एक साथी ने लिखा है कि ये कैसा संयोग है कि इस वक्त टीवी पर फिल्म अनुपमा दिखाई जा रही है और गाना धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार चल रहा है और इधर रेडियो पर भी यही गाना चल रहा है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म अनुराधा के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला था। साथियों, 1979 में आई कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म गोलमाल की कहानी एक युवा राम प्रसाद और सख्त मिजाज बॉस भवानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है और अंत में कई मजेदार मोड़ के बाद सच सबके सामने आ जाता है और फिल्म का सुखद अंत होता है। तो साथियों, इस मजेदार फिल्म की कौन सी बातें आपको याद हैं, हमें लिखकर कमेंट कर दें और साथ ही ये भी बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन थे। तब तक सुना जाए ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है गोलमाल।

0: साथियों, आपके कमेंट्स और जवाब हमें मिल गए हैं, वो हम पढ़ देते हैं। अमूल
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: रिश्ते से दूर रखने पर टिकी होती है। अगला कमेंट है कि फिल्म अभिमान की सीख यही है कि महिलाओं के करियर पे पुरुष अहंकार को हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और एक साथी ने लिखा है कि अभी आनंद फिल्म का जिक्र हुआ था, तो इस फिल्म के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि सभी को उसमें काम करने वाले हर किरदार की जगह खुद को रखकर देखना चाहिए, तो लगेगा कि हम ही हैं वहां पर। हर किरदार अपना सा लगता है। मैं ये फिल्म जब भी देखता हूं तो अपने आप को वहां पर खड़ा पाता हूं। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अभिमान में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में एक श्लोक संगीतकार सचिन देव बर्मन के संगीत में रिकॉर्ड हुआ था, और यहीं से अनुराधा पौडवाल के गीतों के करियर की शुरुआत हुई थी। साथियों, 1980 में बनी फिल्म खूबसूरत एक ऐसे परिवार की कहानी जिसकी सख्त मिजाज मुखिया घर के सभी नियम कड़ाई से लागू करती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार तनावपूर्ण माहौल में रहता है। कहानी में बदलाव तब आता है जब मंजू नाम की लड़की कुछ दिनों के लिए उस घर में आती है और अपने चुलबुले नटखट और जिंदा दिल अंदाज से घर के नियमों को चुनौती देती है। तो बताएं कि घर के मुखिया के किरदार में कौन सी अभिनेत्री थी, साथ ही कलाकारों के नाम भी बता दें। और खूबसूरत इस नाम से इस फिल्म का एक मॉडर्न रीमेक भी तो बना था, तो उस रीमेक फिल्म की अभिनेत्री का नाम भी हमें बता दें। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये एवरग्रीन सुपरहिट गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गुलजार गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं। घर की मुखिया के किरदार में नजर आई थी अभिनेत्री दीना पाठक। मुख्य साथी कलाकार थे अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन, ओम शिवपुरी, शशिकला रूपिनी और इस फिल्म के रीमेक में नजर आई थी अभिनेत्री सोनम कपूर। एक मशहूर हिंदी कॉमेडी फिल्म बुड्ढा मिल गया। फिल्म की कहानी दो गरीब और बेरोजगार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अचानक उन्हें एक अमीर और लापता करोड़पति मिल जाता है और उन दोनों को लगता है कि इस बूढ़े अमीर आदमी को उसके घर पहुंचाकर वो भारी इनाम पालेंगे। उसके बाद फिल्म में कई रोमांचक मोड़ आते हैं। तो हमें बताएं कि वो करोड़पति अमीर आदमी कौन था और साथ ही कलाकारों के नाम भी लिख दें और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के हीरो की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। तब तक सुनिए ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया।

साथियों के जवाब हमें मिल गए हैं। अमीर लापता करोड़पति की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे ओम प्रकाश, मुख्य कलाकार थे नवीन निश्चल, देवन वर्मा, अर्चना और अरुणा ईरानी, और इस फिल्म के नायक नवीन निश्चल की पहली हिंदी फिल्म थी सावन भादो, जो कि अभिनेत्री रेखा की भी पहली हिंदी फिल्म थी।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए। आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

आज की त्रिवेणी में बात करेंगे शहर की। साथियों, शहर सिर्फ इमारतों, सड़कों और भीड़ का नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हर शहर का अपना मिजाज होता है, अपनी रफ्तार होती है और अपनी एक अलग पहचान। कहीं सुबह की शुरुआत चाय की प्याली और अखबार से होती है, तो कहीं रात तक जगमगाती सड़कों पर जिंदगी दौड़ती रहती है। किसी शहर में सुकून मिलता है तो कोई शहर अपनी चहल पहल से दिल जीत लेता है, और कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस होने लगता है। शायद इसी खूबसूरत, रंगीन और थोड़े शरारती अंदाज के लिए कहा गया होगा, ये शहर बड़ा अलबेला। तो चलिए शहर के इसी दिलकश अंदाज को महसूस करते हैं फिल्म सिंगापुर।

0: शहर की एक खासियत ये भी है कि यह अपने भीतर न जाने कितने सपने समेटे रहता है। छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर आते लोग अपने साथ उम्मीदें लेकर आते हैं, कुछ नया करने की, अपनी पहचान बनाने की और शायद किसी अपने के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाने की। शहर की भीड़ में जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो वही अनजान शहर उन्हें अपना लगने लगता है। फिर ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के बीच भी एक घर, एक साथी और एक सपना काफी होता है। कुछ ऐसा ही एहसास है अगले गीत में, जहां शहर सिर्फ जगह नहीं बल्कि दो दिलों के सपनों का पता बन जाता है। सुनते हैं घरौंदा फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: दो दीवाने शहर में

हर शहर की अपनी एक रौनक होती है और उस रौनक में वहाँ के लोग सबसे खास रंग भरते हैं। बाजारों की चहल पहल, सड़कों की रफ्तार, कॉलेज जाते युवा, दोस्तों की महफिलें और शाम ढलते ही रोशन होती गलियां। शहर की जिंदगी कई रंगों से मिलकर बनती है। खासकर बड़े शहरों में फैशन, स्टाइल और आत्मविश्वास का अपना ही अंदाज देखने को मिलता है। यही वजह है कि फिल्मों में भी शहर को अक्सर युवा ऊर्जा और आकर्षण के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। अब हमारे इस शहर सफर का आखिरी पड़ाव भी कुछ ऐसा ही चुलबुला और मस्ती भरा सा है। तो तैयार हो जाइए शहर की रौनक और युवा अंदाज से रूबरू होने के लिए फिल्म रक्षक के इस गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में हैं। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। SIT से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे

0: पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
1: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
2: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जुड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
3: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष के पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
4: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है देश के सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
3: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनुपानंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
5: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
3: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

0: भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और काइनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
0: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नख्मा निगार है हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है सांझ और सवेरा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है छाया।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है नमक हलाल।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार और ममता सिंह जी यानी रेडियो सखी ममता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल
2: अच्छी है। तो आज मेरा मन कर रहा है ममता जी, बहुत दिनों बाद हम सखी सहेली के इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो आज मैं आपकी प्रशंसा करूं।
1: अरे पूछने की क्या जरूरत है, करनी है करिए ना, पूछ कर प्रशंसा क्या करना, अरे कीजिए, खूब जम के कीजिए। प्रशंसा भले किसे नहीं अच्छी लगती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या है कि
1: किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती मंदाकिनी जी, नहीं पूछने की जरूरत होती है, बस धीरे से प्रशंसा कर दी जाती है। कभी एक छोटी सी प्रशंसा भी दिल को छू जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, प्रशंसा केवल तारीफ नहीं, रिश्तों के बीच की दूरी कम करने वाली एक भाषा है।
1: बिल्कुल, और भाषा जो है पुल का काम करती है। जरा सोचिए मंदाकिनी जी, अगर दो पीढ़ियों के बीच संवाद में शिकायतों की जगह थोड़ी सी प्रशंसा आ जाए तो शायद ये जनरेशन गैप भी कुछ कम हो जाए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर साड़ियों का संसार भी कुछ ऐसा ही है, कोई आपकी साड़ी देखकर बस इतना कह दे, अरे वाह ममता जी, आज तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने, और आप पर बात फब भी रही है, तो मन में एक छोटी सी खुशी उतर आती है।
1: बिल्कुल
2: ना?
1: अगर माँ अपनी बेटी से कह दे कि आज बहुत अच्छी लग रही हो, बेटी अपनी माँ से कह दे कि बहुत अच्छी लग रही है, और माँ तारीफ कर दे, शाबाश बहुत बढ़िया काम किया, तो ये कैसा संवाद है कि लोगों को जोड़ता है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मना रहे हैं तो उन अनुवादकों को थोड़ी सी उन अनुवादकों की थोड़ी सी प्रशंसा हम कर देते हैं जो एक भाषा के भाव को दूसरी भाषा तक बड़े ही सुंदरता से पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल, तो आइए सखी सहेली में बात करते हैं प्रशंसा की, जो हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी के जरिए लिखेंगे। और हाँ, बातों ही बातों में ममता जी हमने समझा दिया है आज के विषय क्या है।
1: बिल्कुल, तो चलिए एक बार दोहरा भी देते हैं अपने श्रोताओं के लिए कि जो हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो है पीढ़ियों में अंतर, और जो शब्द देते हैं हम श्रोताओं को वो आज प्रशंसा, अब तो स्पष्ट हो ही गया होगा, और साड़ियों का संसार है जिसमें हम बोमकाई साड़ी के बारे की चर्चा करेंगे, और भाषाओं के बीच एक पुल जो आज अनुवाद दिवस के मौके पर। तो हमारे श्रोता बताएं कि वो जब किसी रचना को, अनुदित रचना जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, खासतौर से कि कोई मूल रचना पढ़ी है, मान लीजिए बंगला साहित्य का साहित्य बड़ा समृद्ध है, और वहां से जब हिंदी में अनुदित कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है।
2: और इसके अलावा ममता जी वो ये भी बता सकते हैं कि अगर आप भी साहित्यकार हैं तो क्या अनुवाद किया आपने कभी। कई बार हमारे श्रोता जो हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, हो सकता है कि वो भी कोई अनुवादक के रूप में काम कर रहे हो, तो उसका जिक्र भी कर सकते हैं
1: जी। और कौन सी किताब अनुवाद की है, और साथ में ये भी कि कई भाषाओं में, अंग्रेजी से हिंदी, और यही बात फिल्मों में भी तो लागू होती है। जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो जब वो अनुदित फिल्म होती है हिंदी में डब की हुई तो थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि वो लिप सिंक होता है, वो तो एक अलग ही विषय। तो अनुवाद के बारे में चर्चा होगी, हमारे श्रोता भी इसमें शामिल हो, और फिलहाल क्या करें,
2: फिलहाल ये भी बता दें कि सूजी के व्यंजन भी हम बनाने वाले हैं।
1: आप बनाएंगे ना?
2: मैं बनाऊंगी और आप खाएंगी।
1: सारे श्रोता मिलके खाएंगे।
2: बिल्कुल,
1: फिलहाल गाने का स्वाद लेते हैं।
3: मिला

0: भाई, प्यार के बहुत सारे बहाने होते हैं। प्यार तो आपने बोला कि प्रशंसा कर दूं तो मोहब्बत बढ़ जाती है। हाँ, कोई छोटा सा तोहफा देता है तो मोहब्बत बढ़ जाती है। और किन बातों से मोहब्बत बढ़ती है बताइए ना।
1: अरे आप तो भी परीक्षा ले रही है, इसका मतलब है ना जिससे मोहब्बत की है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि मोहब्बत किन किन कारणों से हो पाती है।
0: मोहब्बत किसके दिल में नहीं है भला बताइए। यहाँ इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मोहब्बत से भरे पड़े होते, वो भी आपस में करने का अलग तरीका होता है। हाँ? तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई छोटा सा तोहफा दे दे तो प्यार बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे कि आप मुझे साड़ी देंगी तो आपके प्रति मेरा प्यार बढ़ जाएगा।
0: ओ, आपने तो पूरे देश को बता दिया।
1: आप मुझे गोमका ही साड़ी देने वाली है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो जैसे ही वो साड़ी मुझे मिलेगी मेरे अंदर एक मोहब्बत का जो अंकुर है वो फूटने लगेगा।
0: अच्छा,
1: आपकी प्रति।
0: मतलब इसके पहले आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं?
1: थोड़ी सी कम।
0: मतलब साड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे।
1: हाँ, ठीक है? और उसके बाद मेरी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी।
0: ओहो, हाँ, जब पहन के आएंगी तब। तो ठीक है, प्रशंसा हम अभी से किए दे रहे हैं। मंदाकिनी जी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन ये प्रशंसा झूठी हो जाती है ना।
1: बिल्कुल, जब मैं पहन के आऊंगी साड़ी

0: और आप मेरी प्रशंसा करेंगी, उस वक्त जो होगा वो अच्छा लगेगा। फिलहाल हमारे जो श्रोता है, खासतौर से हमारी बहनें जानना चाहती हैं कि कौन सी है ये बुमकाई साड़ी, कैसी होती है, तो बताइए उन्हें।
1: देखिए, उड़ीसा की समृद्ध हथकरघा परंपरा की एक बेहद खूबसूरत पहचान है बुमकाई साड़ी। बुमकाई साड़ी का नाम उड़ीसा के गंजाम जिले के बुमकाई गांव से जुड़ा हुआ माना जाता है। बाद में ये बुनाई परंपरा उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गई और आज बुमकाई साड़ी उड़ीसा की पहचान बन गई है और प्रमुख हथकरघा साड़ियों में गिनी जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी बुनाई में इकत और अतिरिक्त धागे से बनी सजावटी बुनावट का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। बॉर्डर और पल्लू में महीन ज्यामिति और पारंपरिक आकृतियां साड़ी को एक अलग स्थान बना देती है। साथ ही बुमकाई साड़ियों में प्रकृति और लोक जीवन से प्रेरित बहुत सारी आकृतियां हमें देखने को मिलती है ममता जी, जैसे मछली और कोई पक्षी है ना, इस तरह से फूल हैं, पत्तियां हैं, शंख हैं, कमल है, मंदिर है, और धार्मिक प्रतीकों से जो प्रेरित आकृतियां होती हैं वो इस साड़ी में हमें दिखाई देती हैं।
1: जो और ज्यामितीय डिजाइन भी बनती है। और बुमकाई साड़ियों में अक्सर गहरे और चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल, काला, पीला, हरा, नीला, नारंगी और मरून जैसे रंगों का संयोजन बहुत आकर्षक लगता है। वैसे आपको गाढ़े रंग तो बहुत पसंद है।
0: मुझे गाढ़े रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे मैरून और लाल,
1: मतलब दो साड़ी चाहिए आपको?
0: नहीं, लाल और मैरून, हाँ एक ही कलर हो गया ना, काला और मैरून।
1: अच्छा,
0: या तो, नीला और मैरून,
1: तो मतलब ये
0: इस तरह अलग कॉम्बिनेशन वाली।
1: अच्छा, कॉम्बिनेशन। हम तो डरे कि दो अलग अलग साड़ियां आपको देनी होंगी। वैसे कई साड़ियों में मंदाकिनी जी गहरे रंग की मुख्य पृष्ठभूमि के साथ चमकीला बॉर्डर भी होता है और उसका पल्लू भी बनाया जाता है चमकीला। यही विरोधाभासी रंग संयोजन बुमकाई को दूर से ही पहचानने योग्य बना देता है।
0: हाँ, और बुमकाई साड़ी का जो पल्लू है वो इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक होता है। पल्लू में छोटे छोटे पारंपरिक डिजाइन के बेहद बारीकी से उन्हें बुना भी जाता है। और बुमकाई जो साड़ी है मुख्यतः कॉटन है, सिल्क है, दोनों प्रकार से तैयार की जाती है। मैं आपसे सिल्क वाली साड़ी लेना पसंद करूंगी।
1: ओ, तो बड़ी महंगी होती है।
0: कोई बात नहीं।
1: कॉटन बुमकाई हल्की, आरामदायक और दैनिक पहनावे के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, जबकि सिल्क बुमकाई ज्यादा भव्य दिखाई देती है और त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर ये पहनी जाती है। और बुमकाई साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक स्मृतियां भी बुनी हुई हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और इसके डिजाइन स्थानीय प्रकृति, लोक जीवन, धार्मिक परंपराओं और आसपास के वातावरण से प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए एक बुमकाई साड़ी को केवल कपड़ा नहीं बल्कि बुनकर की कल्पना और संस्कृति का दस्तावेज भी कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। और एक सुंदर बुमकाई साड़ी के पीछे बुनकर की लंबी मेहनत होती है। धागे का चयन होता है, रंगों की योजना, बॉर्डर और पल्लू का पैटर्न और करघे पर इसकी बुनाई की जाती है।
0: बिल्कुल, और हर चरण में जो चरण होते हैं अलग अलग, उसमें बहुत ही धैर्य से ये साड़ी बनाते हैं, बहुत ही कौशलता के साथ साड़ी बनाई जाती है। और हथकरघे पर तैयार होने के कारण हर साड़ी में बुनकर के हाथों की एक अलग पहचान भी दिखाई देती है ममता जी।
1: और आज बुमकाई साड़ी ने पारंपरिक रूप के साथ साथ आधुनिक फैशन में भी अपनी जगह बना ली है। डिजाइनरों ने इसके पारंपरिक डिजाइन और रंगों को आधुनिक परिधानों में भी इस्तेमाल किया है।
0: हाँ, और तो और आप अगर साड़ी नहीं लेना भी चाहते तो उसके दुपट्टे भी ले सकते हैं। बुमकाई के दुपट्टे मिल रहे हैं, स्टॉल मिल रहे हैं, कुर्ते मिल रहे हैं और अन्य वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और इस तरह पारंपरिक बुनाई नई पीढ़ी तक भी आज पहुंच रही है।
1: बिल्कुल, और इस साड़ी में धागे केवल कपड़ा नहीं बुनते, वे उड़ीसा की संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन को भी उकेर देते हैं इसमें। और इसके अलावा उड़ीसा की धरती की सादगी, लोक जीवन के रंग और बुनकरों की कल्पनाशीलता जब करघे पर एक साथ उतरती है तब जन्म लेती है बुमकाई। और इसके हरे धागे में परंपरा की जो परंपराएं होती है
0: वो देखने लायक होती है। बहुत ही सुंदर होती है बुमकाई साड़ी। और अगर हमारी बहनों में किसी के पास है, जो सखियां सुन रही हैं, तो उसका जिक्र करें कि उनके पास क्या बुमकाई साड़ी है, अगर है तो किस रंग की है, उन्होंने इसे कब कब पहना,
1: और दुपट्टा या स्टोल भी है तो उसका भी जिक्र करें। और इस गाने में भी कोई दुपट्टा ढूंढ सकते हैं।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: तो मंदाकिनी जी, आप लगता है कुछ अनुवाद करने लगे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, क्योंकि वैसे एक बात कहें, अनुवाद करने की जरूरत नहीं, आजकल सब कुछ अगर डिजिटल हम ढूंढते हैं तो सब कुछ हिंदी में उपलब्ध है,
1: मिल जाता है।
0: लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच, बल्कि दो भाषाओं के बीच ही नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, दो संवेदनाओं और दो संसारों के बीच पुल का काम करता है, और एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा के पाठक तक उसी भाव और अर्थ के साथ पहुंचाने का काम भी करता है। इसीलिए अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आप साहित्यकार हैं, आपको पता है कि जब आप अपनी किताब लिखती हैं और उसके बाद कोई और साहित्यकार या आलोचक या अनुवादक आपसे आपकी किताब मांगता है और आपकी किताब को अन्य भाषा में जब अनुदित करता है तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि हर भाषा अपने भीतर एक संस्कृति, एक इतिहास और भावनाओं की पूरी दुनिया समेटे होती है, लेकिन अलग अलग भाषाओं के बीच संवाद संभव बनाता है ये अनुवाद। और इसीलिए आज का एक खास दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
0: तभी तो कहा जाता है ना कि अनुवाद भाषाओं के बीच बना वो पुल है जिस पर शब्द एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं और अपने साथ भाव, विचार और संस्कृति को भी लिए चलते हैं। और आपको बताऊं मंदाकिनी जी कि जाने माने गीतकार गुलजार साहब अक्सर कहते हैं कि जब कोई किसी किताब

0: अनुवाद के बाद भी हम आलोचना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छा अनुवाद वो है जिसमें भाषा बदल जाती है लेकिन भाव नहीं बदलता। तो कविताएं हो, कहानियां हो, उपन्यास हो, वैज्ञानिक ज्ञान विचार हो, जब अनुवाद के माध्यम से सीमाएं पार करते हैं तो दुनिया थोड़ी सी करीब आ जाती है। और साथ ही भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर अनुवाद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ममता जी, हिंदी की बात करें, तमिल है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, असमिया है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है और अनेक भारतीय भाषाओं का साहित्य अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के करीब आता है और एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के साथ पाठकों तक पहुंचता है और हमारी विविधता के बीच एक साझा सांस्कृतिक जो रिश्ता हमारा बनता भी है।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना ज्यादा पसंद करते हैं। अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अनुवाद के बारे में ये गाना क्या कहता है जरा सुनते हैं।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। तो भाई 3 अक्टूबर जश्न का दिन होगा और हमारे श्रोता भी तैयार रहे, हम सब तैयार हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: तो भाई 3 अक्टूबर को सब तैयार रहे।
5: हाँ,
0: हमें भी इंतजार है, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है और हमें इंतजार है कि आप मोबाइल में जो देख रही हैं
5: क्या पढ़ने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले 3 अक्टूबर की बात भी कहना चाहूंगी ममता जी कि हमारे श्रोता तैयार रहे हैं दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 4 बजे तक लगातार वो कार्यक्रम जो लगातार लाइव ब्रॉडकास्ट होगा उसे सुनना नहीं भूलें और अपने विचार लिखना नहीं भूलें।
0: मतलब सारे काम मुलतवी करके 11 बजे से लेकर 4 बजे तक विविध भारती के रेडियो सेट के पास बैठ जाए और विविध भारती सुनते रहे।
5: सुनना और लाइव ब्रॉडकास्ट देखना है भाई।
0: बिल्कुल,
5: हम लाइव होंगे ना
0: जी, फेसबुक लाइव करेंगे।
5: बिल्कुल।
0: तो अभी आप जो पढ़ने वाले थे,
5: हाँ वो ये पढ़ना चाह रही थी कि अनुवाद पर जब हम बात कर रहे थे, हमारे श्रोता कहते हैं कि अनुवाद करना उन्होंने भी सीखा था परंतु उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए। पर हम उन लोगों को, उन अनुवादकों को बहुत बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथों को, कहानियों को, उपन्यासों को दूसरी भाषा में अनुवाद करके हम लोगों तक पहुंचाया है। अनुवाद करने से हर भाषा का ज्ञान हर अलग अलग भाषा भाषियों को हो जाता है, ये बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है।
0: मंदाकिनी जी, आजकल एक श्रोता और लिख रहे हैं कि आजकल फिल्मों में सब टाइटल स्क्रीन पर चलते हैं जिससे समझने में बड़ी आसानी होती है। मैं अलग अलग राज्यों की स्थानीय भाषाओं में बनी फिल्मों को, खासकर साउथ की फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्मों और कोरियन टीवी सीरियल्स को सब टाइटल्स के साथ देखता हूं।
5: ये होता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब हम उन अनुदित फिल्मों को देखते हैं तो मजा भी आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है और सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना पसंद करते हैं और अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
0: और एक बात और है, एक भाषा का साहित्य दूसरी भारतीय भाषा में पहुंचने से पढ़ने वालों का संसार भी व्यापक होता है। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी एक का साहित्य हिंदी पाठकों तक, हिंदी का साहित्य अन्य पाठकों तक अनुवाद के माध्यम से पहुंच सकता है तो कितनी अच्छी बात है। आज जहां पर मशीनों के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसलेशंस किए जा रहे हैं, एआई के जरिए और डिजिटल अनुवाद उपकरणों ने अनुवाद को काफी समृद्ध बना दिया है और तेजी भी आ गई है। साहित्यिक, कानूनी, सांस्कृतिक और संवेदनशील सामग्री में जो मानव अनुवादक की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एआई के माध्यम से जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती
5: हो जाती हैं, वो जो फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, अनुवाद तो हो जाता है।
0: कई बार उपयुक्त शब्द की बजाय कुछ और शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है और आप वहां पर चूक जाते हैं।
5: बिल्कुल, और अब हम चूक रहे हैं, गाना नहीं सुनवा रहे हैं।
0: बिल्कुल नहीं, ये रहा गाना, सुनते हैं।

0: मंदाकिनी जी, जब आपसे आपसे छोटे मतलब आपसे आगे की पीढ़ी की कोई कोई नौजवान, कोई लड़की या कोई लड़का आपसे कुछ पूछता है, अरे आंटी आपको इतनी समझ नहीं है, अब जमाना बदल गया है, तो आपको कैसा लगता है?
1: सच बताऊं तो मुझे हंसी आती है उनकी मासूमियत पर, उनके भोलेपन पर। और होता है घर में जो हमारे बच्चे हैं या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो अक्सर कहते हैं अरे आपको इतना भी नहीं पता, अरे ऐसा नहीं होता है, अब कितना कुछ बदल गया है, आप नहीं जानते, ऐसा
0: ओल्ड
1: होता है।
0: जनरेशन, आप ओल्ड जनरेशन हो, जबकि बहुत बड़ा फासला नहीं है दो पीढ़ियों के बीच, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो दरअसल जो जनरेशन गैप है, ये पीढ़ियों के बीच बढ़ती सोच की दूरी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा। और हर पीढ़ी क्या है ममता जी, अपने साथ एक नया समय लेकर आती है और उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है, पसंद नापसंद, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। और यही अंतर जब समझ की कमी और संवाद की दूरी में बदल जाता है तो हम पीढ़ी अंतराल पर आ जाते हैं, यानी जनरेशन गैप की बात हम करते हैं।
0: बिल्कुल। और एक ही परिवार में रहने वाले माता पिता बच्चे कई बार एक दूसरे से तो प्रेम बहुत करते हैं, फिर भी उनकी सोच में इतना फासला होता है कि छोटी सी बात पर बहस छिड़ जाती है और वो समझ नहीं पाते कि ये बहस कहां से कहां चली जाएगी।
1: बिल्कुल
0: समय के साथ जब समाज तेजी से बदल रहा है, आज की पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आधुनिक शिक्षा के वातावरण में बड़ी हो रही है, तो ऐसे में जानकारी पाने के साधन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। दूसरी तरफ पिछली पीढ़ियों ने सीमित साधनों और ज्यादा पारंपरिक वातावरण में जीवन बिताया है, तो ये
1: बिल्कुल
0: स्वाभाविक है दो
1: कि
0: पीढ़ियों के बीच
1: एक
0: का।
1: अंतराल होगा। लेकिन माता पिता को लगता है ममता जी कि आज के बच्चे बहुत जल्दी बदल रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उन्हें लगता है कि उनकी बड़े लोग जो है उनकी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, फर्क केवल समय का है। और जिन परिस्थितियों में एक पीढ़ी बड़ी हुई, दूसरी पीढ़ी उन्हीं परिस्थितियों में बड़ी नहीं हुई। जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत पुरानी पीढ़ी जो है बहुत ही पारंपरिक तरीके से बड़ी हुई, लेकिन जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ही कहते हैं ना मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो तकनीक और तेज बदलावों के बीच बड़ी हो रही है। और इसके लिए मोबाइल की बात करें, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये उनके जीवन का एक आम हिस्सा हो गई है। और वहीं पिछली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, वहां पर रिश्तों को चिट्ठियों से, मुलाकातों से और आमने सामने की बातचीत के जरिए सींचा जाता है। तो दोनों अनुभव अलग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सही है या दूसरा गलत है, पर हमारे सोचने का ढंग ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे गलत हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। दरअसल दोनों पीढ़ियों के अनुभव अलग अलग हैं। बुजुर्गों के लिए जो बात अनुशासन और संस्कार की होती है, वहीं युवा पीढ़ी के लिए वो रोक टोक वाली होती है। उन्हें लगता है कि अरे नाहक रोक टोक कर रही हैं आप, हर चीज पे आप रोक लगाती हैं, मुझे तो ऐसा करना चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, ये होता है। और पहले के जीवन में जो स्थिरता थी, सुरक्षा को लेकर ज्यादा महत्व दिया जाता था, अच्छी पढ़ाई हो, स्थायी नौकरी मिले और विवाह में स्थायित्व हो, मतलब लंबे समय तक जीवन टिके एक दूसरे का, और परिवार को जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जाता था। लेकिन अब लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा बदल गई है कि हमें खुद क्या करना है वो हम तय करेंगे। पहले माता पिता बड़े बुजुर्ग तय करते थे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अब देखा जाए तो उनकी सोच भी गलत नहीं है। युवा पीढ़ी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक समय था कि बड़े तय कर देते थे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कहाँ जाना है, नौकरी करनी है कि नहीं, शादी कब करनी है,
1: ये और वही विवाह तय कर लेते थे माता पिता, और लड़की हो या लड़का बहुत ही सहज स्वीकार भी कर लेते थे उस रिश्ते को। अब क्या हो गया है ममता जी, कई जो बुजुर्ग है वो महसूस करते हैं कि आज के बच्चे पहले की तरह परिवार के साथ समय नहीं बिताते, उनकी बातें नहीं सुनते और जल्दी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या है कि बदलती हुई जीवन शैली भी जिम्मेदार है, क्योंकि पढ़ाई है, नौकरी है, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता फैली हुई है और डिजिटल दुनिया ने युवाओं की जो दिनचर्या है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसकी दिनचर्या को बिल्कुल बदल दिया है। इसलिए हर बदलाव को संस्कारों की कमी मानना ये उचित नहीं है कि नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है, हम तो बहुत संस्कारित थे। इस तरह की बात जो हम करते हैं ना, वो पीढ़ी अंतराल को बढ़ाती ही है।
0: समय भी प्रतिस्पर्धा का हो गया है। पहले समय आसान था, जिंदगी आसान थी, अब उतनी आसानी नहीं रही। आज के युवा अपने करियर में नए नए विकल्प तलाशना चाहते हैं। वे नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कला, खेल, डिजिटल मीडिया और दूसरे नए क्षेत्रों में भी करियर अपना आजमाना चाहते हैं। यहीं से कई बार मतभेद शुरू हो जाते हैं और माता पिता और दादी दादा, खासतौर से नानी नाना में लंबा गैप होता है, तो उनका ये कहना होता है अरे भाई यहीं पर हमारे घर घर हमारे नजरों के सामने रहो तो ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों की सोच है कि हमें अच्छा करना
1: चाहिए। वो बाहर जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं। हमारे समय में क्या होता था कि पढ़ लिया, आपने एमए कर लिया, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ या एलडीसी का एग्जाम देकर क्लर्क बन जाओ और लेकिन रहो इसी शहर में आसपास, तो हम मान लेते थे उस बात को। लेकिन आज के बच्चों के सामने बहुत बड़ा संसार है, वो उसमें जीना चाहते हैं और हमें उन्हें जीने देना चाहिए।
0: बातें कितनी भी कर लीजिए, रहिए इर्द गिर्द गीत के साथ, सुनते हैं ये गाना।

0: बिल्कुल सही कहा, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, और आपका साथ मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ममता जी।
1: मुझे भी आपका साथ बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो प्रशंसा की बात हो गई, लेकिन हम इस पर अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले एक जरूरी बात अपने सखियों से खासतौर से साझा कर लें, सखाओं से भी।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल रफ्तार जब हौसलों से मिलती है तो इतिहास रच उठता है, और कल एशियन गेम्स के ट्रैक पर भारत की चार बेटियों ने यही इतिहास रचा। किरण पाहल, एम आर पूवम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज, इन चारों ने ऐसी दौड़ लगाई कि 400 मीटर रिले में ऐसी दौड़ लगाई कि तिरंगा सबसे ऊपर लहराया अपना तिरंगा, और भारत की झोली में आया स्वर्ण पदक। ये सिर्फ 400 मीटर की चार दौड़ नहीं थी, बल्कि ये मेहनत, उम्मीद और हौसले की दौड़ थी। किरण ने शुरुआत की, पूवम्मा ने बढ़त बनाई और प्राची ने उसे संभाला, और आखिरी चरण में विद्या रामराज ने अपनी रफ्तार से भारत का स्वर्ण पक्का कर दिया। तो सलाम करते हैं इन चारों लड़कियों को, गोल्डन गर्ल्स कहलाएं, और जिन्होंने साबित कर दिया कि जब कदमों में जुनून हो तो मंजिल दूर नहीं
0: होती। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए कि लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें अभी जब हम पीढ़ी अंतराल की बात कर रहे थे, वही बात होती कि लड़कियां हैं, तुम घर का काम करो, तुम्हें तो आखिर पढ़ लेकर करना क्या है, घर का काम ही तो करना है। ये जो मानसिकता है अब लड़कियों ने बिल्कुल दूर कर दी है। घर का काम अपनी जगह है, लेकिन बाहर की दुनिया में अपना परचम फहराना ये लड़कियों ने सीख लिया है और वो कर भी रही है।
1: ये जो प्रशंसा वाली बात है ना, तो उन लड़कियों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, इन चारों लड़कियों की और देश की उन तमाम लड़कियों की जो अपने जुझारूपन से बहुत कुछ कर रही हैं,
0: बिल्कुल
1: लीक से हटकर कर रही हैं, जहां पर उन्हें सही वातावरण नहीं मिल रहा है, उचित माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए, फिर भी अपना परचम लहरा रही हैं। अब हमारी एक सखी है जो कह रही है कि प्रशंसा के कुछ शब्दों में वो ताकत है जो किसी की भी दुनिया बदल सकती है। अगर हम प्रशंसा का अर्थ समझें तो हर दिन हर पल की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमें जीने का अवसर देती है। प्रशंसा के कुछ बोल निराशा में बड़ी आशा का काम करते हैं, मगर एक सच और है, अक्सर हम दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाते क्योंकि हम मन ही मन उसकी तुलना स्वयं से करने लगते हैं। मगर जब मन को कुछ अच्छा लगे तो उसे जाहिर कर देना चाहिए, कोई चीज दिल को छू जाए तो उसकी प्रशंसा जरूर करें।
0: बिल्कुल सही कहा, एक सखी ने लिखा है कि अगर प्रशंसा की बात करें तो किसे अच्छी नहीं लगती। रेडियो सखी ममता जी और मंदाकिनी जी द्वारा हर प्रोग्राम की प्रस्तुति प्रशंसा करने लायक होती है, फिर वो सुरीला सफर हो, सखी सहेली हो या छाया गीत, हम उनके प्रति माया हो ही जाती है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने विविध भारती चैनल बनाया। अगली 3 अक्टूबर के दिन विविध भारती का जन्मदिन जो आ रहा है, हम सभी अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं।
1: क्या बात है, शुक्रिया। और एक सखी ने लिखा, एक श्रोता ने लिखा है, तारीफ वही अच्छी लगती है जिसमें दिखावा नहीं बल्कि दिल से निकली सच्चाई हो, और सच्ची तारीफ से अपनापन बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी कार्य में प्रशंसा प्राणवायु का काम करती है, किसी के अच्छे काम या गुणों की सच्ची पहचान यानी प्रशंसा बहुत अच्छी बात है। खूबी, सुंदरता, महिमा कह देना, स्तुति कर देना, गुणों का बार बार बयान करना यानी गुणगान करना, इसके अलावा बधाई या अभिनंदन में भी स्तुति की छटा दिखाई देती है। आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक व्यवहार को अच्छी प्रेरणा मिलती है प्रशंसा से, और आपसी संबंध बेहतर बन जाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि शब्द हमारे हैं लेकिन जब आपके विचारों से जुड़ते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आपकी प्रशंसा हमारे लिए हौसला है, और प्यार से मिले शब्द हमेशा दिल में रह जाते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि प्रशंसा जहां जरूरत होती है वहां जरूर करनी चाहिए। प्रशंसा के लायक कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गुण, कार्य, व्यवहार देखकर प्रशंसा की जाती है। हमारे घर में कोई भी सदस्य अगर इसका पात्र होता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और मैं तो करता हूं जरूर प्रशंसा।
1: अब कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। कई बार जब प्रशंसा चापलूसी का रूप ले ले तो वो प्रशंसा नहीं होती है बल्कि वो चापलूसी कहलाती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अब हम सुन लेते हैं एक गीत ममता जी।

0: तो गाने की प्रशंसा करने वाली है क्या?
1: बहुत
0: ये वो गाने हैं हाँ। जो आपके दिल में निवास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और किसी की प्रशंसा भी हमारे दिल में बैठ जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, प्रशंसा बड़ा नवीन और रोचक मुद्दा है। तो ये भी तो प्रशंसा हुई हाँ। हमारे लिए हाँ। प्रशंसा के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। कोई शो लगा दीजिए तो अपने आप प्रसन्न हो गया मन और हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि अरे तुमने हमारे लिए लगा दिया। हमारी नानी दीदी को नानी दादी को मारवाड़ी सास बहू का शो देखकर मजा आता था। हमें तो और भी कुछ शोज के नाम लिखे हैं जो टेलीविजन पर इन्होंने देखे कि वो हमें बड़ा अच्छा लगता था और जब कोई लगा देता था तो हम उसकी प्रशंसा करते थे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और प्रशंसा तब भी की जाती है ममता जी जब हम कोई अच्छा व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि मैं सूजी के व्यंजन बनाऊंगी आप खाएंगे तो निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेंगे।
0: तो पहले तारीफ कर दे, बहुत अच्छा सूजी का व्यंजन आपने बनाया, सूजी का हलवा बनाने वाली है या उपमा या फिर कुछ डोसा।
1: बहुत सारी चीजें हमारे जो सखियों ने भेजी है हम उनको देखते हैं क्या क्या बनवाती है वो हमसे। देखिए एक लिखते हैं कि सूजी का बहुत ही आसान व्यंजन है लौकी के चिल्ले जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए आपको हरी मिर्च लौकी पानी आवश्यकता अनुसार लेना होता है और सूजी को बहुत कम पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें, थक कर फिर उसको रख दें। तब तक लौकी को कद्दूकस कर लें और अच्छे से धो के उसका पानी बिल्कुल अलग करके सूजी में मिला दें और हरी मिर्च भी डाल दें, साथ ही मसाले नमक अजवाइन ऑर्गिनो जो भी उपलब्ध हो सबको मिक्स करके लोहे के तवे पर फैलाकर बहुत हल्के घी में चिल्ले को सेक लें। सेकते समय चिल्ले को उतारने से पहले उसको थोड़ा सा पलटें दबा दें जिससे वो सॉफ्ट बन जाते हैं। इसमें बहुत कम घी और समय भी बहुत कम लगता है।
0: और अब घड़ी की ओर देखिए कि बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम और कुछ कोई रेसिपी बताएं या कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहरी कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ही सहेली। एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे है।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे बीच हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जिनकी रचनाओं में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि दृश्य की तरह हमारे सामने घटित होती है। मनोज रूपड़ा समकालीन हिंदी साहित्य के चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी है और साथ साथ गहरी संवेदना, सामाजिक यथार्थ और दृश्यात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। आखिरी सीन जैसी कहानी और प्रतिसंसार जैसे उपन्यास में उनका सिनेमाई लेखन पाठक को शब्दों के माध्यम से दृश्य देखने का अनुभव कराता है। उनकी रचनात्मक दुनिया में इंसान, समाज और उसके भीतर चलने वाले द्वंद बहुत सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने आते हैं। आज हमें उनसे उनके लेखन, उनकी रचनात्मक दृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोगों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। मनोज जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार और विविध भारती के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: आपकी कहानियों में कहीं रेडियो आता है, बड़े वॉल वाला रेडियो
1: जी, जी।
0: और कहीं पर संगीत आता है, तो संगीत की बातें तो हम करेंगे बाद में, लेकिन हम रेडियो की बात जानना चाहते हैं कि रेडियो से कैसा लगाव है। और एक जो आपकी कहानी है टावर ऑफ साइलेंस, इसमें कहीं रेडियो भी है और साथ में मुंबई भी है
1: जी।
0: और मुंबई में है आप और रेडियो स्टेशन पर बैठे हैं, तो ये अपने एहसास साझा कीजिए
1: जी। मुझे याद आ रहा है एक इलाका है मुंबई का जहाँ पुराने रेडियो के अब भी, मतलब अब तो शायद ना हो, उसको सुधारने वाले उसके मैकेनिक होते थे। तो उस दुकान में मैं पहुंच गया, वहां बहुत बड़े बड़े रेडियो थे वॉल वाले और इतने खूबसूरत उसके कैबिनेट। तो देखकर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसमें से एक दो रेडियो खरीद लूं।
0: क्या बात है।
1: लेकिन उसने कहा कि आप लाख रुपया देंगे तो भी ये रेडियो आपको नहीं मिलेगा।
0: अरे
1: जबकि वो सब बंद पड़े हुए रेडियो थे
0: जी जी।
1: लेकिन उन रेडियो के जो मालिक थे
0: जी,
1: वो इतने बड़े रेडियो प्रेमी थे कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से फिर से ये रेडियो में आवाज आनी शुरू हो जाए।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि वो वॉल वाले रेडियो थे और वो बढ़ने बंद हो चुके थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि कहीं से भी वॉल लेकर आओ, तब तक ये रेडियो तुम्हारे यहाँ पड़े रहेगा। तो इतने पुराने मतलब प्रेमी थे रेडियो के लोग। और मैं तो बहुत पुराना प्रेमी हूँ रेडियो का, विविध भारती वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, बीबीसी लंदन सुनता था। और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं सुनता था, दूसरे जो कार्यक्रम आते थे महत्वपूर्ण रेडियो के, रेडियो नाटक का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं। इसलिए मैं आपकी जो एक धारावाहिक चल रही है
0: गीतों
1: भरी कहानी, उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ क्योंकि मुझे रेडियो आर्टिस्ट की आवाज शुरू से बहुत पसंद रही
0: है। क्या बात है
1: जी।
0: और आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती रहती है कहानियों पर, खासतौर से गीतों भरी कहानी पर। तो रेडियो से आपका प्रेम पहले से ही आपने बताया है। हम लिखने के बारे में जानना चाहते हैं, ये लिखने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की?
1: शुरुआत इस तरह से हुई कि 17 साल की उम्र का जब मैं था
0: जी,
1: तो एक मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, 7 दिन का वो वर्कशॉप था। और रायपुर आकाशवाणी के निदेशक उस समय थे मिर्जा मसूद
0: जी जी,
1: वो उस ड्रामा प्रशिक्षण केंद्र जो था उसके वो प्रशिक्षक थे। तो मिर्जा मसूद से मैं पहले से प्रभावित था उनकी आवाज से और उनके, और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे वो
0: जी।
1: कई अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे। तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया, वहां कुछ लोग ऐसे मिले जो पढ़ने लिखने वाले थे, कला की दूसरी विधाओं से जुड़े हुए थे। उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहां जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम हृदय तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है, स्कूल छूट गई कोई बात नहीं
0: जी।
1: स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है
0: जी, जी।
1: लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया है।
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
0: अच्छा।
1: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो और अखबार में संपादकीय को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा।
0: जी, जी, जी।
1: फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर देते थे और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी, एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर, एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी
0: जी।
1: आप लोग सब जानते हैं मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, वो चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले, यार जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
0: अच्छा,
1: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियां पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग हिट लिखना है। तो दफन कहानी जो लिखी मैंने वो 3 साल में लिखी,
0: 3 साल में
1: मैं ये चाहता था कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए।
0: क्या बात है।
1: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा करके लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है, तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
0: क्या बात है,
1: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहाँ के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिल करके फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है, उस तरह से वो कहानी बनी। शुरुआत इस तरह से हुई।
0: इतनी रिसर्च करनी चाहिए।
1: मैं रिसर्च उस तरह से, देखो मैं मतलब पढ़ करके, किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहां भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं, लेकिन उस माहौल में जाकर के गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: उससे वो पूरा माहौल जो है ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
0: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं, और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, तो उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मैं भी समृद्ध हुई इस बात से
1: जी।
0: तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये कहाँ मिले आपको, कैसे ढूंढा आपने?
1: ये बंबई का ही है। और इसमें भी देखो, हमारे धोबी तालाब मरीन लाइंस के बीच में हमारे मामा की दुकान है मिठाई की, श्याम जी नारायण जी के नाम से, अब तो बंद हो गई वो दुकान। उनकी दुकान के ठीक सामने ये सारे पारसी परिवार थे
0: जी, जी।
1: रमन मिश्री जी जो हमारे बहुत अच्छे किताब, उनकी भी दुकान वही है बंबई में। अगर किसी को हिंदी साहित्य की कोई किताब खरीदनी तो उनकी दुकान पर जाना पड़ता था, तो मैं उनसे मिलने भी जाता था और अपने मामा से भी मिलने जाता था। तो ये जो परिवार जो था, जो मैंने जो करेक्टर जो लिए हैं उसमें, हक्कू भाई का जो करेक्टर लिया है, एक घर था उसमें 2 बूढ़े लगभग 85 के आसपास की उम्र की और एक बूढ़ी महिला उसकी भी लगभग 90 के आसपास की उम्र, और तीनों सगे भाई बहन थे, तीनों ने शादी नहीं की थी और एक ही घर में रहते थे तीनों। ये मुझे थोड़ा सा अलग तरह का वो लगा कि कैसे मतलब ये रहते होंगे भाई बहन एक साथ बिना विवाह किए इतने सालों से। तो मैं हर बार जाता था उस परिवार की कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करता था। तो टेम्पटन दस्तूर जो था वो उसके भाई का बेटा था।
0: अच्छा।
1: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है, फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
0: बिल्कुल।
1: वो पूरा जो लोकल है जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं वो इलाका वही है, और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका है उसमें मुझे हर जगह एक कहानी छुपी हुई दिखती है, क्योंकि सब इमारतें 100-150 साल पुरानी हैं
0: जी।
1: तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक लोकल था, और फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ तो नागपुर में इम्प्रेस मिल थी, उस इम्प्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा, तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इम्प्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इम्प्रेस मिल, और उस इलाके की भी बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी उस मिल के कारण बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया। तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को एक हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं होता। जब वो चिमनी गिराई गई तब पहला बीज मेरे कहानी में आया, तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया, लोकल को, एक यहाँ का इम्प्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर हैं, तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
0: जी, तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी या अपने आप लिख जाती है?
1: कहानी लिखते समय कभी भी ना ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
0: बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद्व के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
1: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरे कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहें, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
0: बिल्कुल,
1: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
0: जी जी,
1: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
0: जी जी, और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाएं अपने श्रोताओं?
1: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें सेक्सोफोन की आवाज है, उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली।
0: जी,
1: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सेक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है।
0: जी, तो सुनते हैं ये गाना।

0: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन हैं, संगीत के बहुत शौकीन हैं,
1: जी
0: जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सेक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन
1: हाँ
0: कहानियों का एक संग्रह है,
1: जी
0: अनुभूति,
1: अनुभूति
0: जिसमें
1: जी
0: तीन कहानियां साज ना साज और आमाजगा और अनुभूति,
1: अनुभूति जी
0: तीनों कहानियां मैंने पढ़ी हैं,
1: अच्छा
0: और
1: जी
0: तीनों में संगीत के सुर हमें दिखाई देते हैं और खास तौर से वाद्य। तो इन जो तीनों कहानियां हैं, तीनों कहानियों के बारे में आप बताइए कि पहले तो साज ना साज में
1: जी
0: शायद सेक्सोफोन है,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: जी
0: ये सेक्सोफोन ने आपको यहां पर कहानी लिखने के लिए बुलाया या आपको बुलाया सेक्सोफोन ने, क्या थी?
1: दोनों मिली जुली चीजें हैं। मैं एक बार गोवा घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ। वहां पणजी में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हबी साहब का भी एक प्ले था, रमेश तलवार साहब का भी प्ले था, गिरीश कर्नाड साहब का भी एक प्ले था और रतन थियम का भी था। तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा।
0: जी
1: एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बिटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, अधपके सफेद बाल, और वो सेक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और वो सेक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक था, यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, वो जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था,
0: क्या बात है।
1: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया।
0: असर किया।
1: वो सेक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना, फिर कई सालों तक तो वो मेरे दिमाग में था कि ये सेक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। बंबई आना हुआ उसके बाद, मेरा लगभग 10 सालों के बाद,
0: जी
1: बंबई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाजू में एक चाल थी, वहां कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे साज बजाने वाले, जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित, हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर के चौल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे और ढोलक, शहनाई, तबला, इस तरह के वाद्य बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे,
0: जी।
1: और ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजाए फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया कि अब उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल
0: आजीविका पे
1: होता है,
0: खतरा बन
1: आजीविका
0: रहा
1: में बड़ा
0: लगा।
1: फर्क आ गया। तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सेक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, किसी भी, हम संगीत निर्देशक को जानते हैं कि किस फिल्म में किसने संगीत दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई है
0: बिल्कुल नहीं बताया जाता।
1: ये हमको नहीं मालूम होता है हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से, मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर साज ना साज का।
0: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी,
1: जी
0: जिसमें
1: जी
0: सारंगी का
1: जी
0: खूबसूरत
1: जी
0: प्रयोग है,
1: करें।
0: तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
1: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था
0: जी
1: और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सेक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे।
0: जी
1: वो इस लिहाज से कि सेक्सोफोन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सेक्सोफोन जो नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा में भी आया। ठीक वैसे ही सारंगी भी,
0: दुख
1: सारंगी
0: के समय
1: भी
0: और दुख में
1: और उसको भी शास्त्रीय संगीत के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज की भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो हो गई अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
0: बिल्कुल।
1: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इतना मतलब ये कहां से आया, अच्छा उसकी आवाज इतनी सुरीली है, वो इतनी खींचने वाली आवाज है, सैक्सोफोन की भी और सारंगी की भी। फिर ये ख्याल आया, और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर्व
0: जी, पंडित कुमार गंधर्व,
1: हाँ, उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबर आई, तो उनके उस पीरियड में उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूँ। बल्कि सिर्फ आवाज का ही नहीं, इसका जो सितार वादक है अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे जहन में था, और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई
0: और बहुत चर्चित हुई। और ये अनुभूति कथा संग्रह में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है।
1: तो असल में देखो, जो वाद्य बजाने वाला कोई भी जो शख्स है, उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है, तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते, अच्छा दिक्कत एक ये आती है जो एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है जो मेरे नजर में तो एक कहानी है, है ना, उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है और उसके जो मोड़ है वो कहानी वहीं से बनती है
0: जी।
1: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ
0: जी, और एक उम्दा कहानी बनती है। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई थी आपके उपन्यास पर, जिसे जेसीबी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले अध्याय पर, काले अध्याय का जब अनुवाद आया था
1: जी जी,
0: तो ये क्या कहानी है, कैसे किसी
1: के मन में? डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी, असल में जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
0: शॉर्ट फिल्म थी, कोई
1: शॉर्ट फिल्म थी उस लेखक के जीवन परिचय
0: जी जी।
1: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी, जो जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे
0: जी,
1: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसकी, और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है
0: जी जी। तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के
1: नहीं,
0: लिए
1: मैं, मुझे अवार्ड नहीं मिला था जिनका,
0: पर आपकी किताब शामिल थी उस,
1: किताब शामिल थी मेरी
0: जी, तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और लोगों तक पहुंची, हमने भी देखी वो फिल्म, बेहतरीन।
1: वो असल में जैसे भी एक विज्ञापन फिल्म थी, वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं।

0: बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना, फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है, उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं, हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रोपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं, तो बताइए इस शौक के बारे में।
1: मैं अपने आपको जो ना फिल्म का मर्मज्ञ या विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूँ,
0: लोग मानते हैं,
1: मैं अपने आपको फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूँ
0: जी।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है।
0: सही बात है।
1: और ये मुझे कब लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए, तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से सतीश बहादुर साहब को बुलाया। तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: पंडित जी,

0: मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में?
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर सिनेमा देखना मैंने अलग ढंग से सीखा। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो सचित रे की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारूलता।
8: अच्छा,
7: चारूलता फिल्म के जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है। 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के, और कैमरे का मूवमेंट जो है ना, उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
8: जी जी,
7: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताती कि वो क्या हो रहा है उसके साथ। बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारूलता की, वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
8: आपको फिर वहाँ एडमिशन मिला कि नहीं?
7: नहीं मिला,
8: नहीं मिला।
7: उसके बाद वही पटना जाना पड़ा, पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
8: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियां और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि बहुत जरूरत से ज्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत जरूरत से ज्यादा पढ़ाई किया हुआ, अध्ययनशील। तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
7: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी
8: पास नहीं हो पाऊंगा। ओके।
7: अच्छा, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे
8: जी,
7: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो। गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ
8: जी।
7: तो घर में ऐसा, मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
8: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
7: हाँ हाँ, हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है, और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
8: बस,
7: तो बस बहुत हो गया।
8: हाँ।
7: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
8: अच्छा,
7: अच्छा, मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में, लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयां बनाने में भी। और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
8: अच्छा। तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया, और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खासतौर से आपकी पत्नी, तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा बात चलिए तो उनका भी जिक्र कीजिए।
7: नहीं, वो भी उसी परिवार से है, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था। और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयां बनाने, उसने पूछा ही नहीं, जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में है और मैं 6ठी फेल हूँ, तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
8: अच्छा।
7: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयाँ कितनी बनानी आती है।
8: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
7: उसके मतलब कारण पास हो गया।
8: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने पास किया कि नहीं?
7: बिल्कुल पास किया होगा।
8: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
7: मैं हर राखी के दिनों में एक मिठाई बनाता हूँ, मोहन थाल, गुजरात की बहुत स्पेशल मिठाई है
8: जी।
7: वो मिठाई मेरे हाथ की बनी हुई सबको बहुत पसंद है
8: जी। क्या बात है।
7: हाँ, सबको बहुत पसंद है। तो वो बहुत जिद करती है। नीता के चार पांच भाई हैं और मेरी भी चार पांच बहनें हैं, तो फिर वो इतनी बनती है कि सबको एक एक बॉक्स मिठाई हर के घर में पहुंच जाती है।
8: क्या बात है। ये बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं। और बात मिठाई की चली, मिठास तो संगीत भी घोलता है, तो यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, मीठा सा कोई गाना बताइए।
7: बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा गाना है, वो पियानो बहुत खूबसूरती से उसमें बजा है। मधुबन खुशबू देता है, सागर रावण देता है
8: जी। साजन बिना सुहागन फिल्म का नाम है, सुनते हैं यही गाना जी।

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है, मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है। आपकी कहानी है आखिरी सीन
1: जी।
0: और एक उपन्यास भी है प्रति संसार, तो ये क्या इस सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य उपस्थित किए गए
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: एक मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
0: जी
1: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूं। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं, तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूं। वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहां कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है, दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं,
0: जी।
1: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता,
0: जी
1: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का,
0: जी
1: उसमें सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में एक बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितने कश्मकश में जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उस पर कई कहानियां हैं और उसको एक लीला

0: सदर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया, लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो 2-3 साल तक लगातार चलती रही कसमकस का। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता, तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा कि एक निर्देशक है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
1: जी जी,
0: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है, तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन किया उसको कल्पना में बनाता है। यानी वो उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब टीम भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है, अब वो खोए रहता है ख्यालों में और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है। ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था।
1: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में। तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
0: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग होती है
1: जी।
0: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते, कभी वही कहानी भी अपने रंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं। जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
1: तुझी में वाट पाते।
0: हाँ हाँ, अब उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में एक कार फंस गई है
1: जी,
0: और वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उतनी धसते जा रही है
1: जी,
0: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक बूढ़ी महिला देख रही है वो जो उसका अतीत है
1: जी जी।
0: तो वो जो सीन है ना वो आपने नहीं लिखा है,
1: उस किरदार ने लिखा है,
0: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है। जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्यों को, जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता।
1: बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में बिगड़।
0: सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में कहे कि आत्मसात करना।
1: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: एक बहारो मेरा जीवन भी सवारो, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: बात बांसुरी और सितार की आपने की, तो क्या इस पर, सितार पर तो एक कहानी है अनुभूति,
1: जी
0: बांसुरी पर भी कोई कहानी लिखने
1: अब आ रही,
0: आ रही है?
1: अब वो कहानी नहीं है, वो अब उपन्यास है।
0: हाँ,
1: और लगभग आधा लिखा जा चुका है
0: जी।
1: और मेरी आदत है हमेशा कि मैं लिखने से पहले कई बार बताता हूँ लोगों से, यानी लिखा नहीं है। जैसे आमाज का कहानी जो थी, वो लिखने से पहले मैंने अपने एक दोस्त है बसंत त्रिपाठी, दोस्तों के साथ बैठा था, बसंत के साथ उन्होंने, और मैंने वो पूरी कहानी उसको सुनाई, जबकि उसका एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा था। ये जो कहानी है बांसुरी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरा अभी मतलब अभी लिखा नहीं है मैंने। एक बच्चा है जो माँ से बिछड़ गया है
0: जी,
1: और वो लोकल मतलब किसी ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंच गया है, और वो मुंबई में लावारिस है और इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। उसमें एक अपाहिज बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा करके भीख मांगता है, उसके साथ उस बच्चे की थोड़ी अच्छी तालमेल हो जाती है, वो उसके साथ घूमता फिरता है, उसके साथ रहता है। मंदिर के सामने कभी बांसुरी बजाता था, कभी चौपाटी में जाकर के बांसुरी बजाता था, तो उसके साथ रहते हुए ये भी बांसुरी बजाना सीख गया। और कुदरती उसके अंदर कोई गुण था बांसुरी बजाने का, वो जब भी बांसुरी बजाता था तो आसपास चलते हुए लोग ठिठक के रुक जाते थे। तो ये किरदार अभी मेरे जहन में है,
0: लिखना बाकी है,
1: लिखना बाकी है जी।
0: तो इस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो आपने थोड़ा सा टीजर दिया है, तो हमें ही नहीं, हमारे सभी श्रोताओं को जो पाठक हैं, जो कहानी और साहित्य से प्यार करते हैं, तो शुभकामनाएं इसके लिए। मनोज जी, आपने फिल्मों का जो जिक्र किया, फिल्में इतनी सारी देखी हैं और आपके जहन में इतनी कचोट के साथ अंदर पैट किए हुए हैं, और कुछ ये जो भाषा का प्रयोग भी किया आखिरी सीन में और प्रतिसंसार में, तो आपकी क्या तमन्ना है कि आगे चल के आप फिल्मी राइटर बन जाएंगे, फिल्मों में लिखेंगे?
1: नहीं, फिल्मों पर मैंने लिखना इसलिए भी शुरू किया कि एक समय के बाद जब मैं विश्व की तमाम फिल्में जब देखता था, और उसके बरक्स जब मैं एशियन फिल्में देखता था, एशिया के देशों की फिल्में देखता था, एक समय मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम जो है ना, वही सारे पैरामीटर्स बनाता है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। कांस फेस्टिवल में लगभग उसी तरह की फिल्में आती है जिसका मानक पश्चिमी सिनेमा ने बनाया है। तो हर बार उनके चले हुए मानक, उन्हीं के पैरामीटर्स के कारण जो फिल्में बनती थी, और उनके ही सारे फेस्टिवल, उस विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे उनको बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मानक के आधार पर ही सारी चीजें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी। और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरक्स मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूं अभी।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना, उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा
0: जी,
1: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड्स। ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए
0: जी जी जी।
1: शिक्षा, और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहां बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के, ये फिल्म और इन फिल्मों की कहानी। फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफसाइड। ऑफसाइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है, तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का वो मैच देखने जाती है। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां।
0: तो ये सब अपने हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
1: हाँ, और मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया
0: जी।
1: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा
0: जी,
1: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है, तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?
1: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ, मोटे मोटे शब्दों में
0: जी,
1: कि किसकी किसी तरह की मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना, और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना, और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना। तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है।
0: जी जी,
1: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है।
0: जी जी।
1: तो ये भीतर बाहर के जो कसमकस है उसी में कहानियां हैं।
0: बिल्कुल। तो आपके लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे या घर के अंदर?
1: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने का जो तरीका था वो यही था। मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती मिठाई तोलने की उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का टेबल था, और लिखता था कुछ और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता।
0: जी जी, ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लेखकों को
1: हाँ एकांत चाहिए,
0: एकांत चाहिए।
1: हाँ, मैं अभी अपने वर्कशॉप में बैठकर लिखता हूँ।
0: हाँ,
1: तो काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
0: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है पढ़ते हुए, और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं, आराम से, तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं। लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं, तो ये जो तादाद में है किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
1: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा है वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और मैं एक एक वाक को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता, लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है, और मेरी ये कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक मतलब जो पूरे वाक्य में जो बात कही गई है एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उसको पढ़ने में मजा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसे हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूं ना भाई, मैं लेखक तो हूं, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीजें, तो जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
1: उत्कृष्ट तो, चित्रकार नहीं।
0: ये आप कहते हैं तो नहीं, चित्रकारी नहीं। के शौक और चित्रकारी के बारे में
1: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है, लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी का मैं हिम्मत कर ली थोड़ी, और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था मून एंड सिक्स पेनी,
0: जी
1: हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है वो सामान्य जिंदगी जीने वाला

0: वो LIC का एजेंट है, उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है, और वो अपने सब मेहमानों को जब बुलाती है, उसमें साहित्यकार हैं, कलाकार, ये सब आते थे, तो इससे वो मिलाती नहीं थी कभी से। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने, और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ हैं, उनसे मिलाओ हमको, बच्चे कहाँ हैं उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है कला में साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं बोले आपके घर आया हूँ तो उनसे मिलकर जाऊंगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा क्या समझा पता नहीं, और ये दो चार दिन के बाद वो LIC का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई, बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया है, और उससे पूछा गया भाई तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़ के, तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा यार, यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा कोई स्केच में नहीं किया कागज, अच्छा। में बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा।
1: जी जी
0: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है, भले वो किसी काम का ना हो लेकिन करना बड़े कैनवास
1: बड़े
0: में।
1: फलक पर, बढ़िया।
0: तो चार पांच चित्र मैंने बनाए और उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था
1: जी जी।
0: उस दौरे में दो चार हाथ मैंने चला लिए।
1: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई हैं स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी है। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?
0: नीता जी का योगदान ऐसा है,
1: सहयोग
0: नहीं बड़ा योगदान है, इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लिखने से पहले सुनाता हूँ, तो कोई और नहीं होता, जब मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो ये अकेली मेरी श्रोता होती है। कई मैंने कहानियां, जैसे अभी अनुभूति कहानी जो है वो मैंने अपने ऑफिस से फोन करके नीता को सुनाई कि अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है, तो नीता मेरी पहली श्रोता होती है और उसके एक्सप्रेशन मुझे समझ में आ जाता है कि कहानी ठीक बन रही है कि नहीं। इससे बड़ा योगदान क्या होगा?
1: जी जी क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: उपन्यास जो है काले अध्याय,
1: हाँ हाँ।
0: वो पूरा उपन्यास मैंने अपनी बेटी को सुनाया लिखने से पहले, उसको सुनाता था रात, उसको बहुत जिद होती थी कहानी सुनने की जब वो छोटी थी तब भी
1: जी।
0: रोज पापा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, जब तक मैं उसको कोई कहानी और बना बना कर कोई भी कहानी सुनाता था जिसका कोई सिर पैर ना हो
1: जी जी,
0: लेकिन जब तक नहीं सुना हो तब तक उसको नींद नहीं आती थी, तो लोरी सुनने के बजाय वो कहानी सुनती थी।
1: क्या बात है।
0: तो ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आपको जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
1: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को। मनोज जी बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही हैं, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, और हमें तो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां अब विराम लगाने को कह रही है, फिर कभी एक लंबी बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आज बस इतना ही, आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। शुक्रिया शुक्रिया।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार, कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के मेहमान।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण आकाशवाणी नागौर का। ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं, ये सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही भाषा होती तो क्या हमारे जीवन में इतनी खूबसूरती और विविधता होती? शायद नहीं। और अगर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे की बात समझ ही ना पाते तो ये दुनिया कैसी दिखती? आज तारीख है 30 सितंबर और आज का दिन उन्हीं जादूगरों को सलाम करने का है जो अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं के बीच एक मजबूत पुल बनाते हैं। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2017 में इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी। ये दिन बाइबल के प्रसिद्ध अनुवादक सेंट जेरोम की याद में मनाया जाता है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक भी माना जाता है। इस साल यानी कि 2026 की थीम रखी गई है द पावर ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, यानी समझे जाने की शक्ति। कितनी गहरी बात है ना। अनुवाद का मतलब सिर्फ एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा के शब्द से बदलना ही नहीं है दोस्तों, बल्कि उसके पीछे छिपी जो भावना है, संस्कृति और पहचान का बिना बदले सामने वाले तक पहुंचाना है, वो ही सबसे बड़ी खूबी है। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र की कोई बड़ी वैश्विक रिपोर्ट हो या आपकी, निश्चित रूप से अगर हम बात करें पसंदीदा फिल्म तो आपको उस रूप में मिलेगी जो वेब सीरीज के सबटाइटल हो, या फिर एआई और भाषिणी जैसे आधुनिक टूल्स के जरिए होने वाला रियल टाइम ट्रांसलेशन। अनुवादक और भाषा विशेषज्ञ हर पल दुनिया को आपस में जोड़ रहे हैं। अपन बहुत सारे अलग अलग रूपों में इसे समझ और देख सकते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से अगली बार जब आप ऑस्कर जीतने वाली किसी विदेशी फिल्म को अपनी भाषा में देखकर भावुक हों, या किसी विदेशी जो लेखक हैं उसकी किताब पढ़कर प्रेरित हों, तो पर्दे के पीछे छिपे उस अनुवादक को शुक्रिया कहना मत भूलिएगा जिसने उस कहानी को आपकी अपनी कहानी बना दिया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, भाषांतर और वास्तविक संवाद दो अलग अलग महत्वपूर्ण विषय है जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक और व्यवहारिक विशेषताओं के कारण विशेष अवसरों पर गहराई से जुड़ते हैं। भाषांतरण की अगर हम बात करें तो उसका सीधा सा अर्थ है एक भाषा की जो सामग्री है उसको दूसरी भाषा में बदलना। वैश्विक और बहुसांस्कृतिक समाज में इसका महत्व बहुत ही अधिक है। सांस्कृतिक मेलजोल के माध्यम के रूप में भी भाषांतर केवल शब्दों का अनुवाद ही नहीं करता, बल्कि ये दो अलग अलग संस्कृतियों, विचारों और भावनाओं के बीच एक पुल का काम भी करता है। दोस्तों, व्यवसाय और पर्यटन में भी किसी विशेष कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या फिर पर्यटन के अवसरों पर भी जो दुभाषिया यानी कि इंटरप्रेटर की मदद ली जाती है वो इसी के माध्यम से होती है। अलग अलग देशों के लोग भी आपस में जुड़ते हैं। साथ ही आज के जो डिजिटल युग है उसमें गूगल ट्रांसलेट जैसी आधुनिक AI तकनीकें जो हैं उन्होंने भी भाषांतर को बेहद आसान बना दिया है, जिससे कि लोग तुरंत एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वास्तविक संवाद और प्रामाणिक अलग अलग प्रकार की धरोहरों की, तो निश्चित रूप से जब हम किसी त्यौहार, शादी समारोह, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों के अवसर पर किसी विशेष क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों को उनकी असली रूप में परोसते हैं तो उसे वास्तविक संवाद कहा जाता है। और भोजन का असली संवाद न केवल पेट भरता है बल्कि पुरानी यादों और स्थानीय परंपराओं को भी जीवित रखता है। उसी तरीके से यह संवाद भी अपनी वैल्यू रखता है। दोस्तों, यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों बात करें करियर की, तो अनुवाद और भाषा विशेषज्ञ के रूप में करियर बनाना आज के वैश्वीकरण और डिजिटल युग में एक बेहद शानदार और सम्मानजनक विकल्प है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, सरकारी विभाग या फिर मीडिया के विस्तार के कारण भाषा के जानकारों की मांग लगातार बढ़ रही है। दोस्तों इस क्षेत्र में हम अपनी रुचि के अनुसार बहुत सारे अलग अलग पद पोस्ट पर काम कर सकते हैं। ट्रांसलेटर, जो कि लिखित दस्तावेजों, किताबों, कानूनी कागजातों या फिर तकनीकी फाइलों को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने का काम होता है। साथ ही दुभाषिया के रूप में बैठकों, सम्मेलनों, अदालतों में वास्तविक समय में मौखिक रूप से बातचीत का अनुवाद भी किया जा सकता है। स्थानीयकरण विशेषज्ञ यानी कि लोकलाइजेशन स्पेशलिस्ट किसी सॉफ्टवेयर, ऐप, गेम या वेबसाइट के कंटेंट को स्थानीय संस्कृति और भाषा के अनुसार ढालना, इस प्रकार का कार्य भी आज के समय की बहुत बड़ी मांग बन चुकी है। साथ ही राजभाषा अधिकारी सरकारी अनुवादक के रूप में भी बहुत ही अच्छा कार्य किया जा सकता है। भारत सरकार के मंत्रालयों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रम जो भी है उनमें हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद का काम की अलग अलग पोस्ट रहती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके लिए जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों एक सफल भाषा विशेषज्ञ बनने के लिए सही पढ़ाई और डिग्री का होना बहुत ही जरूरी है। स्नातक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा में या फिर भाषा विज्ञान में BA की डिग्री होना जरूरी है। स्नातकोत्तर साथ ही संबंधित भाषा में जो MA यानी कि मास्टर्स की डिग्री है वो भी आपको उच्च पदों के लिए योग्य बनाती है। अनुवाद में डिप्लोमा भी किया जा सकता है। स्नातक के बाद एक वर्ष का अनुवाद यानी कि PG डिप्लोमा करना सरकारी नौकरियों के लिए भी आपको अनिवार्य रूप में मिलेगा। दोस्तों विशेष रूप से अगर हम बात करें कौशल यानी कि स्किल्स की, तो वो हर एक क्षेत्र में बहुत ही कंपलसरी होती है। सिर्फ दो भाषाएं जान लेना काफ़ी नहीं है, इस करियर में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सी अलग अलग स्किल्स भी होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी स्किल की बात करें तो नाम आता है सटीकता और व्याकरण में कुशलता की। स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं के व्याकरण और शब्दावली पर मजबूत पकड़ होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अनुवाद करते समय उसे क्षेत्र की संस्कृति और मुहावरों की जो गहरी समझ है वो भी होना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि अर्थ जिससे कि बदल ना जाए। साथ ही CAT टूल्स की जानकारी होना भी जरूरी है। आधुनिक अनुवादक जैसे कि कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जिसकी जानकारी अगर हम हासिल करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी स्किल के द्वारा हम काफ़ी हद तक अलग अलग पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं। दोस्तों हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों, हम सब सुबह उठ के भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन उससे पहले 5 मिनट फ़ोन देख लेते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं एकाग्र क्यों नहीं हो पाता मन, कैसे होगा, उसको इतना ज़ोर से उथल पुथल जो कर दिया है। हम वो वाली पीढ़ी हैं जो फ़ोन के बिना जीते थे। अगर हम अपने एडिक्शन को नहीं छोड़ेंगे तो फिर अगर हम बात करें आने वाली पीढ़ियाँ, बच्चे, स्टूडेंट्स किस प्रकार से सीख पाएंगे। आज दुनिया ने मान लिया है कि ये जो मानसिक बीमारियां हैं इतनी तीव्र गति से बढ़ रही हैं कि इसमें एक बड़ा कारण हम मान सकते हैं साधन की गुलामी है, और निश्चित रूप से हम इसे अपने द्वारा, अपने आसपास, अपने घर परिवार में महसूस भी कर सकते हैं, ये सारी गड़बड़ियां जो हम सबके साथ हो रही है। भारत वो देश नहीं जहाँ डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब होना चाहिए था। आध्यात्मिकता को पावर बनाना है। भारत वो देश है जिसके पास अध्यात्म के वो टूल्स हैं जिनसे हम सिर्फ अपनी बीमारियों को ठीक ही नहीं करते बल्कि पूरे विश्व के साथ ये टूल्स साझा भी कर सकते हैं। वर्तमान समय की ये सारी बीमारियां हमने खुद ही बनाई है अपनी लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल के बदलने से तो मन की बीमारियां भी खत्म हो सकती है और तन की बीमारियां भी, और संबंधों में जो टकराव आ रहे हैं वो भी खत्म किए जा सकते हैं। हमारे हर संकल्प से भावना बनती है और फीलिंग्स बनती है। हर संकल्प की जो तरंग है वो हम सब की शरीर तक भी पहुंचती है, और हमने अभी अभी सोचा कि इससे क्या क्या नहीं हो सकता, इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पहुँचेगा और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका प्रभाव भी पहुंचेगा। हमारी एक भी सोच ऐसी हो नहीं सकती जिसकी वाइब्रेशन हमारे शरीर के हर सेल पर नहीं पहुंच रही हो। जब डॉक्टर कहते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक होना, कैंसर फैल जाना, डायबिटीज़ घर घर पहुंच जाना, ये सब लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, तो हम

फटाफट अपना खाना पीना सोना इसको ठीक कर लेते हैं, फिर भी बीमारी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि बीमारी सिर्फ खाने पीने या फिर सोने से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से है। जी हाँ दोस्तों, इसी सोचने के तरीके को सुधारने के संकल्प के साथ ही आज का युवाणी बस यहीं तक। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं, ये सुनते हैं कार्यक्रम पनिहारी।

जिंदगी ने सुंदर बनावणो तो सोच बदलनी पड़सी। जी हाँ बेणा, जिंदगी ने सुंदर बनावणो है तो सोच बदलनी पड़सी। कुरीतियां री जंजीरां ने आज तोड़नो पड़सी। रीति रिवाज वो ही सही है जको इंसानियत ने मान देवे। जी हाँ बहना, रीति रिवाज वो ही सही है जको इंसानियत ने मान देवे। समाज जद ही आगे बढ़सी, जद हर मन बदलाव ने पहचान देवे। कार्यक्रम सुनन वाली सगली प्यारी बहना ने धीरज लाल ने चारों घणो और घणो हेत भरो राम राम। आज मैं हाजिर हूँ था के मनपसंद कार्यक्रम पणिहारे में। तो बहना, आपणो जको वो प्यारो राजस्थान है, वो आपणी जकी रंग बिरंगी संस्कृति है, रीति रिवाज है और परंपरावां खातिर पूरी दुनिया के मायने जाने जावे है कि नहीं बहना? सही है ना? और वास्तव में बहना, अपनी जिकी संस्कृति है एक एक अलग ही पहचान है बहना। परंपरा रीति रिवाज रे लारे कोई ना कोई देखो भाव भी जुड़ियोड़ो हुआ करे है। ज्या की रिश्ता ने जोड़न रो भाव, बड़ा बुजुर्गा ने सम्मान देवन रो भाव, और खुशी और मिल बैठन री जकी ये परंपरावां है, ये वास्तव में बहना आपने जोड़ रखे है बहना। परंपरावां दे है जकी समाज ने भी जोड़े, संस्कार देवे और जीवन के मायने सकारात्मकता भर देवे बहना। पण जद कोई रीति समय रे साथे आपरो मूल उद्देश्य खो देवे और बिकी वजह से कोई व्यक्ति ने अगर नुकसान हुए, भेदभाव हुए बिके साथे और अनावश्यक भी ने अगर बोझ झेलनो पड़े, तो पछे बहना ये परंपरावां माते सवाल उठनो लाजमी ही है, है कि नहीं बहना? आपणी जकी संस्कृति है, आपने इन्हें बचावणो ही चाहिए। पण संस्कृति के नाम पर गलत बात ने बचावणो, आ तो बात बिल्कुल सही कोनी बहना। अबार समाज के मायने जकी दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, और बेटा और बेटी के मायने जको भेदभाव हो रियो है, और बेटा बेटी के अलावा जको जाति पाति के नाम माते जको छुआछूत भेदभाव हो रियो है, और इरे अलावा मौसर नशो और दिखावा के नाम माते कितनी ज़्यादा फिजूल खर्ची, ए एड़ी जकी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जकी समाज ने एक दीमक की तरह खाई जा रही है बहना। अब आर आप देखा कि अगर घर के मायने कोई को मतलब ब्याह है या और भी कोई तरह को मतलब जान की जन्मदिन है या और भी की चीज़ है, तो भी के लारे आप देखा कि बहुत ज़्यादा खर्चो परिवार वाला कर देवे है, और भी के लारे कारण भी है। देखो बिन के घर वाला तो इतो खर्चो करियो, आपा लारे की आन रेवा, आपा चोखा नहीं लगाला है ना, समाज का ही केवेला। लेकिन इके वास्ते वे ओ नहीं सोचे कि आपा जको खर्चो दिखावटी कर रही हाँ, आपा ने उधार लेनो पड़ रही है, आर्थिक बोझ के

0: खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: बहना, मोबाइल जो है अपनी जिंदगी ने कितनी ज्यादा आसान कर दी। अब बात तो कितनी सही है ना बहनास, मतलब सुबह उठते ही सगलो पहला तो आप भगवान ने याद करो, पहला भी मोबाइल ने देखा, सोचा टेम का ही गयो है कि नहीं, और इके अलावा भी देख ला कि कटी कोई को मैसेज आयोड़ो है, गुड मॉर्निंग को आयोड़ो है, तो रामा समा कर ला। हाँ आप बात तो ठीक है, चलो अड़ तक हुए जड़ तक तो ठीक होनी। और हालांकि देखो बहना, मोबाइल जो है अपनी जिंदगी आसान तो करी है, पहला सोचता आप कोई ने समाचार भेजनो हो तो

कोई ने चिट्ठी लिखनी पड़ती आपा ने और भी के मायने समाचार भेजता और वो समाचार भी यान कोनी है कि तुरंत ही पूग गयो, बिन पुगण में भी घना ही दिन लाग जाता है। तो वास्तव में करियो तो जीवन अपनों आसानी है, बच्चा की जी पढ़ाई है भी की जरूरत हो, चाहे देखो अपने खेती बाड़ी का कोई समाचार हो भी की जानकारी लेवनी हो, या कोई अपने बैंक रो काम हो, या दूर बैठोड़ा अपना लोगा सो अपने बात करनी है तो तुरंत ही मोबाइल में आते काम हो जावे है। तो बात तो बढ़िया है और एक बढ़िया सुविधा भी है। तो सुविधा जरूरत तक तो है, जड़ तक तो वरदान है, पर जद आदत बन जावे तो बहना बड़ी परेशानी की बात है। कई बार देखा कि मोबाइल एक जरूरी काम खातिर आपा उठावा, पछे कहीं एक वीडियो के बाद में दूजो वीडियो, दूजा के बाद में कोई संदेश, और देखता देखता कद समय निकल तो जावे आपा ने खुद ने भी ठानी पड़े। और कदी कदी तो देखो बहना घर के मायने 4 मिनट बैठा है पण बे आपस में बात नहीं करे, बे चारारी नज़र जकी है अलग अलग आप रे मोबाइल माते। तो ओ वाकई में देखण वालो हाल है और ओ ही हर घर में हो रियो है। मोबाइल काम रो तो घणो है पण सही तरीका सु आपा घर इने काम में लेवा जद ही ओ ज्यादा उपयोगी है। मोबाइल देखो बेना एक सुविधा है, साधन है, पण आपा खुद इरा गुलाम नहीं बन जावा है कि नहीं। केवण ने तो केवे है कि मोबाइल जको है आपा चला रिया, लेकिन आ चीज हो रही है कि मोबाइल अपन ने चला रही है। देखो मोबाइल अगर आपा बच्चा ने भी देवा, पढ़ने वास्ते देवा, तो आपा वो भी ध्यान अपन ने रखना चाहिए कि अपनी निगरानी के मायने बच्चों रहना चाहिए। मोबाइल माते काई देख रही है आपा कनु केयर, तो वो मतलब कि काम की बात वास्ते फोन ले लियो है कि बिक मायने मारे कोई पढ़ने की चीज मैंने देखनी है, पढ़ने को वीडियो देखना है, पछे अपनी नजर भी हटी बच्चा सू और पछे तो वो कोई खेल खेलने लग गयो फोन के माते। तो आ चीज जकी है नहीं होनी चाहिए। और इरे अलावा देखो बेना मोबाइल जको है दूर बैठे मिनक ने तो पास लावे, पण कन्ने बैठे मिनक ने मोबाइल की वजह सू आपने दूर नहीं होवन देवनो चाहिए। और इके अलावा देखो बेना अबार सोशल मीडिया रो जमानो है, तो इके मायने भी आपने सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल माते अनजान लिंक जका है बे घना आया करे है। और अनजान लिंक भी ई वास्ते आवे ताकि अपने बैंक के खाता में अपनी जिकी भी जमा पूंजी है ना, जिकी मेहनत कमायोड़ी है, बा बे पल भर के मायने साफ कर देवे। तो आपने बिल्कुल भटकनो नहीं है, सावधान रहनो है। कोई भी अनजान व्यक्ति ने अपनी जिकी बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देनी है। बैंक के अलावा भी अपनी जिकी भी निजी जानकारी है या कोई फोटो है या वीडियो है, वो भी कोई के साथ आपने शेयर नहीं करनो चाहिए। और इके अलावा जकी अबार ऑनलाइन खरीदारी भी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, तो इके मायने भी आपने सावधानी बरतन की जरूरत है। तो एक कुछ सावधानियां हैं जकी अगर आपा ध्यान रखा ला तो मोबाइल तो वास्तव में घणो ही उपयोगी रेवेला। तो बहना अब वक्त हो रही है था ने एक और प्यारो से गीत सुनाई दियो जावे, तो सुना बहना वो गीत।

0: हेलो सुनो कोनी काई।
1: हाँ बोल बोल मारी गोरी धन बोल।
0: अरे थे घरा कोनी आओ के मारा जी कोनी लागे।
1: अरे काई करूं बावली आऊं कहिया सेठ जी छुट्टी कोनी दे।
0: थारे सेठ जी ने समझाए दियो मारी गोरी मने याद करे है और मने घरा जाड़ दियो और थे आ दियो मारो मन कोनी लागे।
1: अरे

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: बहना जेड़ो खावा अन बेड़ो होवे मन। खाणो तो देखो बहना अपनी रोजमर्रा की जरूरत है, तो पण खाणो सिर्फ पेट भरण खातिर नहीं बल्कि शरीर ने ताकत और निरोगी रखने वास्ते भी है। बहना शरीर निरोगो जदी रेवला जद आपने भोजन के मायने जका भी जरूरी पोषक तत्व है ए मिलेला, और भी नहीं मतलब कहवे है कि आ एक संतुलित थाली होवे। आपने भोजन के मायने देखो ऊर्जा प्रोटीन विटामिन और खनिज और फाइबर ये सब अपनी थाली संतुलित थाली के मायने होनो जरूरी है। और देखो बिना प्रोटीन जो को है वो शरीर की जगह मांसपेशियां हड्डियां त्वचा ने और बाला ने और शरीर का जगह कई उत्तक है बहने भी मजबूत रखने के मायने प्रोटीन जो को है वो इकी जरूरत पड़े है। तो आपने प्रोटीन किसु मिलने ला, दाल हुई, मूंग है, मोट है, चना है ना, तो ये चीज़ें आपने खावनी चाहिए जका सो आपने शरीर ने मतलब प्रोटीन भी मिले और शरीर को विकास भी हुआ करे है। इरे अलावा आपने शरीर ने ऊर्जा देने वास्ते देखो बेना बाजरा जवार ये आपने खाना चाहिए, और शरीर की जकी सामान्य कार्य प्रणाली रोग प्रतिरोधक क्षमता है इन्हें मतलब तेज करने वास्ते भी आपने एड़ो ही भोजन करना चाहिए जो आपने निरोगो रखे है, जका सो आपने कैल्शियम भी मिल जावे फाइबर में मिल जावे। तो जकी भी हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही है फल है ना, और जका और आयरन भरपूर है चना है राजमा है, तो ये आपने खान पान में जरूर अपन शामिल करना चाहिए जद ही देखो बेना आपा जका है हष्ट पुष्ट भी रेवाला और निरोगा भी रेवाला। तो बेना बाता तो अपन यही चलती रेवाला, एक और थाने लेर चला गीतारी दुनिया में और सुनावा ओ सुंदर सो गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे पणियारी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। FM बैंड 103.7 MHz पर शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को भी मंजूरी दी। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में $10 अरब का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। आतंकी समूह के अन्य 3 सदस्यों जुनैद भट्ट को 2024 में, सुलेमान को 2025 में और यासिर को इस साल सितंबर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी।

0: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने 104 रन बनाए, वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स टीम कंपाउंड ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर 6:05 हुए हैं। ये सुनते हैं फिल्म संगीत। यह है फिल्म संगीत की पहली पेशकश। फिल्म का नाम कालिया।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:20 हुए हैं, ये सुनते हैं माटी के स्वर कार्यक्रम। ये है पहली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना ये गीत सीमा मिश्रा और सतीश की आवाज में, लीजिए सुनिए माटी के स्वर में ये अगली प्रस्तुति, आवाज समंदर खान की है।

0: समंदर खान के गाए इसी गीत के साथ माटी के स्वर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके बाद में राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर संभाग को 2,824 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। देश में घरेलू पर्यटन में पिछले साल 12.5% की बढ़ोतरी। 428 करोड़ से अधिक पर्यटन यात्राएं हुई। और प्रदेश में कल से समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन। सामाजिक सरोकार और जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां होंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले हुए। आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-2028 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। साथ ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृत किया गया है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गेहूं, जौ और चना सहित 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
2: वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी को। जैसे गेहूं है तो गेहूं में तो प्रोडक्शन कॉस्ट 1264 है, लेकिन उससे डबल से ज्यादा यानी 100% से ज्यादा रखी गई है एमएसपी 2610 रुपए पे पर क्विंटल। ये सारी रेट है पर क्विंटल रेट से। टोटल किसानों के पास इस रबी सीजन में जो 324 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट होगा, इससे 90,962 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा की पहुंच को तेज और सुगम बनाने के लिए पीएम धारा कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही राज्यों में हरित ऊर्जा के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS परियोजना को मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि रेगिस्तानी इलाकों में पीने के पानी की उचित आपूर्ति के लिए 31 दिसंबर तक टैंकरों के जरिए जल परिवहन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। श्री शर्मा आज बाड़मेर जिले के बाछड़ाऊ गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले में कम बारिश और अकाल की आशंका के मद्देनजर पशुधन संरक्षण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विद्यार्थी को शिक्षा सुविधाएं देने के उद्देश्य से हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक 650 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। श्री शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान जोधपुर संभाग के 8 जिलों में 2,824 करोड़ रुपए के 1,000 से ज्यादा विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की पानी संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में पानी को लेकर हुए 10 अंतरराज्यीय समझौतों में से 4 राजस्थान के हैं।
3: पहला समझौता हमारा मध्य प्रदेश से हुआ, ईआरसीपी राम जल सेतु योजना का। पूर्वी राजस्थान के 18 जिलों को पानी मिलेगा। दूसरा समझौता हमारा शेखावाटी का, यमुना का था। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ, तीसरा समझौता हमारा नर्मदा का हुआ, चौथा समझौता हमारा किसाऊ डैम का था जो छह राज्यों का था, वो पिछले 15 तारीख को वो समझौता भी हो गया, उससे भी राजस्थान को पानी आएगा।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री पाली पहुंचे, उन्होंने सुमेरपुर में जालौर और सिरोही के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और पश्चिमी राजस्थान में आधुनिक औद्योगिक ढांचा विकसित करने के लिए जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया JPMIA में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए निवेशकों को पहले चरण में 30 भूखंड प्रत्यक्ष आवंटन के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इच्छुक निवेशक 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि JPMIA राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। ये क्षेत्र जोधपुर और पाली के बीच स्थित है। देश के सभी 19 करोड़ 36 लाख ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन पहुंचाने और हर ग्राम पंचायत को हर घर जल प्रमाणित करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन 2.0 शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने इस साल मार्च महीने में इसे मंजूरी देते हुए इसका कुल खर्च बढ़ाकर 8,69,000 करोड़ रुपए किया है। एक रिपोर्ट। हर ग्रामीण परिवार को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए साल 2019 से चलाया जा रहा है जल जीवन मिशन, जिसकी अवधि अब दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। JJM 2.0 के तहत कई परिवर्तनकारी सुधार किए जा रहे हैं। इनमें सुजलाम भारत ID बनाना, ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित बुनियादी ढांचों की जियो टैगिंग और डिजिटल मैपिंग करना, साथ ही जल सेवा आकलन भी शामिल किया गया है। इसे लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सुधार संबंध समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें नागरिक केंद्रित जल गुणवत्ता शासन, जल सुरक्षा ढांचा सहित 11 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जल अर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, साथ ही जल उत्सव को समुदाय आधारित वार्षिक कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। JJM 2.0 का उद्देश्य सिर्फ नल से पानी का कनेक्शन देना ही नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि हर ग्रामीण परिवार को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पेयजल मिलता रहे। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी। सीकर में कल से सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। जिला खेल स्टेडियम पर यह रैली 23 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, कोटा, जोधपुर और जयपुर के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। सेना भर्ती अधिकारी कर्नल हरीश चंद्र ने बताया कि अग्निवीर सेना भर्ती रैली में 12,000 से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार और रोजगार का प्रमुख स्रोत बताया। श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल देश में घरेलू पर्यटन में 12.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और देश भर में 428 करोड़ से अधिक पर्यटक यात्राएं हुई। वहीं करीब 2.5 करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए।
4: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
1: राज्य में कल से नया पर्यटन सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही रणथंभौर, मुकुंदरा, सरिस्का टाइगर रिजर्व सहित सभी अभयारण्यों में जंगल सफारी फिर से शुरू हो जाएगी और देशी विदेशी सैलानी इनका आनंद ले सकेंगे। इसे मॉनसून के दौरान 1 जुलाई से बंद कर दिया जाता है। 3 महीने के अंतराल के बाद अब पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। इसे लेकर कारोबारियों में खासा उत्साह है। इस बीच सवाईमाधोपुर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने बताया कि आमजन और पर्यटकों की सुविधा के लिए नई हेल्पलाइन शुरू की गई है।
5: ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट आते हैं, तथा उनको यहाँ तक पहुँचने में भी समस्या होती है और कई बार उनके साथ सफारी बुकिंग या होटल बुकिंग में कोई फ्रॉड हो जाता है, या अन्य कोई घटना हो जाती है, तो हमारे द्वारा ये ऑल इंडिया हेल्पलाइन आपके लिए लॉन्च की जा रही है 07462251251। अगर आपके मन में सवाई माधोपुर आने की मंशा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, अन्य कोई और परेशानी या आपके मन में कोई डाउट है, तो आप अवश्य इस नंबर पर कॉल करें, हम आपके लिए हाजिर हैं।
1: प्रदेश में कल से समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस से इसकी शुरुआत होगी। इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न वर्गों के कल्याण और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, साथ ही पोषण, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। उधर पाली में शतायु मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। लोक मंथन यात्रा के तहत आज कोटपूतली में लोक परंपरा नहड़े और धमाल का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पाना देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हुआ, जिसमें कोटपूतली बहरोड क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।

0: प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के समय में कल से बदलाव होने जा रहा है। नए समय के अनुसार ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी। मरीजों का रजिस्ट्रेशन सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर संभाग को 2,824 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। देश में घरेलू पर्यटन में पिछले साल 12.5% की बढ़ोतरी। 428 करोड़ से अधिक पर्यटन यात्राएं हुई। और प्रदेश में कल से समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन। सामाजिक सरोकार और जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख क्षेत्रीय समाचार एकांश ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में प्रतापगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में उदयपुर संभाग के 7 जिलों में 924 करोड़ रुपए से अधिक के 1,452 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 668 करोड़ रुपए के 1,029 कार्यों का शिलान्यास किया गया, जबकि 256 करोड़ रुपए के 423 कार्यों का लोकार्पण किया गया। प्रतापगढ़ जिले के 109 करोड़ 77 लाख रुपए के 436 विकास कार्य भी इसमें शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बम्बोरी में आयोजित ग्राम विकास चौपाल का उल्लेख किया और कहा कि इससे उन्हें स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीणों की आवश्यकताओं पर चर्चा करने का अवसर मिला। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में जनसेवा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिला चिकित्सालय सहित विभिन्न ब्लॉक में रक्तदान शिविर लगाए गए। इनमें बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लेकर रक्तदान महादान का संदेश दिया। वहीं NFSA के लाभार्थियों के लिए आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाभार्थियों ने विश्वास का दिया प्रज्वलित कर सामूहिक मंगल कामना की। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का काम जारी है। आजीविका के माध्यम से महिलाएं पशुपालन, जैविक कृषि, सिलाई और खाद्य उत्पाद तैयार करने जैसी गतिविधियां कर रही हैं। आजीविका से जुड़ी एक महिला सोना बैरागी ने पशुपालन और जैविक कृषि को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया है। समूह से मिले सहयोग से उनकी आय बढ़ी है और वे लखपति दीदी के रूप में पहचान बना चुकी हैं। वहीं सुहागपुरा की कावड़ी मीणा पशु सखी के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि समूह में शुरुआत में 10 महिलाएं जुड़ी थी और 1,00,000 रुपए का ऋण लेकर बकरी पालन और सिलाई जैसी गतिविधियां शुरू की गईं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। पीपल खूंट के भारत माता क्लस्टर से करीब 300 महिलाएं जुड़ी हैं। यह महिलाएं मिर्ची मसाला, हल्दी मसाला, आंवला कैंडी जैसे उत्पाद तैयार कर रही हैं। जिले में कल से स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के समय में बदलाव होगा। एक पारी वाले स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे, जबकि दो पारी वाले स्कूल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होंगे। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। जनता क्लिनिक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक संचालित होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। कृषि विज्ञान केंद्र बसाड़ में किसानों को ड्रोन तकनीक से फसलों में नैनो यूरिया और कीटनाशक के छिड़काव का प्रशिक्षण दिया गया। जिले की विभिन्न पंचायत समितियों से आए करीब 100 किसानों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। किसानों को खेत में ड्रोन का संचालन और छिड़काव की तकनीक भी दिखाई गई। सुहागपुरा के पीएम श्री स्कूल की छात्राओं ने 70वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में 14 और 17 वर्ष की छात्रा वर्ग में पहला स्थान हासिल किया है। 19 वर्ष वर्ग में विद्यालय की टीम उपविजेता रही। लगातार दूसरे साल विद्यालय की छात्राओं ने ये उपलब्धि हासिल की है। झुंझुनू में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पंचायत राज चुनाव के तहत प्रतापगढ़ पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। प्रतापगढ़ टीएसपी क्षेत्र होने के कारण सभी सरपंच पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें 18 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए और 19 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति ओपन श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रतापगढ़ नगर परिषद की नवनिर्वाचित सभापति ज्योति सोनी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद शहर में विजय जुलूस निकाला गया। सभापति ने शहर के विकास और आम लोगों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही। इसी के साथ प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल री मीटिंग में आज कई फैसला करी चिया। रबी री साखारा सरकारी मोल में बढ़ोतरी री मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर संभाग ने विकास रा 2,824 करोड़ रुपया रा कामारी सौगात दीनी। देश में देशी सैर सपाटा में लाडला साल 12.5% री बढ़ोतरी। सैर सपाटा सारू 428 करोड़ बत्री यात्रावा करी जी। और प्रदेश में काल समाज कल्याण सप्ताह सरू भैला। सामाजिक सरोकार और जागरूकताओं जुड़िया न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या चावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल री मीटिंग राखी जी, जिनमें कई खास फैसला करी जिया। आर्थिक कार्य समिति रबी विपणन सत्र 2027-28 सारू जरूरी साखा रा सरकारी मोल में बढ़ोतरी रो फैसलो किन्नो। इस आगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर रा तीजा दौर नई मंजूरी दीरी जी। मीटिंग व्या पाछे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में खबरनवीस आगे बातचीत करता थका कहो कि गेहूं जौ और चना समेत रबी री 6 शाखा रो सरकारी मोल बधावन रो फैसलो करी चियो है।
3: वीट बार्ली ग्राम लेंटिल्स रेपसीड मसूर मस्टर्ड और सफ्लावर इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी को। जैसे गेहूं है तो गेहूं में तो प्रोडक्शन कॉस्ट 1264 है लेकिन उससे डबल से ज्यादा यानी 100% से ज्यादा रखी गई है एमएसपी 2610 रुपए पे पर क्विंटल। ये सारी रेट है पर क्विंटल रेट से। टोटल किसानों के पास इस रबी सीजन में जो 324 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट होगा इससे 90,962 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे।
2: श्री वैष्णव बतायो कि नवीकरणीय ऊर्जा री आसान पहुंच बधावण सारू पीएम धारा कार्यक्रम ने मंजूरी दी रीची है। इन तेत स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर सारू 1,86,000 करोड़ रुपया राखी चिया है। इस आगे राज्य माए हरित ऊर्जा सारू ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर रा तीजा दौर नई मंजूरी दी रीची। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवन जावन री व्यवस्था ने नुवी बनावन सारू इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस परियोजनाएं मंजूर करी ची। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि थड़ी हलका माए 31 दिसंबर ताई पीवन रो पानी टैंकर रजरिये पुगायो चावेला। वे आज बाड़मेर जिला रा बाछड़ाऊ गांव माए राखी जी जनसभा माए बोल रहा हा। श्री शर्मा कहो कि बाड़मेर और जैसलमेर जिला में बिरखारी कमी और काल पड़बारी शंका न ध्यान रखता थका ढांडा ढोरा न बचावन सारू खास शिविर लगाया चावेला। मुख्यमंत्री कहो कि हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलिया चावेला। वह कहो कि हाल ताई 650 अटल ज्ञान केंद्र खोल दिया गया है। श्री शर्मा जोधपुर संभाग रा 8 जिला माए विकास रा 2,824 करोड़ रुपया रा 1,072 कामारी शुरुआत की नी और पूरा व्या काम जनता ने सौंपिया। मुख्यमंत्री कहो कि सरकार किसाना री पानी जुड़ी सगली परेशानियां आगे करण री कोशिश कर रही है और लाडला दिना न्यारा न्यारा राज्यां बीच करी जिया पानी जुड़िया 10 करार माए 4 राजस्थान जुड़िया है।
4: पहला समझौता हमारा मध्य प्रदेश से हुआ, ईआरसीपी राम जल सेतु योजना का, पूर्वी राजस्थान के 18 जिलों को पानी मिलेगा। दूसरा समझौता हमारा शेखावाटी का यमुना का था। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, तीसरा समझौता हमारा नर्मदा का हुआ। चौथा समझौता हमारा किसाऊ डैम का था, जो 6 राज्यों का था, वो पिछले 15 तारीख को वो समझौता भी हो गया, उससे भी राजस्थान को पानी आएगा।
2: ई पाछे मुख्यमंत्री पाली जिला रा सुमेरपुर माए जालौर और सिरोही जिला रा भाजपा कार्यकर्ताओं सागे बातचीत कीनी। राज्य माए औद्योगिक निवेश न बढ़ावो देवन और प्रदेश रा आतुणी हलका माए नुओ औद्योगिक ढांचो विकसित करण सारू जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया JPMIA माए भूखंड आवंटन रे प्रक्रिया शुरू करी ची है। इन सारू निवेशका ने पहला दौर माए 30 प्लॉट मुहैया कराई चिया है। निवेशक 31 अक्टूबर ताई अर्जी दे सके है। ध्यान जोग है कि JPMIA राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम रा तहत विकसित करियो चार्यो है। ओहल को जोधपुर और पाली बीच 1578 एकड़ माए विकसित करियो चार्यो है। देश रा गांवाई हलका रा सगला 19 करोड़ 36 लाख घरां माए नल रे जरिए पानी पुगावण और हर ग्राम पंचायत ने हर घर जल वाली प्रमाणित करण रा मकसद जल जीवन मिशन 2.0 चलाई चियो है। केंद्र सरकार इन साल मार्च महीना माए इन ने मंजूरी देता थका। इन रो कुल खर्च बधार 8,69,000 करोड़ रुपया कीनो। पेश है एक रिपोर्ट।
5: हर ग्रामीण परिवार को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए साल 2019 से चलाया जा रहा है जल जीवन मिशन, जिसकी अवधि अब दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। JJM 2.0 के तहत कई परिवर्तनकारी सुधार किए जा रहे हैं। इनमें सुजलाम भारत ID बनाना, ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित बुनियादी ढांचों की जियो टैगिंग और डिजिटल मैपिंग करना, साथ ही जल सेवा आकलन भी शामिल किया गया है। इसे लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सुधार संबंध समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें नागरिक केंद्रित जल गुणवत्ता शासन, जल सुरक्षा ढांचा सहित 11 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जल अर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, साथ ही जल उत्सव को समुदाय आधारित वार्षिक कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। JJM 2.0 का उद्देश्य सिर्फ नल से पानी का कनेक्शन देना ही नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि हर ग्रामीण परिवार को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पेयजल मिलता रहे। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
2: सीकर माए काल अग्निवीर सेना भर्ती रैली शुरू फैला। जिला खेल स्टेडियम माए 23 अक्टूबर तक चलन वाली इन रैली माए सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, कोटा, जोधपुर और जयपुर रा उम्मीदवार शामिल भ सकेला। सेना भर्ती अधिकारी कर्नल हरीश चंद्र बतायो के भर्ती रैली माए 12,000 बत्ता उम्मीदवारा ने शामिल फेवन रा आसार है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सैर सपाटा रा हलका ने माली व्यवस्था री बुनियाद और नौकरी धंधा रो खास जरियो बतायो है। वह नई दिल्ली माए राखी जिया राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन माए बोल रहा है। शेखावत कहो कि सैर सपाटा रोहल को अब केवल सफर, मनोरंजन और घूमन फिरन ताई सीमित नहीं है। वह कहो कि दुनिया माए न्यारी न्यारी अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन हलको लगातार बढ़ रियो है। मंत्री बतायो कि लाडला साल देश माए देशी सैर सपाटा माए 12.5% बढ़ोतरी भी और 428 करोड़ बत्ता लोग सैर सपाटा सारू निकलिया। श्री शेखावत बतायो कि 2.5 करोड़ बत्ता परदेसी पाहुणाई सैर सपाटा सारू भारत आया।
6: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
2: इन बीच राज्य माए काल सैर सपाटा रो नुओ सत्र शुरू फैला। इस आगे रणथंभौर मुकुंद्रा और सरिस्का टाइगर रिजर्व समेत सगला अभ्यारण्य माय जंगल सफारी ओजू शुरू भेजावेला। ए अभ्यारण्य चौमासा रे दौरान 1 जुलाई सैलानिया सारू बंद कर दिया गया है। नुवो पर्यटन सत्र स्वरूप वनसारू कारोबारियां माय खास उमाव है। ये पीछे सवाई माधोपुर री एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय बतायो कि जनता और सैलानिया रासुबिता सारू दो नुवी हेल्पलाइन शुरू करी ची है।
7: ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट आते हैं, तथा उनको यहाँ तक पहुँचने भी समस्या होती है और कई बार उनके साथ सफारी बुकिंग या होटल बुकिंग में कोई फ्रॉड हो जाता है या अन्य कोई घटना हो जाती है। तो हमारे द्वारा ये ऑल इंडिया हेल्पलाइन आपके लिए लॉन्च की जा रही है 07462251251। अगर आपके मन में सवाई माधोपुर आने की मंशा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, अन्य कोई और परेशानी या आपके मन में कोई डाउट है, तो आप अवश्य इस नंबर पर कॉल करें, हम आपके लिए हाजिर हैं।
2: काल अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस रे मौके प्रदेश माय समाज कल्याण सप्ताह शुरू करियो चावेला। इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग री ओर न्यारा न्यारा तबका री जनता रा भला और जाग जगावन जुड़िया कार्यक्रम रख्या चावेला। सवाई माधोपुर रा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अनिल कुमार जैमिनी बतायो कि काल अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस रे मौके जिला अस्पताल माय बुजुर्गा सारू स्वास्थ्य जांच शिविर लगायो चावेला, जिन माय जांच सागे पोषण कसरत और मानसिक स्वास्थ्य जुड़ी जानकारियां ही दी चावेला। पाली माय 100 बरस री उम्र रा वोट देवन रा पात्र लोगां रो मान करियो चावेला। प्रदेश रा सगला सरकारी अस्पताल काल समारे 9 दोपहर पाछे 3 बजे ताई खुलेला। इन सारू मरीज समारे 8:30 बजे हुई पर्ची कटा सकेला। स्वास्थ्य विभाग रा हुकम रे मुजब सगला पीएचसी सीएचसी जिला अस्पताल और सैटेलाइट अस्पताल माय 31 मार्च ताई आई व्यवस्था लागू रहवेला। डीग माय पुलिस 425 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद की ना है। ऑपरेशन मुस्कान रातेत बरामद करी जिया ए फोन मारा असली मालिकां ताई पुगाया चाटिया है। एसपी कामले शरण गोपीनाथ बतायो कि बरामद करी जिया मोबाइल फोन रो मोल करीब 2 करोड़ रुपया है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन माथे आजकल न्यारा न्यारा देशां रो भेड़ो हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति चाल रियो है। 12 अक्टूबर ताई चालन वाला ई युद्ध अभ्यास माय भारतीय वायुसेना सागे 7 मित्र देश वारा लड़ाई राबूता रो दर्शाव कर रहा है। अभ्यास माय ऑस्ट्रेलिया अमेरिका फ्रांस जर्मनी श्रीलंका संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश शामिल फेर रहा है। इन दफा भेड़ा युद्ध अभ्यास रो मुद्दो पावर इन पार्टनरशिप राखी चियो है। आखिर माय खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री मीटिंग माय आज कई फैसला करी चिया। रबी री साखाना सरकारी मूल माय बढ़ोतरी री मंजूरी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जोधपुर संभाग ने विकास रा 2,824 करोड़ रुपया रा कामारी सौगात तीनी। देश माय दिशी सैर सपाटा माय लारला साल 12.5% री बढ़ोतरी। सैर सपाटा सारू 428 करोड़ 32 यात्रावां करी ची। और प्रदेश माय काल समाज कल्याण सप्ताह शुरू भेला। सामाजिक सरोकार और जागरूकता जुड़िया न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या चावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
8: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं, ये सुनते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम।

0: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਹਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟੀਂਗ ਰਟਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪ ਕੇ ਓਮ ਦੂੰਦ ਵਾਲ ਕਾ ਘਣਾ ਘਣਾ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈਆਂ ਕੀ ਆਜ ਵਾਰ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜਕਾ ਆਪਾਂ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਰ ਨਯਾ ਨਯਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਕਾ ਆਪ ਕੇ ਖੇਤਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕੜੀ ਬੜੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਆਪਕੋ ਜਕੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਫੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਤੋ ਫੋਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 015-82-240-168 ਪਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਈਵ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਕਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉੜਾ ਹੈ ਬਹੁ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜਕਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੂੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਾਂਗੂ ਜਕਾ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਲਾ। ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਅਬਾਰ ਗਾਇਆਂ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਕਿ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਆਉਣੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਟੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਿਖਿਓ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਲਾ। ਤੋ ਆਪ ਸਭ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਕਿ 015-82-240-168 ਪਰ ਫੋਨ ਕਰ ਔਰ ਆਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੋ ਆਪਾਂ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਤੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।
1: ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ
0: ਆਪਕੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਭੀ ਜੇ ਕਿ ਗਾਇਆਂਗੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਕਿ ਲੰਪੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਤਾਓ।
1: ਸਭੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜੈਨ ਆਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਲੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਤਾਉ ਮਚਾਉਣੀ ਮਾਂ। ਲਾਰਲਾ 2-3 ਸਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਟੇ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਆਇਆਂ ਮਾਇਨੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਰਹੇ, ਤੋ ਆ ਜੀ ਲੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਇਰਸ ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਬਿਰ ਲਕਸ਼ਣ ਕਰ ਆਧਾਰ ਮਾਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਗਾਏ ਭੈਂਸ ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਇਰਸ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਬਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਤੋ ਅਬਾਰ ਬੀਰੋ ਬਚਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਬੀਰੋ ਬਚਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੇ ਸਭ ਲਾਰਲਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕਿ ਲੰਪਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਓ 2023 ਕੇ ਮਾਇਨੇ ਜੇ ਕਿ ਲੰਪੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਇਓ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਟ ਹੈ ਕੋਨੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇ ਮਾਇਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਪੋਰੇਡਿਕ ਛਿਟਪੁਟ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
0: ਕਰਿਓ,
1: ਉਹ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਡਿਓ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਹੈ ਵੀਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਗ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਤੋ ਲੰਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਮੈਂ ਬਤਾਉਂ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਵੀਰੋ ਬਚਾਓ ਹੈ।
0: ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰੀ ਉਹ ਲੰਪੀ ਹੈ, ਤੋ ਲੰਪੀ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਮਹੀਨੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰ ਵੀ ਭੈਂਸਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੈਂ
1: ਲੰਪੀ ਜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆ ਇੱਕ ਕੈਪਰੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਟ ਜੋ ਕੋ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਇਓ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗਾਇਆਂ ਗਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਓ,
0: ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਆਂ ਮੈਂ ਆਇਓ
1: ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਆਂ ਮੈਂ ਆਇਓ ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਬਕਰੀਆਂ ਮੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਭੇੜ ਮੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਭੇੜ ਕੋ ਵਾਇਰਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਕਰੀ ਕੋ ਵਾਇਰਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਭੈਂਸ ਕੋ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਗਾਇ ਕੋ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਟ ਜਗਰ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਇਓ ਉਹ ਗਾਇ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ
0: ਗਾਇਆਂ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
1: ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਬ ਇਹ ਮਾਇਨ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ਣ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੋ ਜਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਕੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਆਵੇ 105-106 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰੇਨਹਾਈਟ ਤਾਈਂ ਵੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਬੁਖਾਰ ਆਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਹੈ या नजदीकी जो भी चिकित्सक है बिनती करना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब जान आपा के परसों महीने बुखार आई तो अपन क्या ध्यान पड़ी कि अभी बुखार आई बीर काई लक्षण हुई है यान।
1: देखो जिया ने बीमार हुई जानवर भी बुखार हुए तो सबू पहले तो सुबह शाम जो को दुआरी करे, तो जो वो हाथ लगाए अवड़म हाथ लगाए या कान के नजदीक हाथ लगाए तो गर्म लागी। बाकी जानवर है जो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, जुगाली कौन करे, बिल्कुल बेचैन टाइप रही पशु, तो आ समझ लो कि आमने पशु में इनकी समस्या आएगी। अब भी पशु चिकित्सक आन चेक करी जन बिन बुखार मिली और बुखार बहुत तेज हुई, तो आ समझ लेना कि वो वायरस है। अब मेरी कंफर्म तो
0: तो देखो डॉक्टर साहब एक फोन पर भैया को लाइन जुड़ रही है। हेलो,
2: हेलो, राम राम सा
0: राम राम सा,
1: राम
0: राम राम सा, की जी क्यों बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो साहब, नाम बताओ।
2: गांव नैनो की सर तहसील मालाराम जी बोला। हमारे
0: हाँ माला राम जी, बताओ सवाल बताओ डॉक्टर साहब ने।
2: साहब गाय है वीरे आस आस निकले 2 साल।
1: आंस निकले, किसी नस्ल की गाय है मल्लाराम जी? आप रहे
2: जर्सी नस्ल की है गंगानगर।
1: बा जर्सी नहीं है, बे जगह थे जर्सी कह रहे हो, बा लगभग राठी नस्ल की वही गाय।
2: हाँ राटी है
1: हाँ, सुंडी लटके ना मेरे।
2: थोड़ी बहुत लड़ गए।
1: हाँ जनाबा है कि गाय है जो कि राठी है, राठी की गायें गवाई ने उड़ा साण की थोड़ी सी समस्या रिया करे, क्योंकि ये जगह बनावट है, बा बनावट के हिसाब में आ रही है। फिर भी आप नजदीकी पशु चिकित्सा ने दिखा दीजिए और बिन्ने
2: कहो सर भाइयों कहो कि कोई इलाज नहीं है, अंग्रेजी तो सर्दी रहे 40 डिग्री आसपास तापमान जन आस निकले हल्दी मुखो निकले।
1: हाँ बिन देखो बात, आपने बीर वास्ते एक तो अपन बीर पोषण है जो को बराबर सही देवण पड़े।
2: कहीं कहीं देवा।
1: पोषण के मायने बढ़िया, आप कोई मिनरल मिक्सर आवे खनिज लवण कहवे बिन,
2: हाँ
1: एक तो बे दिराता रहो, दूसरो आप जट बिठे बब गाय बिन थोड़ी सी आगे ढलान रखो, लारे ढलान मत रखो, ए आपा बचाव रखा, और बढ़िया मिनरल मिक्सर आप लगातार देता रहो और साफ सफाई वगैरह रखो, जना आ है जिकी बार बार है जो उड़ास को ना हो। अगर उड़ास आएगो और आप बिन हेजू रे तू ब्रिजड़े ने अगर आप वापस दबाए दो जन, वो कहीं जलन करी भी कहीं कहीं बार घाव भी हो जाए जन, बार बार जोर करी और बार बार उड़ास आए
2: नहीं आ गए विचार में 100 पानी और तो दो तेल चौपड़ पांच हजार डूबे।
1: हाँ रेत को एक दाणो ही नहीं रो, जितनी आप सफाई राखो बितु ही है जो को बीरमाई ने बचाव रही।
2: अच्छा पकड़ रही है।
1: हाँ और ज्यादा अगर समस्या हो जाए तो आप नजदीकी आप पशु चिकित्सालय में जान दिखा दीजिए आप। नमस्कार,
0: धन्यवाद मालाराम जी। और देखो डॉक्टर साहब जी ना बात कर रहे हैं जान गायंग महीने जो लंपियाड़ी ही जिकर महीने के भाई आपने ए लक्षण यानी बुखार आ जाए, अगर बुखार के बाद में जिकी आपा की गया है बार आपने देखभाल वास्तर करा है।
1: हाँ बिल्कुल, इन बचाव की जटता यह बात है कि आपने टीकाकरण करवा लेना चाहिए। सरकार इरा टीका है जो मुफ्त लगा रही है और हर एक गांव मायने जो टीका लाग रहा है। अब लोगों रे कई यार की शंका है कि भाई टीको केड़ो लगवाणो, किसी टाइम लगवाणो, कितो लगवाणो, ये चीज रे वास्ते में थोड़ी सी सभी किसानों ने पशुपालक भाई ने जानकारी दे दूं कि अबार जगह टीका है वे दो तरह का आया करे, एक तो है गोट पॉक्स को टीको और एक है लंपी को टीको। अब गोट पॉक्स को टीको कई लोग है जो को कहवे कि भाई गोट पॉक्स को टीको यार मैं मार गायरी क्या लगाऊं, जबकि चीज बात दोनों एक ही है, क्योंकि जो कि वायरस जो को आयो है वो है केप्री फॉक्स फैमिली को, तो केप्री को मतलब है कि केप्री मतलब बकरियां वहां अस्तूरी है। अब भी केप्री की जो कि वैक्सीन बनी है भी वायरस ने इतो कमजोर कर दियो कि वो अगर भी टीको लगवाई वो टीको बीरे जानवर के बीमारी नहीं कर सकते,
0: आगे फैले कौन
1: आगे
0: बीमारी।
1: फैले कौन है, बीरी बा वैक्सीन बन गई। ई प्रकार ही लंपी वायरस को टीको है, बिने भी टीके ने कहीं वायरस ने कहीं करे वैक्सीन बनाने पहले वायरस ने इतो कमजोर कर दे, इतो कमजोर कर दे कि वो बीमारी करण के लायक ही नहीं रहे, भाई वैक्सीन भी अगर तो बात जकी टिक भी वायरस ने कमजोर कर और वो टीको बनाए भी टीके ने ही लगाया करे। अब वैक्सीन शरीर में कहीं गिरिया करे, इरी डोज तो एक लगवानी है कि 1 ml चाहे आप गोट पॉक्स को लगवाओ और चाहे आप लंपी वायरस को वैक्सीन
0: लगाओ।
1: लगाओ, 1 ml लगानी है और सब क्यूटनेस मतलब चमड़ी के और मांस के बीच में लगानी। अब बीरी लगाने में कई सावधानियां भी रखनी पड़े, सावधानी आ रखनी पड़े कि अगर भी एरिया के मायने भी क्षेत्र के मायने अगर आ वायरस वाली बीमारी कटी पहलू आयोडी है तो आपने वीरो टीको नहीं लगवाना, क्योंकि लोगों पर जब दिमाग में आ रहे हैं कि भाई मैं टीको लगवा लियो लंपी को फिर भी मार जानवर ने जो लंपी हुईगी, तो बीरू वास्ते आ चीज है के लंपी रू वैक्सीन आज आप करवायो तो दो हफ्ता तई भी वायरस ने मायने जा शरीर के भी वायरस के अगेंस्ट के मायने बीमारी नहीं हुए जो को शरीर ने प्रतिरोधक क्षमता आप कह के बनाने के मायने दो हफ्ता
0: टाइम लागे
1: तो बिन इनक्यूबेशन पीरियड क्या करें।
0: देखो डॉक्टर साहब एक इशर और हुई है फोन आ रही है तो हेलो हेलो हेलो हाँ आवाज आ रही है राम राम साहब हेलो। देखो के किसान भाई है जो सही तो हो सके नेटवर्क बराबर नहीं आ रही है हेलो। तो देखो डॉक्टर साहब शायद किसान भाई को नेटवर्क बराबर नहीं आ रही है तो किसान भाई नेटवर्क में जा और पूरी एकदम साफ आवाज आवे बियान फोन करो। तो आप बात करे जन
1: वैक्सीन के बारे में के दो हफ्ता को टाइम वैक्सीन लिया करे ताकि बस शरीर के मायने बीरे लंपीर ने लड़न की शक्ति शरीर के मायने अजय जानवर के भी में दो हफ्ता को टाइम लागे
0: दो हफ्ता को टाइम लागे
1: तो जैसे आज आप लंपीर टीको लगवा दियो तो अपन ने कवर मिल ली 15 दिन
0: को
1: 15 दिन बाद के मायने आ लंपी वाली बीमारियों अपन ने बचाव हुई। हाँ
0: तो डॉक्टर साहब एक महीना पैन है कि भाई लंपी की आज तो हुई है कि भाई आ रही तो पहले यहाँ पर टीका लगा सका।
1: पहले भी टीका लगाने वास्ते सरकार खूब प्रयास कर रही है, हर ग्राम पंचायत लेवल माते पशु चिकित्सा जगह संस्था है माने टीका उपलब्ध कराया और हर जानवर के जो गोवंश है बीरे टीका लगवा लेना चाहिए। आज भी टीका उपलब्ध है हमारे जगह पशु चिकित्सा संस्था है हर ग्राम पंचायत पर है आज की तारीख में लगभग तो वे टीका लगवा लेना चाहिए। अब बीरमाइन कहीं है कि लोगों की आशंका है कि भाई हमारे गाय ब्यायुड़ी है तो टीको लगवाणो नहीं लगवाणो के हमारे छोटो बचड़ो है या बचड़ी है कितनी उम्र को टीको लगवाणो है बीर वास्ते में आपने क्लियर कर दूं के अगर बीरी बचड़े की मां रे अगर टीको लगोड़ा है और वो बचड़ो भी माँ को दूध पी रही है तो भी दूध के मायने इम्यूनिटी है जो कि भी बचड़े ने मिल जी भी बचड़े को 3-4 महीना बाद में टीको लगवाना और अगर आ है कि भाई मेरे माँ ने टीको लगोड़े को नहीं तो आप 15 दिन को बच्चों हुए तो भी आप वैक्सीन 1 ml
0: लगा लेने चाहिए।
1: गाय चाहे बड़ी हुए चाहे छोटी हुए 1 ml मेरी डोज है 1 ml आपने सब कट मीरो निःशुल्क टीका है और घर घर जा जा सब जानवर के टीका लाग रहा है। अब भी टीके री जैसे मारे गाय है या कोई किसान भाई के गाय है गाय को टीको लगवा दियो टीको लगा पुरो जगह टीका लगाना आवे बन अभी कहनी है कि भाई ये ऑनलाइन मारे ना जो को एक भारत पशुधन ऐप है भारत सरकार को एक पोर्टल है भी पर सारी जानकारी जान अपन मिनका की जान आरजीएचएस का ए कार्ड है भी मन सारी चीजें मेंशन हुए बिन हिसाब गायें भैंसा को भी सारो डिटेल भी कमाते टैग नंबर के आधार पर रेवे तो बीर महीने अगर आप अभी तारीख लिखवा दें कि भाई ई तारीख रो मारे लंपी वैक्सीन लगवा दी तो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड भी हो जावे और आप भी जानवर ने कटी बेचो या दूसरे ने कोई दे हो तो भी अगले भी कोई बाजार में वापस के ही तो वो आ कहे कि भाई यहाँ थार लंपी कुटी को पहली को लाइक उड़ा।
0: कितनी चौकी बात है डॉक्टर साहब। देखो कि जो कोई गायें यानी कि मिन कर दे रही है जो कि सुविधा पशुओं में भी यहाँ पर सरकार है जो कि कर दी भी
1: बिल्कुल बिल्कुल कर दी है
0: और जका पशु जका खरीद फरोख्त करे यानी बेचे और खरीदे है ना
1: हाँ।
0: तो बांके वास्ते भी आ देखो कि सुविधा चौकी होगी कि बाने भी ध्यान रहे कि आप जो पशु खरीदा जके टीको लागू है या नहीं लागू है अगर लागू है तो भी देखो बिन मात्र सावचेत रहे नहीं लागू है तो भी बाना ध्यान रहे कि भाई लागू कौन
1: बिल्कुल बिल्कुल ये चीज री अच्छा के जो भी टीको लगवा बिने ऑनलाइन करवा दे दूसरों आपने खरीद फरोख्त की जगह आप बात करी तो आपने पशु खरीदने पहले आ ध्यान रखनी है कि भी एरिया में कटी लंपी आयोडी तो नहीं है अगर जकी एरिया का मायने जान अपने पूरी बॉर्डर राजस्थान का पूरी बॉर्डर भरतपुर है धौलपुर है बट बार लंपी को प्रकोप आयो।
0: देखो डॉक्टर साहब एक फोन आयो हेलो हेलो हेलो हाँ राम राम सा हेलो लागे डॉक्टर साहब फोन कट के पाचो।
1: हाँ कोई रेंज में नहीं वेला। हाँ तो
0: तो अपर जग भरतपुर की राह बता।
1: हाँ, भरतपुर धौलपुर साइड के मायने जब आर लंपी आई तो अपन असावधान राखनी है कि बटू जगह भरतपुर कोई भी जानवर खरीद रही दूसरी जगह नहीं जावे। तो इन वास्ते
0: देखो डॉक्टर साहब एक फोन आयो। हेलो हेलो हेलो देखो नेटवर्क आज बराबर नहीं आ रही है किसान भाइयों को फोन है जो नहीं लाग रही हो या फिर हो सके रेंज की दिक्कत है तो किसान भाइयों है कि हाँ
1: हाँ अपन खरीद रिजियन अपन ओम जी कह दिया कि खरीद फ्रॉक जगह एरिया के मायने जगह क्षेत्र के मायने अगर लंपी की बीमारी आयोडी है तो बटू किसान भाई ने असावधान रखनी है कि बटू जानवर नहीं तो कोई दूजी जगह जानो है नहीं बटे ने लानो है।
0: एक फोन और आ रही। हेलो हाँ राम राम साकी जी क्यों बोल रहे हो कौन बोल रहे हो
2: सर? राम राम सर आज से बोलो मोहन राम।
0: हाँ मोहन राम जी कहीं सवाल है साहब?
2: सवाल पूछो साहब ये टीकाकरण लगे तो क्या बन गाय के लगे नहीं लगे?
1: बिल्कुल ग्यावन लगाए के लगे भी है दूध देवे जकीरी भी लगे छोटे बछड़े की भी लगे सबके गाया के सबके लगवा लेना चाहिए सबके
2: टीका लगा फीस मांगे और
1: नहीं फीस नहीं है राज्य सरकार जकी असुविधा है जकी निःशुल्क दे रखी है।
2: अच्छा
1: हाँ निःशुल्क दे रखी है आप ऑनलाइन आपने जानवर के टैग भी लगवा लो टैग लगा भी इनके वो भारत पशुधन ऐप है कोई भारत सरकार की पोर्टल है तो भी टैग री पूरी जानकारी रही और आपने पशु वो भी रिकॉर्ड रही कि भाई लंपी री वैक्सीन लगवाई ली कद लगवाई सारी तारीख वगैरह भी माई।
2: हाँ ठीक है
1: ठीक धन्यवाद।
0: देखो डॉक्टर साहब किसान भाई कितना जागरूक है और सुन रहा है और बात का भी ध्यान है कि आपके जगह पशुओं का टीका करना लगाना किया लगाना।
1: हाँ तो खरीद फरोख्त में भी अपन सावधानी रखनी है और अगर सपोज करो आप कोई जानवर नहीं हो लेर भी आएगा बाड़ा माइन तो अब जान लंपी की थोड़ी सी समस्या आई तो अपन अभी ध्यान रखनी है कि भाई इमकटी लंपी को वायरस घुस चुकी है और वो अपन लक्षण नहीं दिख रही है लेकिन बिना अपन सावधानी रखनी है कि 15 दिन तक बिना अपन थोड़ा सो बाड़े मायने अलग जगह दूसरा जानवर अपन स्वस्थ जानवर है बारों जो को अपन खरीद फरोख्त कर लेना या बिन बा जानवर के साथ है मिक्स नहीं करना 15 दिन तक बिने थोड़ा आइसोलेशन में कहवा वो आइसोलेशन ताकि यहाँ पर वो क्लियर हो जाए कि भाई ये जानवर के कोई लंपी या कोई और कोई बीमारी नहीं है भी वजह अपन अपना जगह स्वस्थ पशु है बम नहीं आ जाए।
0: और अरे डॉक्टर साहब जन आप बताइए ही स्वस्थ पशु तो अरे खान पान वास्तरी तो कहीं अलग रखना पड़े या फिर खान पान जो आप स्वस्थ और भी लंपीड़ा सेम ही कर सका?
1: नहीं लंपी वास्ते थोड़ी विशेष सावधानी रखनी पड़ी के जो लंपी ग्रसित है या लंपी कोई समस्या आई है मेरी अपन ने इम्यूनिटी बढ़ानी है ताकि वो भी रोग लड़न वास्ते पशु के मायने ज्यादा ज्यादा इम्यूनिटी रहे इम्यूनिटी रहे जन बहुत स्वस्थ है जो जल्दी हुए इम्यूनिटी वास्ते अपन ने बिने स्पेशल डाइट देनी पड़ी भी मिनरल मिक्सर देना है अपन विटामिन देना है और बीर अलावा देसी काढ़ा भी है जान कई लोग हैं जो को बिना अलग अलग है गुड़ है अजवाइन है काला जीरी है ये जगह देसी नुस्खा अपन है वे भी अपन ने देना चाहिए ताकि बीर माइन इम्यूनिटी बनी रहे और भी बीमारी ने रोग जानवर है जो खुद बचड़ रहे।
0: तो डॉक्टर साहब जन गया में जन लंपी आ जावे कर जावे तो आख मैं जन कई क्या इंजेक्शन मान लो है कई बी टाइम में देखो जन लर्ली बार आई तो बी टाइम देखो खूब सारी गया है जबकि बीमारी मर भी गई और बां के शरीर पर घाव ही घाव हो गया।
1: हाँ देखो इरो जो को रोग को जो को लक्षण आवे
0: देखो एक फोन और आ रही। हेलो हेलो लागे आवाज को
1: तो अपन लंपी की जगह बात कर रहे हैं बीरा लक्षण के अनुसार शुरू का माइन बिन तेज बुखार आए पर ये वायरस की कहीं एफिनिटी आ रही करे कि वो जगह शरीर का लिम्फ नोड है वहां लिम्फ नोड में रिया करे अब लिम्फ नोड के मायने स्वेलिंग आए मतलब सूजन आए जिगे जिगे गांठा बने वे स्किन के नीचे जितना भी लिम्फ है वहां लिम्फ नोड माते वो वायरस बट मल्टीप्लाई करे बट गांठ बने ब्यू जगह स्किन।
0: एक फोन आ रही। हेलो हेलो हाँ राम राम सा। हेलो हेलो फोन कट गया। हाँ डॉक्टर साहब।
1: हाँ, जबकि यहाँ पर बात करिए कि जबकि चमड़ी है, ये चमड़ी के नीचे चमड़ी का मायने जितना भी लिम्फ नोड है, जबकि बे रोग बचाण की अपने शरीर की क्षमता रिया करे, बन लिम्फ नोड के मायने वो वायरस इकट्ठे हुए बट बे शरीर में घंटे घंटे बन जाए। अब वो वायरस को प्रकोप तो हो जो को 8-10 दिन तक हो, अब वो वायरस शरीर खुद भी ने बचा ले, लेकिन भी लिम्फ नोड में जो को इन्फेक्शन हुई हो, वो शरीर कमजोर हुई हो, मेरी इम्यूनिटी भी कमजोर हुई है।
0: कमजोर हुई।
1: इम्यूनिटी कमजोर हुई जन दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैं भी मत अटैक करे।
0: हेलो,
2: हेलो, राम राम साहब।
0: राम राम सा, राम राम सा, कौन बोल रहे हो, किस गांव बोल रहे हो सा?
2: मैं मारवाड़, मारवाड़ बोलो बोलो, ओम प्रकाश प्रजापत।
0: हाँ, ओम प्रकाश जी प्रजापत, का ही सवाल है आप लोग साहब?
2: मांको सवाल है यार, बहन ब्याह ना लिया 4-5 दिन ने, बिल्कुल थोड़ा ढील बार आवे तो
1: तो
2: बिना दवाइयां भी दी गई और वो और रात तो भी जब्यो बन।
1: देखो ओम जी, बिग माइंड
2: हाँ
1: का,
2: जी।
1: हाँ देखो, बी के दो चीजें हुए, डील आने का कई कारण है। एक
2: हाँ
1: तो अपने खान पान के माइंड कोई मिस्टेक हुई जावे, मेरी
2: हाँ
1: वजह। दूसरी कहीं है कि भैंस की जबकि लंबाई है, जबकि आप मियान माना कि भैंस बिल्कुल ओची भैंस के वहां पर
2: हाँ
1: जो बच्चों गर्भ के मायने बड़ो हो रियो, जो जो बड़ो हो रियो,
2: हाँ
1: जो बीर वास्ते जिज्ञा चाहिए, जन
2: हाँ
1: जिज्ञा चाहिए, जिज्ञा जो अगर भैंस छोटी हुई बच्चों बड़ी,
2: हाँ
1: जन बीर थोड़ो सो लारे प्रेशर रही, तो बीर वास्ते
2: हाँ
1: बचाव आपने ओई राखनो है कि
2: हाँ
1: आगे थोड़ी सी ढलांत राखो, लारो थोड़ी सी बैठे जन
2: हाँ
1: ऊंची राखो, और बढ़िया बिन ने खुराक दो, खुराक रो मायने अपने फॉस्फोरस का मिनरल मिक्सर आया करे, गो मिक्स राज कर, एक गो मिक्स राज कर, एक पाउडर आया करे। हाँ, तो वो भी आप बंटे के मायने 50-50 ग्राम दिरो, कई बार का ये फॉस्फोरस की कमी हुए ना जन आ शरीर है जो को थोड़ा बहुत दिखाई देवे, तो वो गो मिक्स राज पाउडर आप बंटा में चालू कर दो, और फिर भी अगर ज्यादा समस्या हुए तो आप नजदीक मायने पशु डॉक्टर ने दिखाओ और इलाज करो आप। हाँ सर, ठीक समझे।
0: तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे जाने के भी अलग अलग जानकारी के बढ़िया बाद में अलग अलग है
1: हाँ,
0: रोग
1: वो जो वायरस को प्रकोप तो खत्म हो जाए, लेकिन मेरे बाद के मायने अगर थोड़ा बहुत भी गंठ मध्य कोई भाव अपना घाव हुई को, वो घाव हुई को तो भी घाव जो को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो जब भी वो मवाद भी पड़ जावे, मवाद पड़ पूरी जगह लिम्फ की जगह लाइन ही जगह पाइपा है लिम्फ ने जियान अपन शरीर के मायने हुए जियान जानवर हुए, तो भी पूरे के मायने इन्फेक्शन ऊपर वो वायरस तो नहीं रहे पर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, भी वो जन जानवर है जो को तरतर है जो कमजोर हुए और बीरी वजह ही है जो को बे घाव पड़े। अब अपन सावधानी काय रखनी है के आज की बीमारी है लंपी अड़ी, अगर इन ऐसा कोई घाव हुएगा आगू आगे जो को ओ मक्खी या जगह फ्लाई यहाँ पर क्या मच्छर वगैरह बटू वायरस ले जा दूसरे जानवर ने जो वो काटियो, जो वो वायरस भी अगू आगे जानवर के मायने फैल,
0: फैल जावे।
1: तो आपने सावधानी आई रखनी है कि बाड़े के मायने मक्खियां ने बिल्कुल बैठने नहीं देनी, फिनाइल को छिड़काव रखो, साफ सफाई रखो, और अगर कोई जानवर बीमार हो चुके हैं लंपियाल बीमार

0: और फिनाइल छिड़कन रेगुलर भी नन्ना साफ राखो तो यहाँ पर मक्खी मच्छर बट कौन बेटर आगू आगे बा बीमारी आवे नहीं। सपोज करो कोई शार ले बाड़े के माइन कटे आएगो तो आप भी बचाव है कि अपने बाड़े में नहीं हुए और भी बाड़े में नहीं हुए इन वास्ते अपने बटे फिनाइल को छिड़काव राखो ताकि मच्छर है जो बटू बैठ पर वो वायरस
1: अपर बाड़े में नहीं आवे
0: अपर बाड़े में अपने स्वस्थ जानवर ने अटैक नहीं कर दे। हाँ
1: तो आंका टीका डॉक्टर साहब एक ही लागे या फिर अपन अलग अलग
0: सब बहुत बढ़िया सवाल करियो और किसान भाई ने बिल्कुल जानना जरूरी है कि जैसे आज टीको लगायो ये टीके री जगह अब मियाद के वहां बा 11 12 महीना रहे। हां
1: एक फोन है। हेलो हेलो हेलो हाँ आवाज आवे की हेलो। देखो नेटवर्क में है कौन है।
0: बीरी टिकेरी जो की मियाद है 11-12 महीना रहे लेकिन 11-12 महीने की आप मियाद माना जाना अपन हर साल टीको लगवाना चाहिए। लेकिन एक चीज और है कि ये टिकेरो अगर एक बार आप टीको लगवा दियो तो नेक्स्ट टाइम जो की बीमारी आई वह इतनी प्रभावशाली कौन हुए जो की पहल पोत हुई बीमारी बत्ती विकराल रूप कौन ले। उस बीरो रीजन वो है के जकी वो वैक्सीन लगे यहाँ पा या पहली बीमारी आई अब वो वायरस खत्म होगो लेकिन मेरी इम्यूनिटी है जो कि शरीर के मायने बनुड़ी रहे। अब दो तरह की इम्यूनिटी है एक तो कहीं है ब्लड के मायने रहे हुए 11-12 महीना एक वे इननेट बीमन के वे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बा कहीं रहे सेल के मायने रहे मेरी ये जो कि आप आज कह सकें कि 2-3 साल तक लगातार मेरी इम्यूनिटी जो ही वायरस अटैक करियो अटैक करते हैं अपना शरीर की।
1: एक फोन आया। हेलो हेलो आज भयंग देखो सही तो नेटवर्क में समस्या आ रही है।
0: पर जो कि इन्ने इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अपन जकन क्या हुआ भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी 2-3 साल तक बचाव रहे
1: बचाव रहे।
0: अब बचाव रो कहीं रीजन है के जो वो वायरस के लड़न वास्ते शरीर के मायने एंटीबॉडी बनी जबकि रोग लड़न की जबकि शरीर के मायने जानवर के बिना पर इम्यूनिटी के वहाँ के पर शरीर के मायने जो ही वायरस अटैक करी तो एंटीबॉडी पहले वो बनुड़ी है बा एंटीबॉडी भी वायरस को असर होने को देवे भी पहले भी वायरस ने बे खत्म कर दे तो आ इनके वे इम्यूनिटी तो वो 11-12 महीने भी रहे और कई जानवर ने बा है जबकि 2-3 साल लेकिन अपन ने प्रोटेक्शन वास्ते कि बचाव वास्ते हर साल लंपीरी वैक्सीन लगवा
1: लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल लगवा लेनी चाहिए वही उपाय है मेरे अलावा इरो कोई बचाव को नहीं।
1: और डॉक्टर साहब यह है कि वैक्सीन देखो कब सरकार है जो कि किसान भाइयों वास्ते इतनी सुविधा कर रही है कि भाई फ्री लगा रही है।
0: बिल्कुल फ्री
1: तो किसान भाइयों ने संकोच नहीं करना चाहिए और देखो कि वैक्सीन है जगह डॉक्टर ही लगा रही है।
0: हाँ,
1: डॉक्टर लगा रहे भाई देखो सरकार के निर्देश अनुसार ही लगावे तो बाने आप ये शंका दूर कर और आप पशु कितो स्वस्थ रह सके पूरा ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: तो देखो डॉक्टर साहब आप ने किसान भाई सुन जाए तो आप बने कई सीख देनी चाहो या कई कहना चाहो जो क्योंकि आप पर किसान भाई जगह आपके खुद के पशु वास्तव पूरा ध्यान रखे।
0: देखो किसान भाइयों मारी आई सीख है आई निवेदन है के हर साल मुआव का टीका FMD का जगह पे टीका है बे लगवा लेना चाहिए। लंपी वायरस को टीको है वो लगवा लेना चाहिए और जानवरों ने मिनरल मिक्सर लगातार देना चाहिए और पेट में कीड़ा मारन की दवाई साल मायने 2 बार दे देनी चाहिए और जितो पशु निरोगी हुई बितो ही आपा के सब निरोगा रहे।
1: देखो डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया जानकारी बताई और गाया में जकी आने वाली लंपी रोग इरो बारे में आज आप जकी जानकारी दी इरो किसान भाई जगह जरूर जरूर फायदो उठावेला और आज आप स्टूडियो में पधार और कितनी चौकी जानकारी दी बीरवास आप बहुत बहुत घनो घनो धन्यवाद।
0: राम राम।
1: तो देखो भैया के खेती बाड़ी प्रोग्राम जकर बातें तो और ही करने की है पर आज रो तेवड़ो टाइम है जो यो है पूरो तो आपके ओम धून वाले दी रहो सी करा राम राम। और एक साथ ही आपने बता देवा कि आज प्रस्तुतकर्ता श्री अशोक कुमार जी गोइल दिया और इंग साथ ही आपके ओम धून वाले दी रहो सी करा राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
1: कहीं और आपको बेटर मोबाइल प्लान मिले तो तुरंत पोर्ट कर लेते हैं, फिर पर्सनल लोन क्यों नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
3: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
2: चरखी दादरी हरियाणा से
3: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
3: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
3: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
3: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
3: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
2: श्रोताओं, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
3: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
2: जी,
3: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
2: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
3: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
2: जी,
3: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
2: जी,
3: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
2: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
3: बिल्कुल, साथियों उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
2: जी,
3: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
2: जी,
3: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
2: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
3: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
2: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
3: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
2: जी,
3: तो विमलेश जी फिर आगे क्या हुआ?
2: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
3: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
2: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
3: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का मौका मिला।
2: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
3: बिल्कुल, श्रोताओं, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
2: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझकर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
3: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है
2: जी।
3: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
2: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
3: वो क्या?
2: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है, लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
3: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही
2: जी।
3: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
3: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
2: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये जरूर जानें।
3: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है, और वो ये कि
2: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
3: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
2: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
3: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
2: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी न हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना

0: निशाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: सच्चियाकाल चाचा।
3: सच्चियाकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
2: बंदूक भी चलाते हो?
3: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
2: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
3: हाँ।
2: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
3: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
2: जी चाचा।
0: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
1: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
0: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
1: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
0: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
1: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मानसिंह, कैसे हो?
5: निर्मल सर, आप यहाँ?

0: हाँ मैं यहाँ एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं।
1: अरे वाह,
0: तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया, देखो ना यार कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
2: सर ये तो हमारा काम है।
0: मानसिंह मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है, जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
2: सर आप भला सफाई करेंगे, ये तो हमारा काम है सर।
0: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते। अरे दो ना मुझे, लाओ एक मिनट ये पॉलिश दे। हाँ पॉलिश दे। और देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
3: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
0: एक मिनट मानसिंह, तो मैंने फिट होन दे यार, एक मिनट मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना।
4: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे, जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
3: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
4: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
3: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
4: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
3: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
5: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
0: सर अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं, जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने, निशाना लगाता हूँ। अब बिल्कुल निशाने पर आ गया, ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, वहां से निशाना लगाना आसान होगा। गो!
5: फ्लाइंग ऑफिसर देखो, फ्लाइंग ऑफिसर देखो, दुश्मन के दो और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
0: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
4: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर शेखो ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
3: अब दुश्मन के चार विमान बचे थे। दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखो ने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
0: ओए कायरो, और भागते कहाँ हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
4: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
3: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखो का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
0: कंट्रोल रूम, दिस इज शेखो, शेखो 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
4: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखो देश के लिए शहीद हो गए।
3: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
4: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखो ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों, परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम

0: Эй, горвин, богам, шуня, жень, бояне, бояне, добряне, джодане, модане, урдане, бердане, джимдане, хатикардане, жеване, абрико, гири, орухоги.
1: Тарляри, ору, джана.
0: Ромромша. Эй, джаглюри.
1: Ата-та.
0: Ай, дек, бедя, тумара кака, ек, боди, бедя, бат, гемта, джанче, хунна.
1: Сунау, сунау.
0: Эй, наша, наш, га, карн, хей.
1: Билду, сей, бат, хей.
0: Эй, то, сей, кейсе, тум, битао.
1: Бето, апана. भगवान लाटू चीजा ठाण से दिए
0: अजिया
1: आप टोल तरह से नशा सी चीज नहीं था
0: आओ सही कहता है
1: तो नशा आप से शारीरिक आर्थिक और सामाजिक सरला नुकसान हुआ
0: है कहीं कहीं नुकसान है दो चार गिना तो शरीर बजे मंदिर भये ने
1: बेटो तेई बरसात नशा वे भी अपन तो शरीर तो डल जावे
0: ओ हो
1: काम तो टोन रहे
0: आ कौन रे वे
1: और समाज में बेटर लाइट होन रहे
0: आ कौन रे मारे बेटा
1: रुपया पैसा वाज तो बचे उल्टा काम तरह चोरियां तरह અરે
0: વાહ મારે બેટા જીવું તો રે કઈ પૂટરી બાજગી એ ભાઈજી ને કીધો નુકસાન હોય શરીર કો નુકસાન તો હે
1: સહી બાત હે
0: શાકે શાકે દેખ દુ એ સમાજ મેં બેઠી ચડું કુંદરેવે હે લોક કેવે અલગુ જા અલગુ જા ये तो नशा करता है
1: एक बात और बताओ
0: अब जा
1: ब्याह तो नहीं हुए बस
0: अल राम राम राम राम जाने तो बहुत बड़े नुकसान है मारे बेटा
1: मीना ने तो नहीं आओ बस टूट पन्नी जाए
0: हां सही कहता है मारे बेटा की एक नशा उन सब दे रे बेटा तो नशे लेकिन कौन जावे
1: हां वो न्याल टाई दे रही बस मीना ने ला रही
0: हां सही है मारे बेटा तो नशा नाश का कारण है नशा नहीं करना
1: चाहिए
0: चाहिए अब वो फोन करता पीने पीने उसको लाना चाहिए
1: ओले सा ये लेके आ गया हूँ मैं
2: काका जी धोक दे गांव बोल से बोलो पूनम चंद
0: हो लांगी लंबी उम्र हो अंधन का भिंडार मेरे राम जी धाने लंबी उम्र करे आप रो जाओ भिजो खो के नेर गांव भिजो
2: गांव बोल शरीर नाम पूनम चंद
0: हो पूनम चंद जी
2: हाँ काको जी
0: ए कोई काम जिंदा हुए हो
2: काको जी सीता तोड़ा
0: आज हिजिया तोड़ो बीरा दे दा कर लो रूड़ो आवे
2: हाँ काका जी रूड़ आवे जरे दे दा करा दोनों आता हूँ
0: आज सही है बीरा और भी जो काम मेरे परिवार में सब किया नहीं हो
2: काको जी आपरी दया है
0: ए रोम जी की ओ पूजन मोहन शमान जो ए तुम्हारे माता जी पिताजी कहीं करते हैं
2: ए सीता तोड़ते है
0: सीता तोड़ते है तो माता जी पिताजी का ध्यान रखना बीरा
2: बिल्कुल काको जी
0: अरे वाई शवा काको ये काम बोला वो करो गई हो
2: बिल्कुल काको जी
0: ए जो काको पूजी जी को जवाब बता दीजिए
2: हाँ बिल्कुल काको
0: ए सफेद दन हरी पूछ
2: हाँ जी
0: नहीं आवे थारे काके ने पूछ
2: काका मोड़ा भावा
0: ए डगलूरी
1: हाँ टाटा
0: ओ भाई जारे को नहीं मनियो तो सही सही जवाब दीजिए तू बोल भाई को हेलो
1: हेलो
2: हेलो कहीं करे देखला राम राम
1: राम राम पटेल लाडू सा
2: हाँ कोसी रो जीव तारो हजारी उम्र वो
1: हाँ सीटे थोड़े ना उठे डांटे जाऊ
2: हाँ आजो
1: हाँ टाटा मैं जाऊंगा सीटे थोड़ा आऊंगा
0: आई तू ही क्या तू
2: कहीं करे
0: ओ भाई रे मैं बच्चों धन्य
2: हाँ
0: ओ इन्हें इज्जत कंपनी के लोग ने मन्ने गाजरा खोला को दिन दब आई री
1: क्लास में पढ़ता हूँ
2: सवाल पूछो
1: आप पूछो जल्दी से
2: तीन वाला तेरह तेरह किताबे
1: तीन बारह तेरह
2: हाँ
1: सैंतीस हुए तो
2: किताबे हाँ
1: सही है ना
2: सही है
1: मैं होशियार हुआ पढ़ाई में
2: पढ़ने होशियार
1: हाँ मैं रोजीना पढ़ू छे चार बट चार छेजड़ी नीचे बैठ पढ़ू आठ आठ सुना प्रोग्राम में
2: मान देखो मैं बानकी का नाम लेना चाहूँ
1: ले लो सा
2: देखो बानकी किरण भतीजी तमना मैं सगरा सुना दोरे माते झोंपड़ी बनम जी लोडा खाए

0: पाकर राम राम।
1: ए राम राम जाई, राम राम जाई, आप रोन्याओ भिजो कोके नीर गांव भिजियो।
0: मेरा नाम नरेश बादू, गांव मंदडा से बोल रहा हूँ।
1: हमारा नाम काका है, हम हेलो गोर नागौर से बोलता है।
0: हाँ काका।
1: ए और क्या यानी हो, अगला गांव रे मायनी हो?
0: गांव में बस बढ़िया ठीक है।
1: ये राते रूड़ आयो की नुकसान तो कौन करियो?
0: है काका के नहीं करियो।
1: अरे वैश्यवा, और खेती बाड़ी नहीं बैठ ली?
0: खेती बाड़ी चाल रही है।
1: चाल ले हल्दी कड़बार बाहे कटी गुआर है कटी मीरा दिल है जी का हल्दी लोग ले वे हो?
0: हाँ काका।
1: ए और भी जो आपके जिम ना लो यो?
0: काका।
1: अरे वैश्यवा, ये कोई घर में नशो पत्ते तो कौन करे?
0: हाँ
1: भाई, वो नशो वाले कोई रेणो नशा नाश का कारण है।
0: हाँ काका।
1: ये ब्याह डोगियो कोई थोरो?
0: नहीं काका, अभी पढ़ाई कर रही हूँ।
1: हाँ पढ़ाई कर दो, कितनी मारी बेटा?
0: काका फर्स्ट ईयर में।
1: अरे हाउ बेटा, काका इन जा कौन पढ़े कितनी क्लास है हुए?
0: मतलब 13वीं।
1: ओ 13 रे, 14 रे, 15 रे, होला कितने बा पढ़ ले बीजा?
0: हाँ काका।
1: ए जो का पढ़ो, जो का लिखो, माई टांकार फिर बार का नाम ऊंचा करो बेटा रे।
0: हाँ काका।
1: ए भाई रे, माई टारो नी कभी कारज मत भूल लीजियो।
0: हाँ काका।
1: ए मार पोते आवड़े थोड़ी नी के उन पटावड़ी कर जियो, उदम घणो करे बीजा।
0: हाँ बात करो।
1: ए डगलूरी।
2: हाँ टाटा।
1: ए नरेश भाई, तुमसे बात करना चाहता, पढ़ी लिखी कहता, तेरा क्लास हम पढ़ लिया, तुम बोलो। हेलो
2: हेलो
0: हेलो डगलू भाई, राम राम।
2: राम राम पटेल आडू सा।
0: कुछ रहो।
2: ओ टाइम हो रही है।
0: और बस बढ़िया ठीक है।
2: अब दिवाली आने वाली है, तेरे टर्नी आपने?
0: हाँ जी।
2: हाँ बैठो ना, टिटड़िया छोड़ दूँ।
0: झोंपड़ी
1: दोरे
2: माते झोंपड़ी
1: जो गीत जो मर बेटा
2: अच्छा है।

0: नमस्कार, राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही। अबरो न्याओ वीडियो को के निर्गो वीडियो
0: पड्डू
1: शमीर भाई सलाम मूले का मु काको रेडी रेडे थे। शमीर भाई बताओ नागौर में किसी स्कूल में पढ़ो?
0: पढ़ो।
1: हेलो
0: काका, दिखता नहीं है मुझे।
1: हो दिखते ही नहीं है।
0: हाँ
1: तो फिर पढ़ाई कैसे करता हो काका को बताओ।
0: काका हम ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं, जो
1: हो बीरा हो। देखो कोई बात नहीं राम जी, देखो बीरा मन की आंखों से पढ़ते हो। हाँ सही बात है बेटा, ये मारे पर थोड़ी नहीं को पढ़ाई करे जो ए डागलो रे।
2: हाँ टाटा।
1: ऐसे जमीर भाई इसको दिखाई नहीं देते लेकिन मन की आंखों से पढ़ता। बोलो हेलो।
2: हेलो
0: हेलो। राम राम सुनो भाई।
2: राम राम पटेल डूसा।
0: खुश रहो, मौत करो, भगवान लंबी उम्र करे।
2: हाल चाल है टाटा?
0: हाल चाल तो ठीक है, तंग क्या है?
2: मैं तो रेडी रेट हूँ, अबार तो ना मैं जीवन जाऊँ। लाड रात मारो और पैसे देवे और मैंने चीजा छुआवे।
0: मैं आऊ एक दिन
2: आ जाओ, नहीं तो चीजा मैं थाने छुआ दे।
0: मैं थोड़ा दोस्त संग नाम लेना तू हमारे
2: ले लो सा।
0: उम्मीद भाई, कमलेश, कमलेश जाट और रामचंद्र।
2: मारे रामो सामा मिले ना बटे।
0: हाँ आई गयो, आई गयो, जरूर आई गयो।
2: मैं सुना प्रोग्राम में
0: आज काको लयो काटड़ी काटी मन जबी
2: टाटा।
1: आब जा
2: काटड़ी लयो मन तो छुआये तो नहीं।
3: पाऊ लागू काका जी।
1: ए जीवदार और ओम जी धारी लंबी उम्र करे। आप नाम भिजो कोखे नीर गाँव भिजो।
3: मारवाड़ मुंडवा।
1: आओ मारवाड़ मुंडो कौन बोलो?
3: बादशाह भाई।
1: आओ हो बादशाह भाई।
3: हाँ
1: अरे वाशा वा कई नाम है ढाको काके रो जीव शुरू जो भी जाओ। गाँव में परिवार में सब किया नहीं हो?
3: सब बढ़िया गया।
1: ए ताने प्रोग्राम कैसे हो लाग गए हो? ए कोई परिवार में नशो पत्तो कौन करे?
3: नहीं नहीं नशो पत्तो कोई नहीं करे।
1: अरे वही सेवा नशा नाश का कारण है भाई, वो अलग हुई रेनो। एक काको एक सवाल करे उसका जवाब बिड़ोगे काई? ए तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के लारे दो तीतर। ए तीतर के आगे तीतर, तीतर के लारे तीतर। बताओ कितना तीतर?
3: आवे कौन काका?
1: ए डगलू रे।
2: हाँ टाटा।
1: ए भाई आ रिया, हम जीत गया।
2: मैं जीत जाऊँ ला पसे।
1: ए तू जीत जाएगा भाई, किधर जाएगा कहीं?
2: हाँ मैं जाऊँ मैं
1: तो पहला भाई को बोल हेलो।
2: हेलो।
3: हेलो
2: भाई पटेल लड्डू।
3: हाँ कुछ रहो
2: टाटा, ताई सवाल पूछे थे तो दान टोनी है, मैं बताऊँ थी?
3: हाँ बताओ। कौन है?
2: तीन तीतर हुआ बचे। तीतर के आधे दो तीतर, तीतर के लारे दो तीतर, तीन तीतर तो सही है ना?
1: ए बिल्कुल सही है, भाई को हमने पूछे था तो तुमने बताया तो तुम भाई जीत गया, तू जीत गया, हम आ गया भाई।
2: अब आप जीत गए भाई
3: साहब।
2: हाँ सुनो प्रोग्राम में।
3: प्रोग्राम में सुनो, मन काको लाया काकड़ी।
1: ए भाई कहेंगे रे
2: ठाठड़ी ले रहे नहीं, मैंने दियो
1: धनी दियो रे गीत रहे तू जो ने
2: अच्छा है।

0: हेलो राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही। आप रोजाओ भिजो को के नीर गाँव भिजो।
0: नाव तो है उत्सव कुमार
1: अरे
0: गाँव है बोशेरी।
1: ओ हो भाई को बोशेरी में कोई करो
0: मदिरा ना बीच काटा।
1: आज ओ हो मदिरा गीता भैया हमके।
0: हाँ जिमिन ना भैया तो काटा थे जिमो।
1: ए जरूर जिमिन ना भाई और बजो घर में परिवार में सब किया नहीं हो।
0: मौज है मौज।
1: अरे वैसे मौज ही रेणी जी जी राम जी की कृपा। ए भाने भान की गीता भाई।
0: भाने भान की गाय है राम जी तीन भैया।
1: अरे वैसे हुआ कहीं कहना है ए सेवा पानी करे भाई थोड़ी।
0: हाँ मौज करा।
1: अरे वैसे हुआ ए उच भाई हो।
0: हाँ
1: ए भींगड़ी आवे गई हो।
0: हाँ तीन भैया तीन पन्नोड़ा
1: है तीनों पन्नोड़ा तीन भींगड़ी आवे भींगड़ी लाए।
0: हाँ तीन भींगड़ी आवे पोता पोती राम जी टाट है।
1: अरे वैसे हुआ भींगड़ी को लाड रखो कौन रखो।
0: मैं तो घणो ही रखा लाड।
1: ए भींगड़ी धारो मान सम्मान रखे।
0: हाँ घणो ही रखे।
1: अरे वैसे हुआ जो और कहीं जी जे भाई हो जो की बात काकू एक सवाल पूछे उसका जवाब करूंगे कहीं भाई।
0: भाई मैं तो पड्डेड़ा ही कौन का है अपना।
1: ए तो अपन अनपढ़ कोई सवाल है
0: अनपढ़ रो है के।
1: हाँ सुनो जना।
0: हाँ।
1: एक खड़ी ही एक पड़ी ही।
0: हाँ।
1: एक घना घना नाच।

0: थी कहीं होगी है
1: भाई काका मंत्र ठाई को बड़ा
0: ए जगलूरी
2: हाँ टाटा
0: ए भाई गई थी हमको नहीं आऊं तुमको आऊं जाएगी
2: मैं नहीं तो नहीं आता है
0: ए तुम भाई तुम दोनों हार गए काका जीत गया है
2: बताओ जल्दी बताओ
1: काका जीत गया
0: ए भाई
1: काका जीत गया भाई तो
0: ए ऊंचे कमरे
1: हाँ
0: ए भाई आ तो थोड़ा माते रोटी नाका जी की हुए बजे एक घड़ी रेख पड़ी
1: भाई यार नाम बताऊं के बेटा रहा
0: ए बता दे भाई
1: बडोड़ा नाम गणपत सिंह छोटके नाम जगदीश सिंह और छोटके नाम है बागीर
0: सिंह बीरनिया का नाम कौन बचा भाई तू
1: हाँ बताऊं क्यों कौन बडोड़ी रहा ओम कंवर है छोटकड़ी बिचोटड़ी रहा सरोज कंवर है बीरू छोटकड़ी रहा है बिमला कंवर
0: अरे वाह वेरी गुड जय गो मारे पोते हूँ बात कर भाई
1: करूँ क्यों कौन है हेलो
2: हेलो
1: काय करो भाई
2: ऐसी पटेल लाडू सा
1: निरुपा रहो
2: अबार तो मैं भाई जिम न जाऊँ ये
1: हाँ
2: अबार तो ना नूट आवे से मैं तो जिम न जाते और दौड़ जाऊँ और तांते डाल आऊँ थी मैं मट्टी रखावन है
1: आओ बहुत दे हूँ आओ
2: थोड़ा बीज मारवास तो राज थे
1: आओ गणा ही रहा को खाओ एक एक कर खाना जो तब मौत में है बन्ना रुकानो
3: काका जी राम राम
0: ए राम राम शाही आप रो नाव भिजो कोके नीर गाँव भिजो
3: हरवन राम है गाँव हिलो है
0: ओ हरवन जी हिलो में कोई करो
3: काका जी बीकानेर दुकान है दुकान में
0: आज ओ बीकानेर दुकान घर की है कही हो
3: हाँ घर रही है
0: ए कह की है बचो को नहीं काके ने कहीं काको आयो ने
3: मोटर गाड़ी टायर पंचर वाली सर्विस वाली है
0: टायर पंचर उजर पंचर का डो नी
3: हां
0: ओ जे काका के तो की है कोनी बिना झगड़ किए जो खेत जो और खेत उपा जो आजू में जो
3: क्या कर रहे बार भाई यार नाम लेना चाहूं
0: ए ले लियो शाह
3: पापा नाम है मूला राम भाई यार नाम है एक नाम उपमा राम एक सुबह और एक बेटो है जेठा राम
0: आज या बीनड़ी को नाम कौन लियो
3: ले लिया घेरा
0: बीनी घर की लक्ष्मी है नाम लियो
3: तो लक्ष्मी
0: हाँ जो लक्ष्मी को नाम पहला आनो जी ए बीनी को नाम लियो पहला
3: रामेश्वरी
0: जगलूरी
2: हाँ टाटा
0: ए भाई आपरी बीनी नाम दो दौड़ लियो तू बोल हेलो
2: हेलो
3: कहीं करो
2: सरवण जी पटेल लाडू सा
3: हाँ खुश रहो मौज करो
2: हाँ तो बाहर पढ़ाई करूँ मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाई कर आयो हूँ
3: कितनी
2: क्लास में पढ़ू मैं अब परीक्षा आने वाली है ना जताऊ और ताई हाल चाल है और माटो प्रोग्राम दिया लाडो जाने
3: बहुत तकड़ो लागे
2: सुनिया तेरा सटेलाइट दसता है ना
3: मन तो बहुत ही तकड़ो लागे प्रोग्राम
2: सुना थाने
3: आज नट बना का भजन
0: नट
2: बना तो भजन सुननी चाहे
0: मैं अगर बेटी खेऊ जाऊ तुम्हारी बेटी
2: अच्छा है

0: राम राम शाह सबको जी।
1: ए राम राम शाह, राम राम शाह, आप रो नाव भिजो को के नीर गांव भिजो।
0: मारो नाम मोहन सिंह, यहाँ है अड़वड़।
1: अड़वड़ से ओ हो, कौन बोलो?
0: मोहन सिंह बोलो, मोहन सिंह।
1: ओ हो, मोहन सिंह जी अड़वड़ में कोई करो?
0: अरे मैं तो रिटायरमेंट रेस्ट करा।
1: आज रिटायरमेंट हो गया? ओ हो, किस विभाग में आओ?
0: भूजल विभाग में।
1: अच्छा भूजल विभाग, ओ हो, पानी आलो?
0: हाँ पानी भाई, भूजल खोदा जी को।
1: अरे वाह वाह, लोगों ने पानी पायो, लोगों की खेती बड़ी सही करी, थाने घनी आशीष मिली। और बताओ गांव परिवार में सब क्या नहीं हो?
0: सब ओके है क्या?
1: ए माँ प्रोग्राम कैसे लगे थो नहीं हो?
0: जोर लगे बढ़िया लगे, जो फोन करा।
1: अरे वाह वाह, और घर परिवार में सब क्या नहीं
0: है? सब ठीक ओके
1: है। मारे पोते और थोड़ी हटावरी करो। एक जगलू बोल दादा को, हेलो
2: हेलो
0: हेलो। राम राम जगलू भाई, राम राम।
2: राम राम पटेल अड्डू साहब।
0: हाँ खुश रहो, खुश रहो, खुश
2: रहो। टाइम हाल चाल?
0: बस हाल चाल ठीक है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। बस
2: बूढ़ा हो तो कहीं माते तो थे, सम्मानित आदमी हो बचे, मैं तो थाने निवड़ तेरा।
0: हाँ नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
2: थे भगवान तो बचन तेरे आते रहो।
0: हाँ बिल्कुल, क्या करा सुबह से।
2: हाँ सुबह से नाम लेनू हो ऊपर वाला तो नाम ले, टाइम बढ़िया रही हो।
0: हाँ बढ़िया।
2: खेत में जाओ टड़ी?
0: हाँ।
2: क्या टाटड़ी मटी रहो यार? तो नहीं
0: कोई काकड़ी यार, कोई मटी रहो यार, क्यों नहीं हुआ?
2: अब तड़ तो बिना टाटड़ी रे वंदी थे
0: काचरा हुआ, चलो वह काचरा और फलियार है हुई है।
2: वाह, थोड़ी सी थैली में डाल भेज दीजिए हमारे वास्ते।
0: हाँ बिल्कुल।
2: और आज टाइम सुना आपने प्रोग्राम में?
0: अरे बुगला गाड़ी से उड़ जा रहे
2: टाटा।
1: बुटला
2: ढाणी से उड़ जाई जा रे, उड़ जाई जा रे।
1: अरे तू किधर जाऊं दे?
2: अच्छा है।

0: खागर राम राम
1: ए राम राम जाई राम राम जाई आबरो न्याम भिजो कोके नीर गांव भिजो
0: नाम दिनेश है
1: ए दिनेश की जी क्यों बोले बीरा
0: नाम दिनेश है
1: ए दिनेश की जी क्यों बोले

0: हाय मारा भैया, वो तो भयानी बोयानी सबकी पिसिन को पोगा म
1: हेलो डोर बे
0: ए पोगा में कोई भाई गी दे बजन ने होना चाहता तुम कहीं जेवता हो।
1: मैं बैठा हूँ रेडियो स्टेशन फोन करना है।
0: अच्छा रेडियो स्टेशन कहीं नंबर पर फोन करे किसे बार करे कितनी बजे करता है बताओ।
1: बार बताऊँ दी दिन दोपहर 12 बजे 8 बजे के बीच में फोन टनू है।
0: अच्छा
1: नंबर है 015-82-240-168।
0: अरे मारे बच्चा यूं बोल मिंडी एको पांचो आटो दुओ
1: दुओ
0: ए दुओ जोको मिंडी एको छको
1: आटो
0: आटो। ए बेचा जी
1: एक
0: ही भैया का फोन है झूमे की गुमी में लेनी सी क्या तू उनका पाना बांचो।
1: अबार बांचो नाडोरू टरिस्मा तो आयो है।
0: आए
1: झाड़ेली नोटाऊ नानू राम जी तो आयो है।
0: आजिया
1: डोड़ारू नाडोरू ममता तो आयो है।
0: आजिया
1: और संत वासु गजेंद्र सिंह तो आयो है।
0: एने के आगल दी द्वार का फोन गिड़गिड़ी जो
1: टेडे हूं।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और ढगलिया की भूमिका में थे संजय पारशर।
0: ए मारा बच्चिया रे
1: हाँ टाटा
0: अब बताओ आज के प्रोग्राम में तकनीकी हयो किसका है।
1: राजा राम ढेडर जी तो
0: आज के प्रोग्राम के पशदूत की था
1: असो तुमार जी डोयल।
0: अब हंडेज लगो मारे भैया
1: अब आ लगाओ स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो हेलो डोरमन
0: होते ही रहो जब आप रेखो के नेर होगे
1: डरला राम ने दिराओ सीट तटे है
0: राम राम श्याय।

0: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं, समय हुआ है समाचार संध्या का, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: साथ में मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए

0: अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तेलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहां पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीनफील्ड लाइंस को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इंप्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी

0: आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
3: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
4: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
5: मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजनाइजेशन में। जहां पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
3: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

0: कहा कि डीएमके, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
1: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चिनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में एक विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
0: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पैसे पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में तलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। यह है सुगम संगीत की पहली पेशकश।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा। व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: लोकतंत्र में जनसेवा का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना भी है जो नागरिकों के जीवन को सरल बनाए, आसान बनाए, आर्थिक विकास को गति दें, न्याय सुनिश्चित हो और संस्थानों को अधिक

0: यानी आईबीसी, जीएसटी परिषद, रेरा, नीति आयोग, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जन विश्वास अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जैसे कानूनों एवं संस्थानों ने देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में नई भूमिकाएं निभाई हैं और इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व का अहम योगदान रहा है। तो इन कानूनों में बदलाव से क्या व्यापक असर पड़ा है, आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
1: आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ आया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लिया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नए प्रावधानों में अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं और कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है। श्रम व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये संहिताएं नवंबर 2025 से लागू हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को एक व्यापक ढांचे में रखा गया है। कर व्यवस्था में जीएसटी एक बड़ा संस्थागत बदलाव रहा। केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी फैसलों के लिए जीएसटी परिषद को साझा मंच बनाया गया। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा की व्यवस्था की गई। कारोबार और वित्तीय व्यवस्था में दिवाला समाधान के लिए आईबीसी ने समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई। वहीं छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में जन विश्वास कानून महत्वपूर्ण कदम रहा। कारोबारी विवादों में तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा? इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए? क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान। प्रफुल्ल केतकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
0: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत प्रमुख बदलाव देखने को मिले और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं, इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
2: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था, तो साल भर में ये राउंड पूरा होता था, तो ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था। दूसरा मैंने देखा कि सीएम के

0: रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तो इसमें एक तरफ ग्राउंड के इनपुट्स आने का मैकेनिज्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के चार स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस। इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में, और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर्स रोज दिख रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची, या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज ए मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है, कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो, चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं फिर नीति आयोग को देखता हूं कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनना, या इंसॉल्वेंसी कोड के आधार पर। तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो, उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अगले सवाल में आपके पास आएंगे, योजना आयोग से नीति आयोग बनने की कहानी और उसके क्या फायदा हुए इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आशीष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हुई। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए। इन नए कानूनों में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब आपको क्या दिख रहे हैं, और क्या हम अगर देखें 2 सालों में तो इनसे न्याय मिलने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ और समयबद्ध हो सकी है?
2: न्याय प्रणाली किसी भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने 4 अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इंप्लीमेंट किया जाए, और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे, क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए 3 कानून लाए, और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग थे, जैसा आपने कहा, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूं जिसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे दिखाना है। देश की आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है। पुलिस का नाम आते ही छोड़ो, इसमें क्या पढ़ना यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब 0 FIR जैसे प्रोविजंस लाए जा सके हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार FIR रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर वीडियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है। इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन तीनों कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है, और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं।
1: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदि हो चुके हैं, तो एक उनकी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, शायद वो अभी भी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन, न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहां पर खड़े हैं?
2: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था? जब ये कानून पुराने कानून थे उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था, या एक CRPC थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सकें, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सकें। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है, और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजंस हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही BPRD इंस्टीट्यूशन आता है, और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात कि चूंकि इन कानूनों को खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोटेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं, और ये मेजरेबल काम है। ऐसा नहीं है कि केवल बातें हुई हैं, हम धरातल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
1: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है?
0: देखिए 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है, वही जनविश्वास में है। पहले ये होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में कि वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया है, तो उसके ऊपर मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। अब जनविश्वास के तहत क्या हुआ है कि पहली बात तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है, तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है। इसने क्या किया है, उसको नोटिस अभी भी जाएगी लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे CA से कुछ गलती हो गई है तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों का आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या जीएसटी ने उसको और भी अलग कर दिया है, क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया। तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था, वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए। हर बार हमको जो हमारा माल जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन का ये अलग होता था, सेल्स टैक्स के रूल्स अलग होते थे, तो उसके बारे में हमको ये नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि एक बार हमने ये प्रोसेस कर दिया तो हमको हर बार किसी न किसी ऑफिसर के सामने जाकर नहीं बैठना पड़ता। तो ये इस प्रोसेस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस ये बिजनेस कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, ये जो मानसिकता हमारी सोशलिस्ट माइंडसेट ने बन गई थी, प्लानिंग कमीशन भी उसी का प्रतीक था
1: जी,
0: इसलिए वो नीति आयोग करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस ने सरकार की इस सारी व्यवस्था पर, टैक्स देने पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको एक सिंगल विंडो, सिंगल क्लिक, सिंगल वेबसाइट, इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई। और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ,
1: बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
0: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म
1: जी।
0: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था। तो उससे निश्चित रूप से
1: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते टंडल के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में। आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। 4 श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ।
0: देखिए, अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे, और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी, क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था। दूसरी तरफ जो उसका, जिसके लिए ये बनाए गए हैं, उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारियों के लिए लड़ना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो 4 कानून आए, 4 लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और 4th जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है। अब इन 4 कोड्स के आने के कारण क्या हुआ, इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी। L20 के नाम से, लेबर 20 नाम से वहां पे एक फोरम बना था, और उस फोरम ने भी इन 4 कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट, उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन 4 कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे, वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
1: ये जो 4 लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है, जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो एनपीएस हैं, ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूँ, उसमें आईबीसी की आपने बात करी, ये बहुत ही जिसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दो चीजों से जोड़ सकते हैं। प्रफुल्ल साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट्स होते थे, और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसके रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था, और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम्स पे जाना पड़ता था, और वो भी सालों साल प्रोसीडिंग्स लटकी रहती थी, और उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता था। तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए, और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। आईबीसी के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी है क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूं, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसी भी कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आप उनको भी आईबीसी कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का, और उस कंपनी का कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है, तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक शेड्यूल्ड क्रेडिटर्स की है। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है, और साथ ही जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। जीएसटी ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहां आप खड़ा पाते हैं, जीएसटी पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर हमने एक टैक्स टेररिज्म की बात करी थी, टैक्स टेररिज्म केवल डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसकी कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम एक हमारे पास है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं, और राज्यों के पास भी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों का मूवमेंट होता था गुड्स या सर्विसेज का, तो जो भौगोलिक बॉर्डर्स होती थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉर्डर्स बन जाती थी। और उसके वजह से आप देखते थे हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। जीएसटी के आने के बाद से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया गया है, और इसके असर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है, और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है, और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है कि इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं हम, क्योंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब चूंकि वो इनवॉइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्मलाइजेशन हुआ।
0: बिल्कुल।
2: और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि पहले क्या व्यवस्थाएं जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर था कि सेंटर पर स्कीम बनती थी और नीचे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स और सेंटर साथ में बैठते हैं, खुद तय करते हैं किसी चीज पर क्या जीएसटी लगना है, वो किस लेव में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, और इससे कहीं ना कहीं कॉपरेटिव जो फेडरलिज्म की बात करते हैं वो ढांचा मजबूत हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई है। जी
0: बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, हम ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। आज छोटे से छोटा कारोबारी, बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप यूपीआई पेमेंट कर दीजिए या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहां तक जाना है इस सोच को?
3: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक सोशल इंक्लूजन, मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और यूपीआई की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज करते तो उसके चार्जेस है ही। तो सबसे पहला जो हुआ कि गांव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेडी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना ये बहुत बड़ा बदलाव था
0: जी।
3: दूसरा फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221 रुपया 39 पैसा है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीस 299 रुपीस क्यों छापते हैं, तो वो एक रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में दो पैसे के लिए मैं और अपने जनरेट क्यों पाल लूं। तो ट्रेडर भी, और कभी भी आप देखिए ये टैक्स टेररिज्म 1970 से जब शुरू हुआ तो लोगों के टैक्स चुराने की मानसिकता बढ़ गई क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक जमाना था जब इमरजेंसी के समय उसके आसपास 80-90% तक सारा कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ता था, तो जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ उसमें 80-90% सरकार को देने पड़ रहे तो मैं क्यों करूँ, और उस पर से भी कोटा भी है परमिट भी है, तो रिलक्टेंस खत्म हो गया। जब डिलीवरी मिलने लगती है तो लोगों की टैक्स देने की मानसिकता बदल जाती है, तो उसके कारण टैक्स ब्रैकेट भी चेंज हो गए। तो मुझे लगता है ये तीनों तरीके के बदलाव उसके कारण
1: और साथ ही एक चलते चलते समय बहुत कम बचा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी बिल्डर्स की।
3: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है, ज्यादातर होता क्या था इसमें, क्योंकि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी जिसको यूएस में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस
1: जी,
3: तो सब प्राइम बेसिकली क्या था?
1: यही था,
3: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है, तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है वो सामान्य खरीदार, उसका क्या? अब उसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है। और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। दो तीन प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बिल्डर्स के जो आधे अधूरे पड़े हुए थे वो दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है और उसके बाद उसको लगता है 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बढ़ा है,
1: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर। और आज की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी देश की प्रगति में कानूनों का आधुनिकीकरण, संस्थानों की मजबूती और प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संस्थागत बदलावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की अपने दो बेहद खास मेहमानों के साथ, प्रफुल्ल केतकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशीष कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
5: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। आकाशवाणी नागौर का ये 6वां चैनल है। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली से एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां।
6: बहुत बहुत पुराना है, उनका प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे दौड़कूद, कुश्ती, तीरंदाजी आदि। और अब ये खेल पूरा व्यवस्थित रूप लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मेलों की शान बनते रहे हैं। आज इन्हीं में से एक में 20वें एशियाई खेलों में भारतीयों ने देश की शान बढ़ा दी। आईची नगोया एशियन गेम्स में आज की स्पर्धाओं पर हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। मेरा नाम है अनुपम पाठक, स्वागत है आपका। पहले हेडलाइंस। आर्चरी में आज के सभी 3 स्वर्ण पदकों पर भारतीयों का निशाना। शूटिंग में मिश्रित ट्रैप में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ने किया कमाल, स्वर्ण पदक पाया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंची, दो मुक्केबाजों को कांस्य पदक मिले। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया। तीरंदाजी में भारत ने पिछली बार 5 स्वर्ण पदक पाए थे। इन खेलों में इस बार हमने कई बार ऐसा देखा है कि जिन स्पर्धाओं में पिछली बार स्वर्ण पदक थे उनमें इस बार सोना अक्सर नहीं भी आया, लेकिन आज कंपाउंड की तीनों स्पर्धाओं में भारत ने अचूक निशाने लगाए, परफेक्ट 10 बारंबार स्कोर किया और जब मैदान में उतरे जीत कर आए, स्वर्ण पदक के साथ आए। तीनों स्वर्ण पदकों की सुनहरी दास्तान सुना रहे हैं रोहित भारद्वाज।
7: भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक पूरी की। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तानी पार्थी और प्रीतिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद चिकिता तानी पार्थी और साहिल जाधव की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराया। मुकाबला 157-157 की बराबरी पर समाप्त हुआ और शूट ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड हासिल किया। पुरुषों की कंपाउंड टीम कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने चीन को 238-237 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस तरह कंपाउंड की तीनों टीमों ने भारत को 3 अलग अलग गोल्ड मेडल जिताए। चिकिता और ज्योति सुरेखा साई के सोनीपत सेंटर में ट्रेन करती हैं और साइकिलिंग पे खेल मंत्रालय ने 22.19 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले वर्ष, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेशनल कोचिंग कैंप्स शामिल थे।
6: कल नीरू ढांडा ने ट्रैप में सोना जीता था, नया रिकॉर्ड बनाया था। अपने जबरदस्त फॉर्म को उन्होंने आज भी बनाए रखा। अपनी जोड़ी बनाई कायनन चेनाई के साथ। मिक्स ट्रैप स्पर्धा दूसरी और तीसरी सीरीज में उन्होंने 10 में 10 निशाने लगा दिए, नया एशियाई रिकॉर्ड और आज का चौथा स्वर्ण पदक। हमारी रिपोर्ट पर यह निशाना है मुदिता का।
8: शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन को पीछे छोड़ दिया। ट्रैप शूटिंग में ये भारत का तीसरा मेडल है। इससे पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रहे।
6: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कायनन चेनाई के पिता भी ट्रैप के राष्ट्रीय चैंपियन शूटर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चेनाई ने 10 साल की उम्र में ही गन थाम ली थी। एशियाई खेलों में जाने से पहले आकाशवाणी ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी। आइए उस मुलाकात को ताजा करते हैं।
9: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे हैं और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा तीसरा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द कैंप and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward, बहुत ज्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
6: पुरुषों की तरह महिला हॉकी में भी भारतीय टीम गोलों की बौछार करते हुए सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी और आज सेमीफाइनल्स में उनके मुकाबले थी दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम। गोल्स की झड़ी तो नहीं लगी, लेकिन लड़कियों ने मैदान पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 2-0 से कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों क्वार्टर्स मैच में गोल रहित रहे। भारत ने इस दौरान दबाव बनाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स भी कमाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। कोरियाई खिलाड़ी बेहतरीन रक्षण के साथ हमलों को नाकाम करते रहे और मौका मिलते ही प्रत्याक्रमण के मूव भी बनाते रहे। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने के ठीक पहले मिले एक पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने एक नया वेरिएशन ट्राई किया। दीपिका सहरावत ने शॉट लेने के बजाय इंचिका की ओर गेंद को पुश कर दिया, जिसने झपाक के साथ गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट को खड़का दिया पहला गोल। इसके ठीक 4 मिनट बाद ही कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी और वहीं से तेज झन्नाटेदार शॉट लगाया जो डिफेंडर से स्टिक से टकरा कर डिफ्लेक्ट होता हुआ गोल पोस्ट में समा गया। भारत 2-0 से आगे हो गया और यही अंतिम स्कोर भी रहा। ये मैच खासा संघर्षपूर्ण जरूर रहा, लेकिन कभी भी दक्षिण कोरिया भारतीय गोल पोस्ट के लिए खतरा नहीं नजर आया। अगर कुल मिलाकर मैच के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 61% गेंद भारतीय नियंत्रण में रही और कोरिया सिर्फ 39% अपने पास गेंद को कब्जे में रख पाया। पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने 12 कमाए जबकि कोरिया को सिर्फ 3 मिले। और अब फाइनल में भारत का मुकाबला होगा चीन के साथ, जिसने आज जापान को जो मैच हुआ उसमें गोल रहित मैच खेला। उसके बाद मामला गया पेनल्टी शूटआउट में, जहां पर चीन ने जापान को 4-2 से परास्त किया। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय लड़कियां 2 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी और एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास, क्योंकि पिछली बार चीन के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था जिसमें चीन ने भारतीय लड़कियों को 4-0 से परास्त किया था। यानी इस बार भारतीय लड़कियों के पास मौका है इसका बदला लेने का और साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीतने का। जरूर निगाह रखिएगा इस मैच पर। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी भारत के लिए पदक कमाने वाला खेल रहा है। कुल पदकों के मामले में देखें तो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती के बाद। पिछली बार 4 मेडल आए थे, 1 रजत और 3 कांस्य। तो भाई इस बार स्वर्ण की उम्मीद करें? जी बिल्कुल करें। क्यों करें ये जानते हैं मुदिता से।
10: बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए, प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गयी, वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खबीब बुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के 1 से ज्यादा बॉक्सर्स होंगे।
6: स्क्वाश उन खेलों में है जिनमें भारत अपनी पहचान बना चुका है। सौरव घोषाल, हरिंदरपाल सिंह संधू, दीपिका पल्लिकल की विरासत नई पौध ने बखूबी संभाल ली है और ज्योत्सना चिनप्पा का अनुभव तो अभी भी साथ है। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुदिता बता रही हैं स्क्वैश के सितारों की कहानी।
10: पुरुषों और महिलाओं की स्क्वैश टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मेडल भी पक्का हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन पुरुष टीम ने कुवैत को 2-0 से हराया। वीर चोटरानी ने 3-1 से जीतकर अच्छी शुरुआत दिलाई और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया। तन्वी खन्ना ने 3-1 और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
6: टेनिस में आज उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का। सेकंड राउंड मैच में चाइनीज ताइपे की जोड़ी सू वी सी और चुन सिंह सेंग के विरुद्ध। दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। ऋतुजा भोसले पिछले खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुकी है। यूकी आज इसके पहले भी कोर्ट में उतरे थे पुरुष युगल में दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ। उनके सामने थे चाइनीज ताइपे के चेन जुई हो और यू सिया सू। यहाँ पर पहला सेट बहुत संघर्षपूर्ण रहा, 6-6 की बराबरी पर। उसके बाद टाई ब्रेकर और जिसमें 5-7 अंकों से वो हार गए, लेकिन दूसरे सेट में तो बिल्कुल रिदम ही खो बैठे। चौथे गेम में उनकी सर्विस ब्रेक की ताइपे की जोड़ी ने और 4-1 की बढ़त ले ली। भारतीय जोड़ी 3-6 से सेट और मैच हार बैठी। दक्षिणेश्वर सुरेश एकल में ताइपे के चुन सिन से हार गए थे 3-6, 4-6 से, लेकिन सुमित नांगल ने अपना विजय अभियान तीसरे राउंड में भी जारी रखा। उन्होंने उज्बेकिस्तान के सरगई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से परास्त किया। यानी टेनिस में इन दोनों ने पदकों की आस जीवित रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पुरुष डबल्स में भारत को पदक नहीं मिला है। पिछले खेलों में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भारत के हिस्से में आया था। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो गईं और भारतीय उम्मीदें भी जवान हो उठी। पहला पदक भी आ गया पहले ही दिन, लेकिन कांस्य पदक था। कितनी बाउट्स लड़के ये कांस्य पदक आया आइए जानते हैं मुदिता से।
10: मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 9-0 से हराया। भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले हांगजो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपेशाज में दक्षिण कोरिया की ह्यून योंग पार्क से हार गई।
6: आज ही जूडो की स्पर्धाएं शुरू हुई। 3 दिन की स्पर्धा, 3 भारतीय खिलाड़ी, जिनमें से पहली आज मैट पर उतरी। विवरण के साथ मुदिता।
10: जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गयी। जूडो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यामिनी मौर्य और 70 किलोग्राम भार वर्ग में ताकी लाम्बम इनून गानबी के मुकाबले अभी बाकी हैं।
6: गोल्फ बड़ा संभ्रांत खेल माना जाता है। भारतीय उपस्थिति इसमें लगातार मजबूत होती जा रही है। कुल 6 गोल्फर हैं भारतीय दल में। आज महिला और पुरुष दोनों मुकाबले थे। इस क्यू के साथ रोहित भारद्वाज।
7: एशियन गेम्स 2026 में गोल्फ से भारत के लिए डे 14 पर अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। विमेंस टीम इवेंट में भारत ने पहले राउंड के बाद 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त छठा स्थान हासिल किया। प्रणवी शरत उर्स ने 4 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाया, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में प्रणवी उर्स ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने संयुक्त 18वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेंस टीम इवेंट में भारत 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 5वें स्थान पर है। जापान 9 अंडर पार 131 के साथ शीर्ष पर है। मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में सप्तक तलवार ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ संयुक्त 3रा स्थान हासिल किया। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधू 71 के स्कोर के साथ संयुक्त 23वें स्थान पर हैं। कल गोल्फ का दूसरा राउंड खेला जाएगा। 4 राउंड के बाद टीम और पुरुष और महिला स्पर्धाओं के इंडिविजुअल स्कोर के आधार पर मेडल डिसाइड होंगे।
6: और अब बारी सेपक टाकरों की। पुरुषों ने मायूस किया, महिलाओं ने मुस्कान वापस लाई। पूरी कहानी रोहित भारद्वाज से।
7: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश युमनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा और माले मंगबा सिंह शामिल हैं। वहीं महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।
6: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भाजने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
11: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ 5वें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ 4थे स्थान पर रहीं। दोनों उसके बाद रेपेचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ 3रे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ 4था स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
6: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड रेस की स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्ति ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, 3रे स्थान पर रही, लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाई। केनो में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेलने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे, आइए जानते हैं रोहित भारद्वाज से।
7: पुरुषों के कयाक सिंगल में भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
6: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
7: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय शेनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। इस स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: मुलिता बता रही हैं पदक तालिका की ताजा स्थिति।
10: कल के मुकाबले खत्म होने के बाद भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत 7वें स्थान पर आ गया है। 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत के कुल 60 पदक हो गए हैं। मेडल टैली में चीन पहले, जापान दूसरे और रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पर है।
6: और अब कल के खेलों का आकलन शाहनवाज खान से।
12: एशियाई खेलों में कल का दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर थर्सडे होने वाला है, जहां क्रिकेट और हॉकी के दो बड़े मुकाबले होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का ये पहला वास्तविक मैच होगा, क्योंकि सभी 4 क्वार्टर फाइनल्स बारिश के कारण रद्द हो गए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबले होगी। भारतीय टीम इस एशियाई खेलों में अब तक अनडिफीटेड रही है। भारतीय टीम 2016 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम, जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम हांगकांग से, जबकि पुरुष टीम मलेशिया से भिड़ेगी। वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में भारत के पुरुषों की टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। कुश्ती में 4 सोने के तमगे दांव पर होंगे। सुमित दलाल, अमन और नितेश कुमार ग्रीको रोमन वर्ग, जबकि मानसी अहलावत महिला कुश्ती में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइकिलिंग, निशानेबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे।
6: तो ये बताते हुए कि 20वें एशियाई खेलों पर कल भी आकाशवाणी की कवरेज जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और रात 10 बजे ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो अब मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
13: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

0: आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:20 हुए हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।